0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के

0: अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी, साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज डलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. Mr. Modi shared a video message and said that those who will play will flourish and appeal to the citizens to always cheer for Bharat.
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। Always cheer for Bharat. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki.
1: Youth Affairs and Sports Minister Mansukh Mandaviya and Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Nikhil Khadse were present on the occasion. India finished at the fourth spot on the medal table during the games held between 23rd of July and the 2nd of this month at Glasgow in Scotland. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sports. India has crossed 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. The landmark achievement was reached on the 31st of last month. It represents India has achieved more than 60% of its 500 gigawatt target set for 2030. The Ministry of New and Renewable Energy, in a statement, said

दोस्तों, सावन का महीना, महादेव की भक्ति और मन में बस उनका नाम। जिसके सिर पर हाथ हो भोलेनाथ का, उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं। आइए इस पावन सावन में हर पल हर हर महादेव का जाप करें और अपने जीवन को शिवमय बनाएं।

सावन की पावन फुहारे, चारों ओर शिव भक्ति का रंग और हर राह पर गूंजता एक ही जयकारा, बोलबम हर हर महादेव। कंधों पर आस्था की कावड़ उठाए, पैरों में भक्ति की शक्ति लिए, हमारे कांवड़िए भोलेनाथ के धाम की ओर बढ़ रहे हैं। किसी के कदमों में थकान है लेकिन मन में विश्वास है, किसी के कंधे पर कांवड़ का भार है लेकिन हृदय में महादेव का प्यार है। यह यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, यह श्रद्धा, संकल्प और समर्पण की यात्रा है। हर कदम के साथ शिव का नाम, हर सांस में भोलेनाथ का ध्यान और हर मन में एक ही विश्वास, महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो आइए आज की इस पावन वंदना में हम उन सभी कांवड़ियों की भक्ति और आस्था को नमन करें और मिलकर पुकारे हर हर महादेव।

0: भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ आज का वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं डॉक्टर सुधा शर्मा पुष्प की लघु वार्ता हृदय में राम।
2: राम राम जय सीता राम, कौशल्या सुत राजा राम, दशरथ नंदन रघुपति राम, भरत भ्राता लखन के राम, अहल्या के उद्धारक राम, शबरी के आराध्य है राम, दुख का अंत करें श्री राम, सुख का आधार।

राम, हर मन में विराजे राम। वर्तमान समाज में पिता की आज्ञा मानने वाले पुत्र, गुरु के आदेशानुसार आचरण करने वाले शिष्य, प्रजा के सुख के लिए त्याग करने वाले राजा, पत्नी व्रत पति, संकट में साथ देने वाले मित्र, समस्त प्राणियों के हितैषी, सामान्य जन के कष्टों की अनुभूति करने वाले और निस्वार्थ भाव से दूसरों का कल्याण करने वाले पुरुषोत्तम की कमी महसूस होने लगी है। लोगों के हृदय में पवित्रता और चरित्र में दृढ़ता मानो लुप्त होती जा रही है। आज लोग राम को तलाश रहे हैं, वे भूल रहे हैं कि

0: मंदिर मंदिर तो हैं विग्रह, हृदय में बसे साक्षात श्री राम। हृदय में राम बसे हों तो हम भी कठिनाई के क्षणों में विधाता या भाग्य को कोसने के बदले श्री राम की तरह धैर्य, विवेक एवं वीरता पूर्वक संकट का सामना करके विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब परिस्थितियां अपने नियंत्रण से बाहर हो जाएं, अप्रत्याशित विपदा आ जाए, तो बिना विचलित हुए संयम एवं मर्यादा का पालन करते हुए सही मार्ग का चयन हृदय में बसे श्री राम ही करवा सकते हैं। समष्टि के लिए व्यष्टि का त्याग अर्थात राष्ट्रहित के लिए स्वत्व का बलिदान श्री राम ने सिखाया। उन्होंने अयोध्यावासी के सुख के लिए अपनी प्रिया सीता का भी त्याग कर दिया। उन्होंने न्याय के समक्ष अपने पराये का भेद नहीं किया। अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण के द्वारा अपराध किए जाने पर उसे सामान्य जन के समान दंड दिया। ऐसी न्यायप्रियता श्री राम से ही सीखी जा सकती है। हम देख रहे हैं कि आज रिश्तों और संबंधों पर स्वार्थ हावी होने लगा है, जबकि श्री राम अपने माता पिता के आदेश का पालन करने और भाई के सुख के लिए राज सुख को त्याग कर वन वन भटकते रहे। मित्र सुग्रीव की सहायता का वचन पूरा करने के लिए नीति विरुद्ध छिपकर बाली पर वार किया। श्री राम ने अपने काल में अनेक विरोधी संस्कृतियों, जातियों, आचार निष्ठाओं और विचार पद्धतियों को आत्मसात करते हुए उनका समन्वय किया। वे निषाद राज को गले लगाते हैं, करुण भाव से गिद्धराज का अंतिम संस्कार करते हैं, भीलनी शबरी की भक्ति को स्वीकारते हुए उसके जूठे बेर प्रेम पूर्वक खाते हैं, वानर राज सुग्रीव से मित्रता निभाते हैं, शत्रु के भाई विभीषण को शरण देते हैं, अपने पिता की तीन पत्नियां होते हुए भी एक पत्नी व्रत रहते हैं, पत्नी सीता के त्याग के बाद यज्ञ में साथ देने के लिए पत्नी की आवश्यकता होने पर सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा बनवा लेते हैं, किंतु दूसरी पत्नी लाना स्वीकार नहीं करते हैं। श्री राम तो स्वयं विष्णु के अवतार थे। राक्षसों का संहार और रावण का वध तो उनके मात्र दृष्टि बाण से ही हो जाता, किंतु उन्होंने मानव रूप में ही रहकर मानवीय परिस्थितियों का सामना करते हुए राक्षसों तथा रावण का वध किया ताकि सामान्य मानव उसे अपना सके। श्री राम ने पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, बौद्धिक सभी क्षेत्रों में परम आदर्श प्रस्तुत किया, इसलिए समस्त जन मन के हृदय पर राज करते हैं। मानव होकर श्रेष्ठतम आचरण करके पुरुषोत्तम बनना, नर होकर नारायणत्व को प्राप्त करना तभी संभव है जब हम अपने हृदय में बसे श्री राम को महसूस करें, अपने हृदय में श्री राम के दर्शन करें, परहित जीवन जीकर देखें, मिल जाएंगे मन में राम, राम छिपे हैं कण कण में, सबके हृदय में बसे श्री राम, सबके हृदय में बसे श्री राम।
1: आइए सुनते हैं रामचरितमानस से अयोध्या कांड का भाग 13।

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया, अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं, कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी

दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

0: स्थापयितुं तथा देशभक्तेः राष्ट्रैकतायाश्च भावनां प्रकटयिष्यन्तीषु विविधासु गतिविधिषु भागं ग्रहीतुं प्रोत्साह्यन्ते। अस्मिन् वर्षे अभियानं विशेषत्वेन महत्वपूर्णमस्ति, यतः इदं भारतस्य राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततम वर्षपूर्त्या सह आयोज्यते। अनेन राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रगीतस्य च विशिष्टः समागमः भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् अभियाने सक्रियतया भागं ग्रहीतुम् अथ विकसित भारतस्य निर्माणे स्वप्रतिबद्धतां पुनर्नवीकर्तुं च आहूतवान्। दिल्ली मेट्रो रेल निगमेन स्वातन्त्र्य भावनायाः उत्सवस्य भागरूपेण पीतवर्णमार्गे हर घर तिरंगा इति विषयवस्तुना सुसज्जिता विशेषा मेट्रो रेल यान सेवा समारब्धा। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे DMRC इत्यनेन कथितं यत् भारतस्य 80वें स्वातंत्र्य दिवसोपलक्ष्ये आयोज्यमानानां सप्ताहव्यापिनां कार्यक्रमाणां भागरूपेण एषा विशेषा मेट्रो रेल सेवा प्रारब्धा। ओडिशा राज्ये पुनः प्रचंड वृष्टेः अनन्तरं राज्यस्य अनेकेषु भागेषु नदीनां वर्धमानः स्तरः नूतनः जलाप्लावन प्रकोपः जनयति। बैतरणी नदी अस्य प्रावृट्कालस्य तृतीये जलाप्लावन प्रकोपे प्रविष्टवती अस्ति। एकया नूतन न्यूनचाप व्यवस्थया सम्पूर्णे राज्ये अतिवृष्टिः अभवत्। अधिकारिणः जलाप्लावन प्रवण क्षेत्रेषु नदीस्तरस्य निरीक्षणं निकटतया कुर्वन्तः सन्ति, आवश्यकान् समाह्वानान् निवारकोपायान् च कुर्वन्तः सन्ति। भारतीयः भारोत्तोलकः महाराजन अरुमुगा पाण्डियनः उज्बेकिस्तान ताश्कंद नगरे एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इत्यस्याम् स्पर्धायाम् पुरुषाणाम् 65 किलोग्राम मिते भारवर्गे रजत पदकम् प्राप्तवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेता खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की
1: जय। इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2000

0: 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिवेंद्र कुमार कश्यप को परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच अंतर संचालन बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. Mr. Modi shared a video message and said that those who will play will flourish and appeal to the citizens to always cheer for Bharat.
2: Jo khelega, wo khilega. Always cheer for Bharat. Bharat Mata ki. Jai. Bharat Mata ki. Jai. Bharat Mata ki.
1: Jai. Youth Affairs and Sports Minister Mansukh Mandaviya and Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Nikhil Kharse were present on the occasion. India finished at the fourth spot on the medal table during the games held between 23rd of July and the 2nd of this month at Glasgow in Scotland. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sports. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." Prime Minister said he's glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram, and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. The Culture Ministry said the Har Ghar Tiranga campaign this year would seek to bring the spirit of patriotism to streets and homes across the country through Tiranga Yatras, Tiranga rallies, Tiranga concerts and mass singing of Vande Mataram. India has crossed 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. The landmark achievement was reached on the 31st of last month. It represents India as achieved more than 60% of its 500 gigawatt target set for 2030. The Ministry of New and Renewable Energy in a statement said that the share of non-fossil fuel-based electricity capacity in the country's total installed electricity generation capacity has reached over 54%. The ministry

इसी के साथ आज का संगीति का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आज आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों सुबह हो चुकी है, सूरज बाबा भी बिल्कुल सामने आ चुके हैं, धूप भी निकलने लग गई है और मौसम बहुत प्यारा सा है। और हम तो कहेंगे कि बिस्तर को टाटा बाय बाय कहिए, क्योंकि सूरज खिड़की पर दस्तक दे रहा है और आपका चाय का कप कह रहा है कि अब तो चुस्की ले लो। और सच में सुबह एक और शुरुआत है नए दिन की और नई तरह से सोचने के लिए, तो बिल्कुल बहुत प्यारी सुबह होनी चाहिए। और सबसे पहले उसमें यूँ कहे कि शांत होकर बैठना चाहिए और एक बारी के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो चलिए हम भी अपने कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा

शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और वही हमारे को ठंडक पहुंचाते हैं। उनका नाम ध्यान बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यारी इसी की ये जो पंक्तियाँ हैं, और यूँ कहें ये गीत बहुत ही प्यारा है, दिल को छू लेता है और हम भी कहीं खो जाते हैं। बिल्कुल, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शोभा शर्मा। और दोस्तों मैं देख रही हूँ कि खिड़की से जो आती है चमकीली धूप है और ठंडी हवा थोड़ी थोड़ी बिल्कुल थोड़ी सी कह रही है कि अब ज़रा मुस्कुराने और गुनगुनाने का वक्त हो गया है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा गीत अगला हम आपके लिए लेकर आए हैं गाइड फिल्म से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है और उसे उदास होकर बिताने का तो बिल्कुल भी चांस नहीं होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। और आज का जो ये नया सवेरा है हमसे कह रहा है कि सारी चिंताओं को छोड़ो और खुलकर जीना शुरू करो।

खुशियाँ बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, यूं ही आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और जो खुशी मिलती है तो हमें लगता है कि ये इससे ज़्यादा खुशी हमें कभी नहीं मिली, और फिर और चीज़ों की तलाश होती है, और फिर हम नई चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं, जब उसमें सफल होते हैं तो और खुश होते हैं। और मैं तो कहूँगी कि आप हमेशा खुश रहें और आगे आपको सफलता मिलती रहे और जीवन में आप उन्नति करते रहे। तो आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और अब समय आ चुका है कि हम आपसे विदा चाहेंगे, परंतु एक प्यारा सा गीत आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, और मुझे यानी शोभा शर्मा को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। घर घर तिरंगा,
4: हर घर तिरंगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।

0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
1: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। तिरंगे की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगगाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
2: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार 3 दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक

0: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलूनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलूनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले 2 दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
3: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर जरूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, JPSC के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी CBI जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए चार बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे चार विधेयक। मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार। परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के दोनों सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पन्ने पर है। बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
0: धन्यवाद फरहत, और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस पीपल टू जॉइन हर घर तिरंगा मूवमेंट एंड होइस्ट द ट्राइकलर एट होम्स। इंडिया क्रॉसेस 300 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। Indian and US Navy's explosive ordnance disposal exercise to begin today at Southern Naval Command in Kochi. Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram, and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Man Ki Baat program on Akashwani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolour at homes.
6: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
5: More on this in this report.
7: The Ministry of Culture has said the Har Ghar Tiranga campaign this year would seek to bring the spirit of patriotism to streets and homes across the country through Tiranga Yatras, Tiranga rallies, Tiranga concerts and mass singing of Vande Mataram. The ministry said the 150th anniversary of Vande Mataram would provide an opportunity for citizens to celebrate the national song as part of the Independence Day festivities. A key feature of this year's celebrations will be Surya Path Tiranga, described by the ministry as a first-of-its-kind initiative aimed at bringing Indians across the world together in a global celebration of the tricolour. The ministry has appealed to citizens to hoist the national flag at their homes and upload their selfies on the Har Ghar Tiranga website. The Har Ghar Tiranga campaign has emerged as a nationwide public participation initiative associated with Independence Day celebrations, encouraging citizens to display the national flag and express their connection with the country. Ashish Abraham, Akashwani News, Delhi.
5: हर घर तिरंगा मूवमेंट इज गेनिंग मोमेंटम अक्रॉस द नेशन.

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आबनाए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समुद्री रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। और महाराजा उरुमुंग पांडियन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर में अपने तआवुन के इज्तिमाई अहद का एआदा करने की अपील की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तिरंगा मुल्क की शान है, नीज़ ये मुल्क के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह देने की तहरीक का एक जामे वसीला है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह कहते हुए मसर्रत का इजहार किया कि इस साल की काविशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं क्योंकि इसकी 150वीं सालगिरह है। पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में जनाब मोदी ने अवाम से अपील की थी कि वो अपने घरों पर तिरंगा परचम लहराएं।
1: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
0: पेश है एक रिपोर्ट।
2: सिखाफत की वजारत ने कहा है कि इस साल हर घर तिरंगा में मुहिम तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा प्रोग्रामों और वंदे मातरम के गीत के जरिए मुल्क भर में सड़कों और घरों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करेगी। वजारत ने कहा है कि वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह शहरियों को मौका भी फराहम करेगी ताकि वो यौम आज़ादी के त्यौहार के हिस्से के तौर पर कौमी नगमे का गाकर जश्न मना सकें। इस साल की तकरीबात की एक अहम खसूसियत सूर्यपथ तिरंगा होगी, जिसे वजारत ने अपनी नौइयत का एक पहला कदम बताया है, जिसका मकसद दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को तिरंगा की एक आलमी तकरीब में यकजा किया जा सके। वजारत ने शहरियों से अपील की है कि वो अपने घरों में कौमी परचम लहराएं और हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपनी सेल्फीज अपलोड करें। हर घर तिरंगा मुहिम यौम आज़ादी की तकरीबात से वाबस्ता मुल्कगीर अवामी शिरकत की एक पहल के तौर पर उभरी है, जिससे शहरियों को कौमी परचम की नुमाइश करने और मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करने का हौसला मिलेगा। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम

0: बुलवतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बीड़, थाने और बुलढाणा समेत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जिलों में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा, खिलाड़ियों, एनसीसी कैडेट्स और शहरियों ने पूरे जोशो जज्बे के साथ शिरकत की। थाने में एक साइकिल रैली के जरिए माहौलियात के तहफ्फुज और सेहतमंद जिंदगी को फ़रोग दिया गया। खेमगांव में टीवी के बारे में और रैलियों और नुक्कड़ नाटक के जरिए मनुष्यात से पाक भारत के तई बेदारी पैदा की गई। इस मुहिम का मकसद हुबुल वतनी के जज्बे को फ़रोग देना और यौम आज़ादी की तकरीबात में आवाम की शिरकत की हौसला अफजाई करना है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: बिहार में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज पटना में एक बड़ी तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि वजीर आला सम्राट चौधरी इस मुहिम की क्यादत करेंगे।
2: हर घर तिरंगा मार्च आज सुबह 10 बजे से जेपी गोलंबर से शुरू होगी, जो करगिल चौक तक जाएगी। इसका एहतमाम फन, सकाफत और नौजवानों के महकमे की तरफ से किया गया है। तिरंगा यात्रा में बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। इसी दौरान इस मुहिम के तहत जीविका के जरिए रियासत में हर ब्लॉक को 4000 तिरंगा परचम फराहम किए गए हैं। मुहिम के हिस्से के तौर पर वंदे मातरम के गीत, खून के अतिया के कैंप्स, तिरंगा नुमाइशों, तिरंगा के साथ सेल्फी और तिरंगा रंगोली समेत मुख्तलिफ गर्मियों का भी एहतमाम किया जाएगा। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: मगरबी बंगाल में हर घर तिरंगा मुहिम के हिस्से के तौर पर आज कोलकाता में तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। वजीर आला शुभिंदु अधिकारी जुलूस की क्यादत करेंगे, जो घोस्तों पलसरानी से दोपहर में शुरू होगी और विक्टोरिया मेमोरियल पर खत्म हो जाएगी। मुख्तलिफ महकमों के वजरा, इंतजामिया के सीनियर अहलकार और शहरियों की एक बड़ी तादाद की इसमें शिरकत मुतवक्के है। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की है तकरीबन 50,000 लोग यात्रा में शिरकत करेंगे। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने जुलूस के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैफिक पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। मणिपुर ने भी मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ हर घर तिरंगा मुहिम के इनेकाद में शिरकत की। ये प्रोग्राम 17 अगस्त 2026 को इख्तिताम पजीर होगा। इस मुहिम का मकसद भारत के इतिहाद का जश्न मनाना और तिरंगा के तई गहरे एहतराम का मुजाहरा करना है। इस मुहिम के दौरान शहरी अपने घरों पर तिरंगा लहराएंगे। मणिपुर के वजीर आला यमनाम खेमचंद मगरबी इम्फाल के संगजिमी में अपनी रिहाइशगाह से इस मुहिम में शिरकत करेंगे। उन्होंने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो सबसे पहले खुद को भारतीय, उसके बाद मणिपुरी समझें। भारत गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली की पैदावार 300 गीगावाट की सलाहियत से आगे बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: इस उसूलियाबी से 2030 के 500 गीगावाट सलाहियत के निशाने में से 60% से ज्यादा हिस्सा पूरा हो चुका है। नई और बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की वजारत ने कहा कि मुल्क की बिजली पैदावार की कुल सलाहियत में गैर रिवायती ईंधन पर मबनी बिजली सलाहियत का हिस्सा 54% से ज्यादा हो चुका है। वजारत ने यह भी कहा कि साफ सुथरी तवानाई की पैदावार में बहुत से शोबों का तआवुन रहा है। गैर रिवायती ईंधन की मजमूई सलाहियत में शमसी तवानाई इस मैदान की तरक्की में पेश पेश रही। वजारत के मुताबिक 2025-26 के दौरान मुल्क में गैर रवायती ईंधन की 55.29 गीगावाट की सलाहियत का इजाफा हुआ है। बार बार इस्तेमाल होने वाली तवानाई की सलाहियत में भी तेज रफ्तार तरक्की का पता चलता है। 2014-15 में यह सलाहियत 191 अरब यूनिट थी, जबकि 2025-26 में ये 477 अरब यूनिट से ज्यादा हो गई। न्यूज डेस्क से आनंद की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम पे।
0: लोकसभा में आज 4 बिल पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनलिज्म में इस्लाहात का 2026 का बिल, कानों और मादनियात के फरोग और मुतालिका जाब्तों में तरमीम का 2026 का बिल, केरला का नाम तब्दील किए जाने से मुतालिक 2026 का बिल और इमदाद बाहमी के फरोग में कौमी कॉरपोरेशन में 2026 का बिल शामिल है। राज्यसभा में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन बैंकरों के रिकॉर्ड के शवाहिद से मुतालिक 2026 का बिल पेश करेंगी। इसमें बैंकरों के रिकॉर्ड को कानूनी शवाहिद के तौर पर पेश करने और इसे मौजूदा दौर की डिजिटल बैंकिंग के कामकाज के मुताबिक बनाने के लिए कहा गया है। ऐवान में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम का 2026 का बिल भी पेश किया जाएगा। इस बिल में रकम की अदायगी और तस्फीये के निज़ाम से मुतालिक 2007 के कानून, इनकम टैक्स 2025 के कानून और मालियात से मुतालिक 2026 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। इन दोनों बिलों को लोकसभा से मंजूरी मिल चुकी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से पेश किया जा रहा है। JPSC JSSC इम्तिहानात में मुबैना बदउनवानियों पर तलबा और झारखंड सरकार के दरमियान तीसरे दौर की बातचीत के बावजूद तातुल अब भी जारी है। तलबा ने हुकूमत की तजावीज को पूरी तरह तस्लीम नहीं किया है और आज विधानसभा के घेराव के अपने प्रोग्राम पर बजिद हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: झारखंड में एहतजाज का आज 17वां दिन है। तलबा और झारखंड सरकार के दरमियान बातचीत में मुबैना बदउनवानियों की तहकीकात, इम्तहानात की मनसूखी, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई और इम्तहान के निज़ाम में इसलाह पर तवज्जो मरकूज की गई। हुकूमत ने 14वीं JPSC प्रीलिमिनरी इम्तहान मनसूख करने से इत्तेफाक किया है और तफसीली तहकीकात का हुक्म दिया है। CID के ADG मनोज कौशिक ने इस सिलसिले में एक शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी की है। उन्होंने कहा है कि अभी तक 19 मुलजमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है और डिजिटल शवाहिद भी काफ़ी तादाद में इकट्ठा किए जा चुके हैं। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: तलबा के जारी मुजाहरों के पेश नज़र झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC के 3 मुलाजमीन ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। JPSC के 3 मेम्बरों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हंसा ने कल गवर्नर संतोष कुमार गंगवार को अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। भारतीय बहरिया और अमरीकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मश्क EOD 2026 आज से 14 अगस्त तक कोची में वाकई जुनूबी बहरी कमान में मुनाकिद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी तआवुन और अमली हमा आहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। 5 रोज़ा इस मशक के दौरान माहिरीन के दरमियान तजुर्बात और मालूमात का तबादला, मुश्तरका तरबियती सरगर्मियां, मुख्तलिफ आलात का अमली मुजाहरा और सूरत हाल पर मबनी अमली मशकें की जाएंगी। वजारती दिफा के मुताबिक भारतीय और अमरीकी बहरिया साल 2005 से ये मुश्तरका मशकें करती आ रही हैं। आइंदा होने वाली मशक इस सिलसिले की 8वीं कड़ी होगी। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आज से पहले दिल्ली के कुछ इलाकों में मोतदिल बारिश की पेशगोई की है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है क्योंकि बहुत से अजला सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं, जबकि आने वाले दिनों में मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल एक बड़ी तशवीश का मसला बनी हुई है। ताज के इलाकों में शदीद बारिश के बाद दरियाओं के पानी में फिर इजाफा हो रहा है। बालासोर में जालाकार दरिया में पानी के इजाफे से बस्ता में सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। केंद्रपाड़ा के बहुत से इलाके भी मुतासिर हुए हैं। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी शदीद बारिश के सबब मामूलाती जिंदगी मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला अगले 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है। रूस ने बहर हिंद के लिए एक रेलवे रास्ते का पता लगाने की तजवीज रखी है, जिससे भारत का अहम बहरी रास्तों पर इन्हिसार कम होगा। रूस के नायब वजीर आजम मारात खुसलिन ने बताया कि मुतबादिल रास्तों से आबनाए हुरमुज और आबनाए फास्फोरस समेत 2 किलीदी आबी गुजरगाहों से जुड़े खतरनाक रास्तों से गुजरने के खतरे में मदद मिल सकती है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जनाब खुसुनील ने बताया कि तुर्कमानिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरने वाले रेल रास्तों का पता लगाया जा सकता है ताकि भारत को आसानी से रसाई फराहम की जा सके। ये तजवीज मगरबी एशिया में जारी जंग के पेश नजर सामने आई है, जिसमें आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों के गुजरने में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। मुजवजा रेल रास्तों से वसी जोग्राफियाई, सियासी और माशी मुजमरात पैदा हो सकते हैं क्योंकि ये वस्ती और जनूबी एशिया के जरिए बहरे हिंद के लिए रूस को एक मुतबादल बहरी रास्ता फराहम हो सकता है। भारत ने बोलीविया को जिंदगी बचाने वाली और लाजमी दवाएं रवाना की हैं। भारत ने ये 8 मैट्रिक टन दवाओं की खेप हिफ़ज़ाने सेहत के तई सलाहियत और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रवाना की हैं। वजारत खारजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इजहार यकजहती और मुश्तरका तरक्की के जरिए दूसरे मुल्कों को तआवुन जारी रखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उज्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में भारत के वेट लिफ्टर महाराजन अरमुगा पांडियन ने चांदी का तमगा जीता है। भारतीय वेट लिफ्टर ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने मजमूई तौर पर 285 किलोग्राम वजन उठाकर बेहतरीन जाती रिकॉर्ड बनाया। वियतनाम के हुआंग टेक ने कुल 291 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने भारत की जंग आज़ादी के तनाजुर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफ़े अव्वल पर शाया किया है कि भारत

0: छोड़ो तहरीक में शामिल लोगों की कुर्बानियों और उनका अज़्म आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहेगा और हर भारतीय शहरी में आज़ादी के तई नई तवानाई पैदा करेगा। रोजनामा प्रताप ने अगस्त क्रांति के तनाजुर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत नायब सदर जमहूरियत सीपी राधाकृष्णन के इस बयान को सफाई अव्वल पर शाया किया है कि भारत एक है और हमेशा एक ही रहेगा। इसी अखबार की एक और खबर के मुताबिक वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मुसल्ला अफवाज ने बेमिसाल शुजात का मुजाहरा किया और भारत अपने शहरियों की सलामती और उनकी हिफाजत के लिए अहदबंद है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत मुस्तफिदीन को 1 करोड़ से ज्यादा मकानात उनके सुपुर्द किए गए, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में शामिल हों और अपने घरों में तिरंगा लहराएं। भारत में गैर रिवायती ईंधन वाली बिजली पैदावार की सलाहियत 300 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत और अमेरिका कोची में जनूबी बहरी कमान में आज धमाका खेज हथियारों के बंदोबस्त की मशक शुरू करेंगे। रूस ने आबनाए हुरमुज जैसे दिफाई एतबार से अहम समंदरी रास्तों पर इन्हिसार को कम करने के लिए भारत तक रेल रास्ते की तजवीज रखी है। और महाराजा उरुमुक पांड्यन ने ताशकंद में एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में मर्दों के 65 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की खड़ी में वक्त हुआ है 8:45 और ठीक 15 सेकेंड। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित प्रशांत मलिक और पंडित निशांत मलिक से राग ललित। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
3: नमस्कार, मैं प्रशांत मलिक।
4: मैं निशांत मलिक।
3: आज की सुबह की सभा में हम दोनों भाई ध्रुपद गायन प्रस्तुत करेंगे राग ललित, जो कि एक सुबह के प्रहर का राग है। इसमें ध्रुपद परंपरा के अनुसार 4 चरण की आलाप, तत्पश्चात एक चौताल की रचना प्रस्तुत करेंगे, जिसके बोल हैं देखो सखी वृंदावन में मोहन रास रचायो। हमारे साथ पखावज पर संगति दे रहे हैं पंडित अनिल चौधरी जी और तानपुरे पे मौली गर्ग। धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। छात्रों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने कार्यक्रम पर अडिग हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई यह ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को सशक्त बनाना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूसी उप प्रधानमंत्री मरार खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मोज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसनुलिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य और खाड़ी की सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कार्य योजना की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। समिति के प्रवक्ता हसन कशकवी के हवाले से ईरान के स्थानीय मीडिया ने बताया कि इस योजना पर संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति में चर्चा हुई और बिना किसी विरोध के इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को 13 जुलाई को संसद में औपचारिक रूप से पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरु मोंगपंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम

नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना ज़िंदगी भी एक सफ़र है, और कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी मुश्किल, कभी कोई अपना हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, और कभी लंबा सफ़र अकेले।

ही तय करना पड़ता है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब हम पीछे मुड़कर अपने बीते हुए सफ़र को देखते हैं तो क्या हमें सिर्फ अपनी मंजिल याद रहती है? नहीं, हमें याद रहते हैं वो रास्ते, वो छोटी छोटी बातें, रास्ते में मिली मुस्कुराहटें, किसी अपने के साथ बिताए हुए पल, खिड़की से बाहर तेज़ी से पड़ते हुए नज़ारे और कई अनगिनत यादें जो सफ़र ख़त्म होने के बाद भी हमारे साथ चलती रहती हैं। शायद इसलिए कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है सफ़र, क्योंकि मंजिल तो एक पल होती है, लेकिन सफ़र सफ़र हमें कई पल देता है, कई कहानियाँ देता है, और कभी कभी हमें खुद से भी मिलवा देता है। तो बिल्कुल, आपसे भी हम मिल रहे हैं, और आप खुद से तो मिलते हैं और हमसे भी मिलते हैं इस आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद में। और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में, और मैं कहूँगी कि बिल्कुल प्यार भरा हमारा नमस्कार भी स्वीकार कीजिएगा। हमें बहुत खुशी होती है आपसे मिलने में, आपकी मैसेजेस लेने में इस कार्यक्रम में, जिसमें आप भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो चलिए, आज की जो कार्यक्रम है आपकी पसंद में, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपकी ज़िंदगी के सफ़र में वो कौन सा पल है जो आपको मंजिल से भी ज़्यादा याद है, मतलब कि आप जहाँ पहुँचे हो, डेस्टिनेशन या कुछ भी प्राप्त किया, उससे भी ज़्यादा वो है कि सफ़र कैसा रहा। तो क्या किसी ने आपके साथ किया हुआ कोई सफ़र, भाई यात्रा भी बता सकते हैं, बचपन की कोई यात्रा हो, किसी स्टेशन पर हुई कोई मुलाकात, या ज़िंदगी का कोई ऐसा मोड़ जिसको आपने हमेशा याद किया और उसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया? आज ज़रूर अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके ये सफ़र की एक छोटी सी कहानी किसी और के दिल में छुपी हुई एक पुरानी याद को जगा दे। तो दोस्तों, सफ़र जारी रखिएगा, क्योंकि ज़िंदगी की असली खूबसूरती शायद मंजिल में नहीं बल्कि उस रास्तों में छुपी होती है जिन्हें हम चलते हुए पीछे छोड़ आते हैं। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और बहुत प्यारा संगीत और उसके बाद आपके मैसेजेस भी लिए जाएंगे। और जो नेश होता है जो हमारे साथ जुड़े हैं और अपना जो कहें कि मैसेज भेजना चाहते हैं, संदेश भेजना चाहते हैं, तो वो भी हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है iprradiodelhi@gmail.com। तो एक बार फिर दोहरा दें, iprradiodelhi@gmail.com। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके मैसेजेस का।

बहुत से अफसाने लिखे ही होते हैं सबके दिलों में, आंखों में, और हमें तो अभी आप लोगों ने बहुत सारे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें हम ले लेते हैं। कार्यक्रम सुन रहे हैं आपकी पसंद, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो चलिए, संदेशों का पिटारा खुल चुका है और ले लेते हैं ये पहला संदेश। ये है हमारे साथ मुकाम पोस्ट कालेगांव साफराबाद से डॉक्टर प्रशांत राजे यादव देशमुख, श्री सुधाकर राजे यादव देशमुख, संचित दयाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख, हर्षता देशमुख और इन्होंने समस्त राजे यादव देशमुख दयाल परिवार से हमें ये मैसेज भेजा है। चलिए अगला संदेश ले लेते। ये हमारे साथ कौन जुड़े हैं? ये जुड़े हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, और लिखते हैं कि हमें भी याद करिएगा। बिल्कुल दोस्त, आपके मैसेजेस हमें ले रहे हैं। और अगला संदेश आया है ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, और इनके साथ जुड़े हैं शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का जी, और झज्जर हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया, और उत्तम नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, और ये हमें संदेश आया है वड़ेखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। और अगला संदेश हमें आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, और इनके साथ है मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़े हमारे साथ नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मोहरकर। और अगला जो संदेश है वो आया है हमें सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का। इनके साथ कालका से जुड़े हैं हमारे साथ शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी, और ये हैं हमारे साथ जुड़े दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर सावरी, सन्नर सावरी, मुदस्सर सावरी, मुजक्कर सावरी, ज़रीफ अंसारी जी, और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक जी, और सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह। तो आइए सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा और दिल ही दिल में बात हो गई। जी हाँ बिल्कुल, आपकी संदेशों से ही हमारी बातचीत हो जाती है। वैसे हम तो बोलते हैं पर हम आपस में नहीं बोल रहे होते, पर फिर भी दिल की बात दिल तक पहुंच ही जाती है। चलिए बिल्कुल दिल की बातें ले लेते हैं। और किन किनों ने हमारे साथ, मैं यूँ कहें कि रेडियो ऑन कर रखा और हमें सुन रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये है हमारे साथ माल्यान सरदना मेरठ से, अनिल जैन जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन जी। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी का, पिंगा वाला चौक, गोरैया जालंधर से। और ये लिखते हैं, मैं भगवान को ही मुकम्मल मानता हूँ, दुनिया की और कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है, जो उसमें खुश हूँ मैं। बहुत अच्छी बात लिखी है दोस्त आपने। और अगला जो संदेश है वो है जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पॉल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो का। और अगला जो संदेश हमें आया है वो है रेलवे कॉलोनी कानपुर से, आफ्ताब उल्ला डोम, अल्ताफ उल्ला डोम और वली उल्ला डोम, डब्लू उल्ला डोम, इलाहाबाद से इनके साथ है रेशमा नाज डोम, बेबी अंसारी डोम। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है कबीर रेडियो श्रोता संघ, डोंडी लोहारा, बालो छत्तीसगढ़ से, देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी, पूजा पूजा तामोरिया, राधिका प्रभा देवी तामोरिया और इनके पोते हैं मास्टर अल कबीर जी का। और ये आया है हमें संदेश डॉक्टर प्रशांत राजे यादव देशमुख का। इन्होंने लिखा है, मेरी ज़िंदगी का पहला खुश कर देने वाली याद है जब मैं सन 1981 में 10वीं में पास हुआ। वो पल अभी तक मेरे खेल में है, मतलब उनके जहन में है। हमारे गांव में अभी तक 10वीं पास कोई लड़का नहीं था, हमारे यहाँ मैं ही वो लड़का

था जो उसने 10वीं पास की, तो बहुत अच्छी बात है। वाकई ये याद तो लाजवाब ही है आपकी। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये आया है वाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव देवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष का। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का। और हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, ललजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल, अविराज सिंह जी। और मोहाली पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं बब्बल बल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ हैं कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश जी। और ये संदेश हमें आया है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्किन, नीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन चंडीगढ़ से, इनके साथ है राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना। ये लिखते हैं कि आज हमारा सफ़र गाज़ियाबाद में अपने दोस्त के साथ खेतों के हसीन वादियों में बिता रहे हैं और हरे भरे खिलियान में मौज मस्ती है और एक गौशाला में आकर गौ माता की हम सब सेवा कर रहे हैं। इस सफ़र का भी एक ही अलग आनंद है और इन्हें गीत भी बहुत अच्छे पसंद आ रहे हैं। जी हाँ, इन्होंने लिखा है, लिखा है तेरी आंखों में गीत पसंद है। जी हाँ श्रोताओ, आप ही की पसंद पे हम गीत चलाते हैं और वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं आप, अच्छी बात है, इन्जॉय करिएगा। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है अलिंका डब्बावली से, वसंत सिंह चन्न और राजकुमार कुलदीप गांधी का। और ये हमें संदेश दोबारा से आया तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है अगला संदेश मुलापुर दाखा से, राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और गोटाना जैन का। और ये हमारे साथ जुड़े हनुमानगढ़ राजस्थान से, रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान। और ये हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, हमारे साथ जुड़े धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, इंशान छिम्पा, पूजा परिहार। और लिख रहे हैं कि इन्हें प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, तो दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला जो संदेश है वो आया है मैं कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष का। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है राजू अग्रवाल, केशव, प्रशांशी का, चौधरीवास हिसार से। तो चलिए आप सब की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद, और आज आपके साथ हूँ मैं शोभा शर्मा, और मैं बात कर रही थी कि आपके ज़िंदगी के सफ़र, या यूँ कहें कि वाकई यात्रा का कोई सफ़र हो, उसमें कुछ आपकी प्यारी यादें हो तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हो। और बहुत से संदेश हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ बताया भी अपने बारे में, कुछ संदेश अपने प्यार के, यूँ कहें प्यार भरे गीत भी हमें फरमाइश में भेज रहे हैं, बल्कि सभी भेजते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपकी फरमाइश का गीत हम आपको ज़रूर सुनवाएं। तो चलिए अब संदेशों के रुख करते हैं और ले लेते हैं ये संदेश। यह आया है मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, बैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से देश चौहान हैं, और डांगरी से हैं बाबू राम जयपाल, और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा जी। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है, ये हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक शर्मा, अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, और शेख मूसा भाईजान, और भाई राजकुमार बोडाना, और इनके साथ जुड़े हैं सुदामा नगर खांडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप जी। और अगला संदेश हमें आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा का। और ये संदेश हमें आया है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी का। और हमारे साथ ये अगले जो श्रोता है ये जुड़े हैं हमारे साथ, ये हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हंजेंद्र सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया, ये लिख रहे हैं कि अकेले ही चले थे ज़िंदगी के सफ़र में, मंजिल की तलाश में आगे बढ़ते रहे और कारवां बनता गया। जी हाँ, बहुत अच्छी पंक्तियाँ गीत की लिखी है आपने। और अगला संदेश ले लेते हैं, ये संदेश हमें आया है, ये है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, पुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री और अल्तमश और रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, और जामा मस्जिद रोड गोगावा से जुड़े हैं हाजी इशाक लोलमानी और मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब अपयूब शेरी जी। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय मुहोबिया, कविता मुहोबिया का, और इनके साथ है पेंटर बाबू जी। और ये हमारे साथ जुड़े हैं, ये संदेश आया है हमारे पास, बहुत से संदेश आ रहे हैं परंतु कुछ लोग बार बार संदेश भेजते हैं तो उनके हम बार बार तो नहीं शामिल करेंगे ना दोस्त। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं, आया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहिब महराज जहाँ का, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। और ये हमारे साथ जुड़े हैं, जी हाँ ये भी हमारे यूँ कहें क्योंकि हमने मेल ले ली है, तो अगला जो संदेश है वो ले लेते हैं। आदर्श नगर मलौट पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा, निवान शर्मा।

और ये हमारे साथ जुड़े हैं जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से रुपेश संघई और महेश संघई, ब्रजेश संघई और रितेश संघई और इनका पूरा संघई परिवार की ओर से इन्होंने ये हमें मैसेज भेजा है। और ये हैं नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्डा जी और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जुड़े हैं हमारे साथ। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है चंडीगढ़ सिटी से विमला नेजा और सतीश अनेजा का। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत। जी हाँ, सावन का बहुत प्यारा गीत, वाकई मौसम का पूरा आनंद लीजिए इस गीत में।

सावन के महीने में ये इतना आप गुनगुनाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? और हमारे श्रोता ये फरमाइश ना भेजे, ऐसा भी कैसे हो सकता है? सावन में यूँ कहे कि बारिश के गीत तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। जो चलिए अगला संदेश भी ले लेते हैं। ये हमें आया है बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया का। और हमारे साथ ये जुड़े हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह जी। ये हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापर, उत्तर प्रदेश से। और ये हमारे साथ जुड़े हैं पांडर कवड़ा से, अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे और बुल्ला बल्लार शाह से, सूरज लोंडे, प्राची, एकलव्य जी। और अगला जो संदेश है वो हमारे को आया है मुंगिसापुर कानपुर से, है ग्रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया का। ये लिखते हैं आप।

प्रवचन कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जी हाँ शोभा जी, मैं बोल रही हूँ। और मेरा मेल काफ़ी दिन से शामिल नहीं किया गया, प्लीज़ मेरे मेल को ज़रूर शामिल करें दोस्त। ऐसी बात नहीं है, आपका मैसेज भी शामिल होता ही होगा। और जब भी संदेश आते हैं तो हमारे तो कार्यक्रम है, आपके संदेशों के बिना तो अधूरा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं शामिल करें। बिल्कुल कोशिश रहती है कि आपके संदेश हम साथ शामिल कर सकें। तो अगला जो मैसेज है वो हम ले लेते हैं। ये संदेश हमें आया है दादरी गेट भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा का। और ये अगला जो संदेश वो हमें आया है सतप्रकाश गोयल का, रोहिणी से। और कस्बा बलराम से हमारे साथ जुड़े हैं इरशाद अहमद शाह, शाह जहां बेगम और मरियम जैनब जी। और ये हमारे साथ जुड़े हैं उत्तम कुमार भगत, ये बता नहीं रहे हैं कि कहाँ से जुड़े हैं। और अगला जो संदेश हमें आया है वो हमें आया है, ये देखिएगा, ये संदेश हमें इस तरह से भेजते हैं भोपाल कर राजस्थान से, धर्मेंद्र शिपा, कपिल शिपा, ईशान शिपा, पूजा परिहार जी, कि हम कब आपका मैसेज देखेंगे। तो दोस्त हमने आपका मैसेज पहले भी पढ़ा था। और ये अगले जो श्रोता है वो हमारे साथ हैं ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी साहू और राजू लल्ला, पूजा प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू जी का संदेश हमारे को मिला है। और अगले जो मैसेज है वो हमें आया है गुलाब दास माणिकपुरी, राजा दास माणिकपुरी, रानी माणिकपुरी का, लेवाई छत्तीसगढ़ से। तो आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। जी हाँ, इन्होंने भी सावन के गीत की बात की है, लता मंगेशकर की आवाज़ में, बहुत ही प्यारा गीत।

0: कुछ कहता है।
1: जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत, हमारे श्रोताओं की पसंद है भी लाजवाब। जी हाँ, और मुझे भी ये कहें कि ये गीत सुनकर बिल्कुल मेरी भी यादें ताज़ा हो गई कि कभी ये गीत गुनगुना ही लेते हैं हम लोग। चलिए अब मैसेजेस की ओर रुख करते हैं। ये मैसेज आया है हमें दतरंगी भाटा पर छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोके लाल वर्मा का। और अगला जो संदेश है वो हमें आया है, ये है अनारकली बाज़ार जगराओं पंजाब से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक का। और एकता कॉलोनी रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोर्ड जी। और ये हमारे साथ जुड़े हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीत वर्मा, रुद्र वर्मा, दतरंगी से। तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, पाकिज़ा फिल्म से।

आपकी पसंद, और उसमें हम शामिल करते हैं आपके मैसेजेस और होती हैं आपसे भी बातें, मुलाकातें इसी तरह से। तो चलिए संदेशों के रुख करते हैं। ये संदेश हमें आया मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, जग्गी द्वार, विपाशा शर्मा का। ये लिखते हैं, आप मुझसे नाराज़ हैं, जल्दी बताइए। और मेरे लिए प्यारा सा जो इन्होंने सॉन्ग भी मांगा है कि बिल्कुल प्ले करेंगे हम। दोस्त ऐसी बात नहीं, नाराज़ हम किसी से भी नहीं होते, आप हमसे नाराज़ हो सकते हैं, हम कैसे आपसे नाराज़ होंगे, अपना काम कैसे चलेगा। जी हाँ, आपके बिना तो कार्यक्रम अधूरा है। तो चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। आया है जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर का। और ये हमारे साथ जुड़े हैं अखिलेश होता। जी हाँ, ये संदेश हम ले चुके हैं और तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो संदेश हमें आया है, नगर निगम वार्ड 28 मंजिल बहजौल सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से इनके साथ है मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन जी। और हमारे साथ जुड़े हैं किशोर नगर अमरावती से ही रमन शिंडे, सिद्धार्थ गोंडाने जी। और अगला जो संदेश है, जी हाँ ये संदेश एक और ले लेते हैं। ये हमें आया है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह का। जी हाँ दोस्तों, अब समय जो है ना घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हम आपसे इजाज़त ले लें बिल्कुल तसल्ली से, और मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे, और जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि प्यारा सा गीत हम बिल्कुल आपके साथ आपकी जो पसंद करता है छोड़ के जाते हैं कि एकदम अब गीत को सुनें और बहुत ही प्यार से हमें याद करते रहें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। उधर राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकर बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पेश करेंगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम हैं। सरकारी क्रय विक्रय जैम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जैम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जैम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। भारत और अमेरिका की नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हो रहा है। ये अभियान 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच परिचालन क्षमता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को सशक्त बनाना है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आज से 4 दिन की मॉरिशस की यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा दोनों पक्षों के बीच समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। इस दौरान वे मॉरिशस सरकार के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की। इधर राजधानी दिल्ली में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। उधर नागालैंड में कोहिमा में भारतीय जनता पार्टी ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत दो पहिया वाहन रैली हर घर तिरंगा का आयोजन किया। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। द न्यूज़ रेड बाय अनुजा कुमार।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूं कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
1: दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है बच्चों का शारीरिक शोषण, मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। दोस्तों, स्टैटिस्टिक के अनुसार 50% बच्चे इस हादसे के शिकार हैं और ये समस्या बहुत ही ज्यादा फैली हुई है और ज्यादातर इस समस्या को दबाई जाती है और इसके बारे में बात नहीं की जाती। लेकिन आज मैं आपसे इस विषय पर बात करना चाहती हूँ ताकि आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकें और अगर आपके बच्चे इसके शिकार हैं या विक्टिम हैं तो आप उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं कि आपके बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें।

तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, शारीरिक शोषण होता क्या है। दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का सबसे कॉमन वे या सबसे साधारण तरीका ये है कि कोई भी आपके बच्चे को गलत जगह छुए, और ये किसी को भी हक नहीं कोई आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पे छुए। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि अगर कोई उनके होंठों पे, उनके छाती पे, टांगों के बीच में या पीछे उनको छुए तो वो आपको बेझिझक बताए कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। दोस्तों, वो अलग बात है कि कोई माँ अपने बच्चे को नहला रही है या उनके कपड़े बदल रही है, लेकिन इसके अलावा कोई अलग कारण नहीं कि आपके बच्चे को कोई इन जगहों पे छुए। दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज तब भी हो सकता है अगर कोई आपके बच्चे को कहे कि आपका बच्चा उनके सामने अपने कपड़े उतारे, या वो आपके बच्चों के कपड़े उतारे, या वो खुद अपने कपड़े उतारे और आपके बच्चे को कहे कि देखे, या वो अपने प्राइवेट पार्ट्स आपके बच्चों को दिखाएं, या किसी तरह की पोर्नोग्राफी या गंदी तस्वीरें आपके बच्चे को दिखाएं। दोस्तों, ये सारी बातें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में, शारीरिक शोषण में सम्मिलित है। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि ये सारी चीजें गलत है और कोई उनके साथ ऐसा कुछ करता है तो वे सीधे आपको आकर बताएं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है और हम सबको इस बात की जानकारी होनी आवश्यक है कि शारीरिक शोषण या चाइल्ड अब्यूज इसके शिकार

लड़कियां नहीं होती है, बहुत बार लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लड़कों को भी ये बातें सिखाएं, उनको समझाएं। कोई भी उनको छू नहीं सकता, चाहे वो दादा हो, मामा हो, चाचा हो, भाई बहन हो या आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो। किसी को भी ये हक नहीं है कि एक बच्चे को गलत तरीके से छुए या गलत चीजें उनको दिखाएं। दोस्तों, बहुत बार बच्चे डरते हैं ये सब बताने से, या फिर जो इंसान आपके बच्चे के साथ गलत करता है वो बच्चे को सिखाता है कि ये सारी बातें किसी से मत कहना, ये कहकर कि ये हमारी आपस की बात है या फिर राज की बात है। और ऐसी सारी बातें बहुत जरूरी है कि बच्चे माता पिता से आकर कहें। यहाँ पे मैं माता पिता से अनुरोध करूंगी कि घर का वातावरण बच्चों के लिए फ्रेंडली या कंफर्टेबल बनाएं, ताकि बच्चा औरों से ज्यादा आप पर भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके और सारी बातें आपसे शेयर कर सके। बच्चे कभी कभी इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि वो खुद शर्म महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को समझाएं और खुद भी समझें कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या शारीरिक शोषण में बच्चों का कसूर नहीं होता है। चाहे बच्चे कैसे भी कपड़े पहने हों, कहीं भी जाए, किसी से भी बात करे, ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का कसूर होता है जो ये गलत हरकत करता है। और साथ ही बच्चों को सिखाइए कि तब तक बच्चे ऐसी बातें बताने की कोशिश करते रहें जब तक कोई इंसान उनकी बात सुनता नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम बड़े लोग बच्चों की बात सुनते ही नहीं और उनकी बातों को टाल देते हैं। बच्चे को सिखाइए कि तब तक बताते रहो जब तक कोई आपकी बात नहीं सुनता है, और अगर फिर भी कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, बच्चों को सिखाइए कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 जिसपे बच्चा खुद या कोई भी फोन कर सकता है और वहां से एक घंटे के अंदर आपको मदद जरूर मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं।

दोस्तों आगे कुछ चीजें हैं जो बच्चे कर सकते हैं अपने आप को इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। और बहुत बार हो सकता है बच्चे इन चीजों को रोक नहीं सकते क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, पर कुछ चीजें हैं अगर सावधानी बरतेंगे तो अवश्य सुरक्षित रह सकते हैं। तो पहली बात, आपका बच्चा कभी भी किसी बड़े के साथ अकेला ना हो। कोशिश करें कि आपका बच्चा किसी पड़ोसी या अंकल के साथ अकेला ना हो, क्योंकि गलत करने वाला इंसान हमेशा इस मौके की तलाश में होता है। बच्चे को सिखाइए कि अगर कोई आपके बच्चों के साथ गलत करता है, तो पहली चीज बच्चे को चीखना, चिल्लाना और वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, अगर बच्चे ऐसा कर सकते हैं तो। अब अगर आपका बच्चा आपको बताता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो माता-पिता होने के नाते आपको क्या कदम उठाने चाहिए? दोस्तों कई बार ये सब सुनकर समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले माता-पिता अपने बच्चों की बात ध्यान से सुने। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों की बात को तसल्ली के साथ पूरी बात को सुने, बिना कोई सवाल किए, बीच में ना टोके, सवाल ना करें, क्योंकि जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में चाइल्ड अब्यूज था भी या नहीं। एक और बात, अगर आपने अपने बच्चों की बात सुन ली है तो प्लीज अपने बच्चे को यकीन दिलाइए कि वो अब सेफ हैं और आप उनको सुरक्षित रखेंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बच्चे को ये आश्वासन दिलाइए कि आपके बच्चे ने ये बात आपको बताकर बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इस वक्त बच्चे डरे हुए होते हैं। आप उन्हें यकीन दिलाइए कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है आपको बताकर, और अगर आप उनके माता-पिता हैं तो उन्हें गले से लगा लें और यकीन मानिए वे बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे। और दोस्तों बच्चों के सामने समाज के बारे

भविष्य के बारे में, प्लीज ये सारी बातें ना करें। माना कि आप माँ बाप हैं, आपको चिंता है, भविष्य के लिए डर है, पर बच्चे के सामने ये सब ना बोलें, क्योंकि वे ये सब सुनकर उन्हें लगेगा कि उनसे कुछ गलत हुआ है और हो सकता है वो कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। बच्चे अगर काफी छोटे हैं तो वे कॉन्फिडेंस लूज करेंगे और अपने आप को गिल्टी फील करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, बच्चे को उस इंसान का सामना करने की या उस इंसान से मिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसा करने से बच्चा बहुत डर सकता है। माना कि उस इंसान से अपने बच्चे को दूर रखना मुश्किल हो सकता है अगर वो आपका रिश्तेदार हो, घर में उठने बैठने वाला व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी अच्छा ये होगा कि आप ऐसे इंसान से सारे रिश्ते नाते तोड़ दें। आप खुद सोचिए कि आपके साथ अगर कोई ऐसा करे तो क्या आप ऐसे इंसान से मिलना चाहेंगे? तो आपका बच्चा उस इंसान से क्यों मिले? सोचिए क्या असर पड़ेगा उस बच्चे पर, और आप खुद सोचिए कि आपके लिए कौन ज्यादा महत्व रखता है, वो गलत करने वाला इंसान जो शायद आपका रिश्तेदार है पर उसने रिश्तेदारी तो नहीं निभाई, या आपका बच्चा? जी हाँ दोस्तों, आपका बच्चा आपके लिए ज्यादा कीमती है, उसकी परवरिश ज्यादा महत्व रखती है। और साथ में आप 1098 कॉल करिए, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, वो आपकी मदद करेंगी कि आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए, कैसे आपके बच्चे को काउंसलिंग मिलनी चाहिए और क्या कदम उठाएं कि गलत करने वाले व्यक्ति को सजा मिल सके। और ये बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे को न्याय मिले और वो इंसान किसी दूसरे बच्चे को शिकार ना बनाए।

दोस्तों, आज हर दूसरा बच्चा शारीरिक शोषण या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार है। चुप रहने से या इसे इग्नोर कर देने से ये समस्या खत्म नहीं होगी। तो अगर आपके साथ या आपकी जानकारी में किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 में कॉल करें और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं।

0: श्रोताओं, आशा करती हूँ आज के कार्यक्रम से आप जागरूक हुए होंगे।
1: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हमारी बेड़िया। आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत संगीता पंत की आवाज़ में सबरस के अंतर्गत।

से संगीत

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे शुभम सरकार से वायलिन वादन, राग था गुर्जरी तोड़ी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, ठीक उसके बाद होंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे के कारण

0: 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम हैं। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेर के संरक्षण में भारत की सफलता वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का गौरवशाली प्रमाण है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament were adjourned till 12 noon following opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. In the Lok Sabha, when the house met at 11 a.m., the presiding officer N.K. Premachandran tried to take up the question hour, but opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah over alleged police action during students' protests. In the Rajya Sabha, the

0: घर आंगन।
1: घर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला,
2: और मैं हूँ आपके साथ रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। और दोस्तों, भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, पर इन्हें अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए। और रश्मि जी, क्यों ना सबसे पहले हम अपने लिसनर्स को आज का सवाल बता दें। तो आपका आज का सवाल है कि किस स्वतंत्रता सेनानी से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और क्यों? उसका जवाब हमें भेजिए ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com पे।
2: जी, अगस्त का महीना आ गया है और 15 अगस्त आने वाला है, तो आप पहले से ही उसके रंग में रंगी हुई है। लेकिन मैं एक और रंग, जो सावन का रंग है, आज सावन का सोमवार है, दूसरा सोमवार है, और इस सुहाने मौसम और भोलेनाथ की भक्ति से सजे इस पावन सोमवार की आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है सावन का दूसरा सोमवार और श्रद्धा वातावरण में हरियाली और चारों ओर गूंजता हर हर महादेव का जयकारा। और भगवान शिव आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए और आपकी हर मनोकामना को पूरी करें। और जुड़ जाइए हमारे साथ सावन की इस खूबसूरत सुबह को और भी खास बनाने के लिए।
1: तो चलिए शुरू करते हैं मनोरंजन और जानकारी से भरे इस शो को, और सावन के आज के सोमवारी को और भी खूबसूरत बनाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: अभी हम सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में ये गाना पुराना मंदिर फिल्म से। और दोस्तों, आजादी तो मिल गई थी लेकिन देश को आगे बढ़ाने का असली सफर अब शुरू हुआ। यानी टूटे हुए ढांचे को मजबूत बनाना था, नई पीढ़ी को शिक्षित करना था, विज्ञान में आत्मनिर्भर बनना था और समाज को नई सोच देनी थी। इस सफर में भारत की अनेक बेटियों ने ऐसी मिसालें कायम की जिनकी बदौलत आज का भारत खड़ा है। आप क्या सोचती हैं रश्मि जी?
1: जी बिल्कुल, ऐसी ही कुछ महान महिलाओं के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर, और एम्स की स्थापना में उनकी निर्णायक भूमिका रही। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, नर्सिंग शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत नींव रखी उन्होंने।
0: और उसके बाद डॉक्टर कमला सोहनी, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें विज्ञान में PhD प्राप्त हुई। उन्होंने पोषण विज्ञान पर शोध किया और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नई राह खोली।
1: जी, और डॉक्टर असीमा चटर्जी भारत की अग्रणी महिला रसायन वैज्ञानिकों में शामिल है और कैंसर और मलेरिया की दवाओं पर उनका जो शोध है वो भारतीय विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
0: डॉक्टर दर्शन रंगनाथन प्रख्यात रसायन वैज्ञानिक, जटिल जैविक अणुओं के निर्माण और रसायन विज्ञान में उनके शोध ने भारतीय वैज्ञानिक जगत में नई पहचान बनाई।
1: और कैप्टन दुर्गा बनर्जी इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट, उन्होंने उस दौर में विमान उड़ाया मंजुला जब ये क्षेत्र एकदम पूरी तरह से पुरुषों के लिए माना जाता था।
0: और MS सुब्बलक्ष्मी को हम कैसे भूल सकते हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व मंच तक पहुंचाने वाली महान गायिका, वे भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार।
1: जी, और कमला देवी चट्टोपाध्याय भारतीय हस्तशिल्प करघा और रंगमंच के पुनर्जागरण की अग्रदूत, उन्होंने स्वतंत्र भारत में कारीगरों और पारंपरिक कलाओं को आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की महान स्तंभ, उनकी लेखनी ने नारी चेतना, शिक्षा और संवेदनशील समाज की नई दृष्टि दी।
1: जी, और आजादी का पर्व मनाने जाएंगे और याद करें लक्ष्मी सहगल को, आजाद हिंद फौज की पहली की वीर सेनानी और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने चिकित्सक और समाज सेवी के रूप में अपना जीवन आम लोगों की सेवा में समर्पित किया।
0: विजय लक्ष्मी पंडित स्वतंत्र भारत की अग्रणी महिला राजनयिकों में शामिल और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष।
1: जी, और स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली दुर्गाबाई देशमुख, और योजना आयोग से लेकर सामाजिक संस्थाओं तक उनका योगदान उल्लेखनीय है।
0: और अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला IAS अधिकारी, उन्होंने प्रशासनिक सेवा में महिलाओं के लिए रास्ता खोला और ये साबित किया कि देश की शासन व्यवस्था में महिलाएं भी नेतृत्व की भूमिका निभा सकती हैं।
1: जी, और रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम याद कर रही हूँ, भरतनाट्यम जो नृत्य की कला है उसको पुनर्जीवित करके उन्होंने विश्व भर में सम्मान दिलाया। महान नृत्यांगना और कला क्षेत्र की स्थापना कर भारतीय कला को नई पहचान दी। तो

तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं आंखों में बसा के आंखें मीट लूं।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना जुगनू फिल्म से। और देखिए रश्मि जी, भारत के मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं होते हैं, बल्कि वे विज्ञान, गणित, वास्तुकला और अभियंत्रण के ऐसे अद्भुत उदाहरण भी है जिन्हें देखकर आज भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं ऐसे चार मंदिर जहाँ इतिहास, आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम दिखाई देता है।
1: और मंजुला, सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी मंदिर की। यहाँ का जो प्रसिद्ध झूलता हुआ स्तंभ सदियों से लोगों को चकित करता आ रहा है। ये जो स्तंभ है ना, इसके नीचे से आज भी कपड़ा या कागज आसानी से निकल जाता है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि पूरे मंदिर की अत्यंत सटीक जो ये भार वितरण प्रणाली होती है ना, यानी कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कमाल है। और पूरे मंदिर का भार मंजुला इस प्रकार संतुलित किया गया है कि एक स्तंभ जमीन को पूरी तरह छुए बिना भी भाई वाह, संरचना एकदम मजबूती के साथ खड़ी है।
0: बहुत बढ़िया। और अब चलते हैं तमिलनाडु के मीनाक्षी अम्मन मंदिर की ओर। यहाँ के कुछ पत्थर के स्तंभों को हल्के से थपथपाने पर अलग अलग प्रकार की मधुर ध्वनियां सुनाई देती है।
1: अच्छा।
0: इन्हें संगीतमय स्तंभ भी कहा जाता है। और एक ही पत्थर से बने इन स्तंभों से अलग अलग स्वर निकालना उस समय के ध्वनि विज्ञान या पत्थर की गुणवत्ता और अद्भुत शिल्प कला की गहरी समझ को दिखाता है।
1: और तमिलनाडु से चलते हैं उड़ीसा की ओर, कोणार्क के सूर्य मंदिर की ओर। सूर्य के रथ के रूप में बने इस मंदिर के 24 विशाल पत्थर के जो पहिए हैं ना, वो केवल सजावट नहीं है। इन्हें इस प्रकार बनाया गया है कि ये सूर्य घड़ी यानी सन डायल की तरह समय का बताने का काम करें। और सूर्य की जो छाया है इन पहियों पर पड़कर समय का संकेत देती है। ये उस युग के खगोल विज्ञान, गणित और सौर ज्यामिति की अद्भुत समझ का प्रमाण है।
0: ऑसम। और अंत में तमिलनाडु का भव्य बृहदेश्वर मंदिर। इस मंदिर के शिखर पर लगभग 80 टन वजन का एक विशाल कम पत्थर स्थापित है। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि लगभग 1000 साल पहले बिना आधुनिक क्रेन के इसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया। तो माना जाता है कि इसके लिए कई किलोमीटर लंबा ढलानदार मार्ग बनाया गया है, जिसके सहारे इस विशाल पत्थर को ऊपर पहुंचाया गया। और यह उस समय की सिविल इंजीनियरिंग और तकनीक का अद्भुत मिसाल है।
1: तो मंजुला, ये जो भारत के सुंदर मंदिर है, ये हमारे केवल आस्था में ही नहीं, बल्कि विज्ञान, गणित, ध्वनि विज्ञान, खगोल विज्ञान और अभियंत्रण के भी अत्यंत जो है उन्नत की जी उदाहरण है। और यही कारण है कि ये धरोहरें आज भी पूरी दुनिया के लिए शोध और प्रेरणा का विषय बनी हुई है। तो मंजुला, आज तुम ये बताओ, मैं तुमसे प्रश्न पूछती हूँ, तुम सबसे प्रश्न पूछती हो कि इनमें से यदि एक मंदिर देखने का अवसर मिले तो आप सबसे पहले कौन से मंदिर में जाना चाहेंगे?
0: मैं सबसे पहले तमिलनाडु के मीनाक्षी टेम्पल में जाना चाहूंगी। और वैसे भी मंदिर का भ्रमण बहुत ही खूबसूरत
1: और मन भी तो एक मंदिर है ना मंजुला।
0: हाँ।

0: अभी हम सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म तेरे मेरे सपने। और रश्मि जी, ऐसा लग रहा है कि आप मेल्स पढ़ रही हैं।
1: देखिए, सबसे पहले नवीन भाटिया जी का हमेशा की तरह मेल आ गया है मोती नगर से। कहते हैं शहीद भगत सिंह, क्योंकि उनके बचपन से ही देश प्रेम मिला था।
0: और गौरी शंकर जी लिखते हैं, बेटा आप दोनों को राम राम। वैसे तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी एक से बढ़कर एक हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की, लेकिन उनके फेवरेट सुभाष चंद्र बोस है, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी मैथ कैसे हुई, तो उनका फेवरेट सुभाष चंद्र बोस है, जो मेरे भी फेवरेट हैं
1: जी। और आदित्य मुद्गल हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो मेरे पसंदीदा जो जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूँ वो जो क्रांतिकारी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल जिसे कहते हैं निर्भीक थे और देश पर वो कुर्बान हो गए, बहुत बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने।
0: और ऐना लिखती हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया।
1: वाह। और संदीप राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने कहा है, बहुत अच्छी और लंबी मेल उन्होंने लिखी है, कि गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम को केवल राजनीति नेताओं और शिक्षित वर्ग तक नहीं, बल्कि करोड़ों आम भारतीयों का जन आंदोलन बना दिया। सत्याग्रह की विचारधारा को विकसित किया, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे अभियानों को चलाया, और विभिन्न वर्गों जो थे, किसान हो, मजदूर हो, महिलाओं हो, उनको जोड़ा। साथ में स्वदेशी आंदोलन और दाढ़ी मार्च का वो जिक्र कर रहे हैं, अहिंसा का जिक्र कर रहे हैं, कि बहुत उनकी प्रतिबद्धता रही और कई वर्ष उन्होंने जेल में बिताए। सादा जीवन और उच्च विचार का आदर्श दिया, नैतिक उद्देश्यों के लिए उपवास और व्यक्तिगत त्याग को भी प्रभावी माध्यम के रूप से इस्तेमाल किया।
0: बहुत बढ़िया मेल। और अनन्या लिखती हैं कि मैं भगत सिंह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हूँ, और क्योंकि कम उम्र में उन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया, और उनके साहस, जो अदम्य साहस से उन्होंने फाइनली देश पे अपनी जान कुर्बान दी।
1: जी। और अवनीश कुमार जुड़ गए हैं, वो कहते हैं कि मैं जो हूँ सुभाष चंद्र बोस को बहुत पसंद करता हूँ, और भगत सिंह का भी नाम ले रहे हैं। भाई वाह, जो ये क्रांतिकारी हैं, ये शहीद हैं, जो देश पर कुर्बान होने वाले हैं, इनके ये हमारे दिलों में बसते हैं, इनकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। मंजुला,
0: जब बात हो ही रही है स्वतंत्रता सेनानी की, तो हमारा भी यही सोचना है कि जो पेरेंट्स होते हैं रश्मि जी, वही बच्चों में इस तरह का जो भावना है वो डेवलप कर सकते हैं। यानी बच्चे सुनते कम है, देखते ज्यादा है, इसलिए माता पिता जो करते हैं वही बच्चों का सबसे बड़ा पाठ बन जाता है। तो हम बात करेंगे कि घर परिवार में देशभक्ति के संस्कार देने में माता पिता की क्या भूमिका हो सकती है। जरा सोचिए रश्मि, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके बच्चे को सबसे पहले राष्ट्रगान किसने सिखाया, तिरंगा का सम्मान करना किसने सिखाया, देश के वीरों की कहानियां किसने सुनाई, तो आपका जवाब क्या होगा?
1: भाई मैं तो कहूंगी कि ये घर से संस्कार पहले मिल

0: मिलते हैं और सभी की जो घर में सबसे पहले जो जो माँ होती है वो पहली गुरु होती है, यही सच भी है, क्योंकि देशभक्ति की शुरुआत किसी किताब से नहीं, परिवार से होती है। बच्चों को केवल ये कहना कि देश से प्यार करो ये काफी नहीं है मंजुला, उन्हें ये भी दिखाना होगा कि प्यार कैसे किया जाता है देश से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और केवल सीमा पर जाकर लड़ना ही देशभक्ति नहीं है, समय पर टैक्स देना, पेड़ लगाना, पानी बचाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, कानून का पालन करना और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, ये भी सच्ची देशभक्ति है। एक छोटी सी आदत पूरे परिवार का माहौल बदल सकती है।
0: तो सप्ताह में एक दिन बच्चों के साथ किसी स्वतंत्रता सेनानी की कहानी पढ़िए, उनसे पूछिए अगर तुम उस दौर में होते तो देश के लिए क्या करते। भाई जो 15 अगस्त 26 जनवरी को केवल छुट्टी के रूप में नहीं मनाइए बल्कि जो घर में जो तिरंगे का महत्व है, संविधान की मूल भावना है, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनके बारे में भी चर्चा कीजिए।
1: और दादा दादी या नाना नानी के जीवन के अनुभव भी बच्चों तक पहुंचाइए। परिवार की ऐसी बातें बच्चों के मन में अपने देश के प्रति अपनापन और गर्व जगाती है। तो याद रखिए बच्चे वही बनते हैं जो घर में देखते हैं, इसलिए हम अगर चाहेंगे कि अगली पीढ़ी जिम्मेदार नागरिक बने तो शुरुआत हमें अपने से करनी होगी।
0: भाई वतन की मोहब्बत किताबों से नहीं आती, ये वो घर की परवरिश से दिल से उतर जाती है, और माता पिता जो संस्कारों का जो दीप जलाते हैं वही बच्चे आगे चलकर देश का मान बढ़ाते हैं।
1: क्या बात है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी राजा और रंग। और रश्मि जी, भारत को जानना है तो सिर्फ उसकी सड़कों और शहरों को मत देखिए, उसकी किताबों के पन्नों को भी पलटिए, क्योंकि इस देश की असली कहानी, उसके इतिहास, संस्कृति और उसकी सभ्यता उन परतों में छिपी है जिन्हें पढ़े बिना भारत को पूरी तरह से समझना मुश्किल है।
1: जी। और इसी में एक जो किताब है वो है भारत एक खोज, जो नेहरू जी की लिखी हुई किताब है। और
0: ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी था ना, याद है?
1: जी, ये इस पर एक दूरदर्शन का जो धारावाहिक बना है वो मुझे लगता है बहुत हमारे श्रोताओं ने
0: पॉपुलर
1: देखा
0: था।
1: होगा। और ये जो किताब है भारत के अतीत की एक व्यापक यात्रा कराती है, प्राचीन सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक, इतिहास, दर्शन, संस्कृति और भारतीय समाज को समझने की एक कोशिश करती है। इसे पढ़ेंगी ना मंजुला तो आपको महसूस होगा कि आज का भारत अपने अतीत से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: और दूसरी किताब उतनी ही यूनिक है, रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के चार अध्याय। यह किताब हमें बताती है कि भारतीय संस्कृति केवल एक परंपरा का नाम नहीं है, सदियों के संवाद, संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने इसे आकार दिया है। दिनकर ने भारतीय संस्कृति के निर्माण में अलग अलग सभ्यताओं और परंपराओं के योगदान को समझने की कोशिश की है।
1: जी। और ये जो तीसरी किताब है ये है हरिदत्त वेदालंकार की, भारत का सांस्कृतिक इतिहास। अगर आप भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को अपेक्षाकृत व्यवस्थित ढंग से समझना चाहें तो ये पुस्तक आपके लिए उपयोगी हो सकती है। वही भारतीय परंपराओं, सामाजिक जीवन, कला और सांस्कृतिक विकास को समझने के लिए बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना, इन्फॉर्मेटिव
0: इन्फॉर्मेटिव
1: आधार देती है ये किताब।
0: और एक और किताब है ए.एल. बाशम की अद्भुत भारत। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। यह पुस्तक प्राचीन भारत की सभ्यता, समाज, कला, साहित्य, धर्म और जीवन पद्धति के अनेक पहलुओं से परिचित कराती है। तो अगली बार रश्मि जी कोई अगर जानना चाहे भारत के बारे में ज्यादा से ज्यादा, तो उनको हम यही कहेंगे, इंटरनेट पर छोटी छोटी जानकारियां खोजने की बजाय एक अच्छी किताब उठाइए, क्योंकि किसी देश की असली पहचान सिर्फ उसके वर्तमान में नहीं होती, उसके जड़ें, उसके इतिहास, उसकी सभ्यता में भी होती है।

0: अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को फिल्म जिगरी दोस्त।
1: और हमारे पास कुछ मेल्स आ गई हैं मंजुला। आप हैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने हमें बहुत इंस्पायर किया है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। गांधी जी सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों की शुरुआत की। भाई वाह, और
0: सुदर्शन मुखी जी का भी आया है कि हम तो शहीद भगत सिंह जी के बहुत बड़े फैन हैं, मतलब उनसे प्रभावित हैं। तो भगत जी के फैन बहुत नजर आ रहे हैं। रश्मि जी, आप किन को पसंद करती हैं, बताइए।
1: मैं तो हम तो ये कहेंगे जो स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं वो हमारे हमारे सर माथे पर हैं, उनके दिए हुए बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में बेफिक्री के साथ सांस ले रहे हैं। स्वतंत्रता का जिसे कह रहे हैं, जो उन्होंने जो मेहनत की थी उसकी उसका जो फल है, हम उसको तो हम किसको कम कहें, किसको ज्यादा कहें, सभी हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। और भाई चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, और राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाक उल्लाह खान हो, ऊधम सिंह हो, मंगल पांडे हो, वीर अब्दुल हमीद हो, और साथ में महिला क्रांतिकारी जैसे दुर्गा भाभी, प्रीतिलता वाजेकर और कल्पना दत्त, बीना दास, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, ये सभी हम कहेंगे हमारे लिए खास हैं। और इसके साथ

0: अनगिनत ऐसे भी बलिदानी क्रांतिकारी
1: जिनका
0: हैं
1: नाम हम जानते
0: जी,
1: भी नहीं
0: जिन जो कि अनकहे हैं, अनसुने हैं, उनके बलिदान जो है वो भारतीय इतिहास में दर्ज हैं। उनके लिए भी हम उनको भी उनके प्रति भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं FM गोल्ड के स्टूडियो से।
1: और अब रश्मि जी फिर से चलते हैं बारिश की ओर। बारिश का मौसम आते ही, मानसून आते ही, बरसात हो ना हो, लेकिन हमारे बाल और हमारे जो त्वचा है वो थोड़ा सा उनका रख रखाव करना जरूरी हो जाता है। ऐसे में तेल, क्रीम या दूसरे सौंदर्य उत्पादों के साथ अपने खाने पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले शुरुआत क्यों ना फ्रूट से करते हैं।
0: भाई आजकल तो देखो जामुन है, पपीता, नाशपति, अमरूद है, अनार, सेब, इनमें से जो भी फल आपके आसपास आसानी से मिल रहे हैं उन्हें रोज की थाली में जगह दीजिए। अमरूद में विटामिन सी होता है जो त्वचा में कोलेजन बनाने में मदद करता है और शरीर में आयरन के अवशोषण के लिए भी बहुत अच्छा है। अब बालों की बात करें मंजुला, तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, जैसे दाल, चना, पनीर हो गई, दही हो गई और दूसरे प्रोटीन खाद्य पदार्थ जो है वो नियमित रूप से लेने चाहिए। आजकल जो सावन का महीना चल रहा है तो सिर्फ बालों पर ही कुछ लगाना काफ़ी नहीं, बल्कि बालों को मजबूत बनाने के लिए शरीर को अच्छा भोजन भी तो चाहिए।
1: बिल्कुल सही। और हमारी रसोई की एक छोटी सी लेकिन काम की चीज़ है करी पत्ता। इसे सिर्फ तड़के तक सीमित क्यों रखें, चटनी, पोहा, उपमा या दाल में डालिए। करी पत्ते में कई विटामिन होते हैं, खनिज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत काम के होते हैं। और अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स के, सीड्स के, अखरोट, अलसी, कद्दू के बीज और तिल थोड़ी सी मात्रा में रोज या नियमित रूप से इन्हें खाने की आदत डालिए। इसमें बहुत ही अच्छे वाले फैट होते हैं और दूसरे पोषक तत्व होते हैं।
0: हाँ, और आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। भाई बालों में झड़ने का ये कारण हो सकती है, इसलिए भाई जो चना है, दालें हैं, तिल है, कद्दू के बीज हैं, ड्राई फ्रूट जो से मंजुला कह ही रही थी, इसको भोजन में शामिल कीजिए। और एक आसान नियम याद रखिए, भाई आयरन वाला अगर भोजन लेते हैं ना तो विटामिन सी वाला भोजन जरूर लें, जैसे चने के साथ थोड़ा सा नींबू ले लें या भोजन के बाद अमरूद ले लें।
1: और मानसून में पानी पीना मत भूलिए। बादल देखकर शरीर की पानी की जरूरत कम नहीं हो जाती दोस्तों। तो इस मौसम अपनी खूबसूरती के लिए सिर्फ आईने के सामने नहीं, खाने की मेज पर भी थोड़ा सा समय दीजिए। मौसमी फल, पर्याप्त प्रोटीन, मेवे और बीज, आयरन वाले खाद्य पदार्थ और रोज का संतुलित भोजन, यही है प्राकृतिक खूबसूरती की अच्छी शुरुआत।
0: क्योंकि भाई मंजुला एक अच्छा जो सौंदर्य उत्पाद है वो आपको बाहर से संवार सकता है, लेकिन भाई सही भोजन अगर आप लेते हैं तो वो आपके शरीर को भीतर से पोषण देगा।

0: और अभी कुछ मेल्स और आ गए हैं रश्मि जी, मैं देख रही हूँ कि आप उसको पढ़ना चाह रही हैं,
1: तो तुम ही पढ़ दो पहले।
0: हाँ, तो अनिल जी लिखते हैं, अनिल मेहता इनका नाम है। भगत सिंह की अतुलनीय देशभक्ति और उनके साहस की वजह से प्रभावित हूँ मात्र

0: साल की छोटी सी उम्र में देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लेना उनकी असीम राष्ट्रभक्ति को दिखाता है।
1: और उमेश कुमार खयाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि मेरे जो प्रिय नेता हैं वो है सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जी जो है उनसे भी मैं बहुत प्रभावित हूँ।
0: और डॉक्टर राजेश्वर राव भी लिख रहे हैं कि लाल बाल पाल उनके जो फेवरेट पावरफुल इंस्पिरेशनल जो हैं वो थे, उनमें से एक फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने किया। और भी बहुतों का नाम लिखा है, हमारे पास उतना वक्त नहीं है, फटाफट एक
1: जल्दी
0: और
1: से एक और मेल पढ़ देते हैं। हनी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो प्रेरणा लेता हूँ भगत सिंह से, और क्योंकि जो उनकी जो उम्र थी बहुत कम थी जब उन्होंने फांसी का फंदा चूमा, और कहते हैं कि मैं कभी भी कल्पना नहीं कर सकता कि कोई इतने किसी के अंदर इतनी निर्भीकता भी हो सकती है। और क्योंकि ये मैं अनुवाद चलते चलते कर रही हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में ये मेल लिखा हुआ है और कहते हैं उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। और एक और मेल मैं पढ़ देती हूँ सुगंधा राव, वो कह रहे हैं भाई भगत सिंह का फिर नाम आ गया, वो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रही हैं।

0: अभी आप सुन रहे हैं आशा भोंसले की आवाज में। ये गाना इसी खूबसूरत गीत के साथ आज का सफर को हम यही विराम देते हैं। दीजिए मंजुला और
1: रश्मि को
0: इजाजत।
1: नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता में एक रूपता तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता बढ़ाने, स्वतंत्र

निरंतरता पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, लेकिन सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

0: आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च किया। सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की 98% मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी विधानसभा के पास पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और नई विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 विद्यार्थी अब भी अनिश्चितकालीन अनशन में है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी में वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 112 अंक बढ़कर 78,611 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. When the lower house reassembled after the first adjournment at 12 noon, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal introduced the Tribunals Reforms Bill 2026 amid the opposition uproar. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy introduced the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026. Minister of State for Home Nityanand Rai introduced the Kerala Alteration of Name Bill 2026. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol introduced the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. After that, the presiding officer Sandhya Ray urged the opposition members to go back to their seats and allow the House to function. The opposition members were on their feet demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah over the issue of alleged police action during student protests over the NEET issue. As the pandemonium continued, the presiding officer adjourned the House till 2 p.m.

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 1:10 हो रहे हैं और ये वक्त है एक ही फिल्म से प्रोग्राम का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म की जिसने रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, म्यूज़िक और पुनर्जन्म की कहानी को एक ही पर्दे पर इतने शानदार अंदाज में पेश किया कि लोग आज भी उसे बड़े प्यार से याद करते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, आप शायद समझ ही गए होंगे कि किस मूवी की बात हम कर रहे हैं। फिल्म का नाम है ओम शांति ओम। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो यकीन मानिए, इसकी शुरुआत का वो 70 के दशक वाला फिल्मी माहौल, ओम प्रकाश मखीजा की मासूमियत और शांति प्रिया की चमक आज भी दिल में बस जाती है। और अगर नहीं देखी है तो आज की इस बातचीत के बाद आपको ये फिल्म देखने के लिए ज़रूर प्रेरित करेगी। दोस्तों, ओम शांति ओम साल 2007 में रिलीज़ हुई थी। इसका निर्देशन किया था फरहा खान ने, जो इस फिल्म की कहानीकार भी थी। पटकथा फराह खान और मुश्ताक शेख ने मिलकर लिखी थी, जबकि संवाद लिखे थे मयूर पुरी ने। फिल्म के संपादक थे शिशिर कुंदर और निर्माता थी गौरी खान। एक दिलचस्प बात ये भी कि फिल्म का शीर्षक सुभाष घई की 1980 की फिल्म कर्ज के मशहूर गीत ओम शांति ओम से लिया गया था। फिल्म की शुरुआत में उस गीत की झलक भी दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि ओम शांति ओम में पुनर्जन्म और बदले की कहानी का प्रभाव कर्ज जैसी फिल्मों से प्रेरित दिखाई देता है, लेकिन फराह खान ने इसे पूरी तरह अपने अंदाज में पेश किया है, जिसमें 70 के दशक के बॉलीवुड की चमक, ड्रामा और आत्मव्यंग भी शामिल हैं। और एक बेहद रोचक जानकारी कि फिल्म का वो जो दृश्य है जिसमें ओम आग के बीच में जाकर शांति प्रिया को बचाने की कोशिश करता है, उसे 1957 की फिल्म मदर इंडिया के सेट पर हुई वास्तविक घटना से प्रेरित माना जाता है, जहां सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया था। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं इस फिल्म का ये बेहतरीन सा गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है ओम शांति ओम। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन कलाकारों की जिन्होंने ओम शांति ओम को यादगार बना दिया। फिल्म में शाहरुख खान ने दोहरी भूमिका निभाई, पहले ओम प्रकाश मखीजा जो 70 के दशक का एक जूनियर आर्टिस्ट है, और फिर पुनर्जन्म के बाद ओम कपूर एक सुपरस्टार। शाहरुख खान ने इस फिल्म के लिए अपने बॉडी के ऊपर बहुत मेहनत की। दर्द डिस्को के लिए शाहरुख खान ने पहली बार बड़े पर्दे पर अपने सिक्स पैक्स एब्स दिखाए। और अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा इसी फिल्म से, बिना कोई स्क्रीन टेस्ट दिए। फराह खान ने उन्हें लॉन्च किया और शांति प्रिया के किरदार में दीपिका की खूबसूरती और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस ने सबका ध्यान खींच लिया। पहली ही फिल्म से दीपिका रातों रात स्टार बन गई। फिल्म में खलनायक मुकेश मेहरा की भूमिका निभाई अर्जुन रामपाल ने, और उनके अभिनय को भी काफ़ी पसंद किया गया। इसके अलावा साथी कलाकारों में नज़र आए थे श्रेयस तलपड़े, और इनके साथ थे और भी कुछ कलाकार। अब एक दिलचस्प बात उस गाने पर जिसकी चर्चा आज भी होती है, दीवानगी दीवानगी। इस गाने में बॉलीवुड के 31 बड़े सितारे एक साथ नज़र आए थे। इतने सारे सुपरस्टार को एक ही गाने में लाना अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा माना गया है। तो चलिए आइए सुनते हैं उसी गीत को और महसूस करते हैं एक साथ 31 सितारों को।

0: नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
3: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है ओम शांति ओम, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, अब बात करते हैं फिल्म के कहानी की। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। ओम प्रकाश मखीजा एक जूनियर आर्टिस्ट है जो फिल्मों में छोटे मोटे रोल करता है, लेकिन सपना सुपरस्टार बनने का देखता है। वह मशहूर अभिनेत्री शांति प्रिया का बहुत बड़ा प्रशंसक है। एक दिन ओम की मुलाकात शांति प्रिया से होती है और धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि शांति प्रिया सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी है। लेकिन कहानी में बड़ा मोड़ तब आता है जब फिल्म निर्माता मुकेश मेहरा की सच्चाई सामने आती है। मुकेश अपने करियर और लालच के लिए शांति प्रिया के साथ विश्वासघात करता है। आग में घिरी उस भयावह घटना में शांति प्रिया की मौत हो जाती है और ओम भी उसे बचाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद ओम प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। इस बार वह बनता है ओम कपूर, एक अमीर और मशहूर फिल्म स्टार। धीरे धीरे उसे अपने पिछले जन्म की याद आने लगती है। फिर शुरू होती है सच का सामने आने वाली और शांति प्रिया को न्याय दिलाने की कोशिश। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें रहस्य, भावनाएं, कॉमेडी और बॉलीवुड पर हल्का फुल्का व्यंग सब कुछ साथ चलता है। क्लाइमेक्स में फिल्म शूटिंग और वास्तविक घटनाओं को जिस तरह फिल्माया गया है वो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की जो फिल्म है वो है ओम शांति ओम। फिल्म का आप बात करेंगे हम फिल्म के संगीत की। फिल्म का संगीत तैयार किया था विशाल शेखर की जोड़ी ने। गीत लिखे थे जावेद अख्तर, विशाल दादलानी और कुमार ने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर दिया था संदीप चौटा ने। गायकों की सूची भी शानदार थी। के शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, सोनू निगम, राहत फतेह अली खां, सुखविंदर सिंह और अभिजीत भट्टाचार्य ने अपनी आवाज़ें दी। इस फिल्म के गाने सिर्फ हिट ही नहीं हुए बल्कि 2007 की पहचान बन गए। यह एल्बम 2007 में भारत का सबसे ज़्यादा बिकने वाला संगीत एल्बम बना और इसकी लगभग 20 लाख यानी 2 मिलियन यूनिट्स बिकी थी। उस दौर में ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। दीवानगी सॉन्ग की शूटिंग में आप इसमें एक बड़ी सेलिब्रेशन थी। इतने सारे सितारों की तारीख मिलना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात थी। ख़ास बात यह है कि फिल्म के अलग अलग दौर 70 और मॉडर्न टाइम के हिसाब से संगीत का जो टोन था वो भी बदला गया था, जो विशाल शेखर की बड़ी सफलता मानी जाती है। तो आइए चलते हैं अगले गीत की ओर।

श्रोताओं, अब बात करते हैं फिल्म की सफलता की। ओम शांति ओम लगभग 40 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और रिलीज़ के बाद इसने शानदार कमाई की। ये 2007 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी और उस समय की सबसे बड़ी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर में शामिल हो गई। ये थी यहाँ तक कि रिलीज़ से पहले ही फिल्म की एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड टूटने लगे, खासकर दिल्ली और बड़े शहरों के सिनेमाघरों में। अवार्ड्स की बात करें तो फिल्म ने को 53वें फिल्म फेयर अवार्ड में 13 नामांकन मिले। इसमें से फिल्म ने दीपिका पादुकोण के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला डेब्यू और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का पुरस्कार जीता। फिल्म के विजुअल सेट्स और 70 के दशक को दोबारा जीवित करने की कोशिश की भी खूब तारीफ हुई। यह फिल्म बॉलीवुड के इतिहास को दिखाने वाली खास फिल्मों में से एक है। एक और खास बात, फिल्म रिलीज होने के बाद फिल्म पत्रकार और लेखक मुश्ताक शेख ने द मेकिंग ऑफ ओम शांति ओम किताब लिखी, जिसमें फिल्म के निर्माण, शूटिंग और पर्दे के पीछे की कई दिलचस्प घटनाओं का जिक्र किया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी फिल्म ओम शांति ओम के बारे में ढेर सारी जानकारी। इसी के साथ हमारे कुछ श्रोताओं के मेल आ गए हैं, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। ये है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, रघुनाथ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। और ये है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसार और नरगिस खातून। और आगे चलते हैं, और ये है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, ये लिखते हैं कि एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुन रहे हैं, रोशन लाल देवगन और हेमलता और डिम्पल। गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्णजीत, दलजीत, राजदीप, गुंडूर और गुलरार और अवीर राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

आगे चलते हैं और देखते हैं और हमारे पास किन श्रोताओं के मेल आए हैं। महाराष्ट्र से संतोष और विनोद जी का आया है मेल हमारे पास, और ये है नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस निर्मला और विशाल, और ये है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी का। और हम आगे चलते हैं, ये मुकेश भट्ट जी ने लिखा हुआ है हमें, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ है, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे श्रोता और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम उनका नाम नहीं पढ़ पा रहे, उसके लिए बहुत बहुत आपसे माफ़ी मांगते हैं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी अमन देव तो खबर सुनो। संसदीयां दोवें सभावां दी कारवाई नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों के प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत वख-वख मुद्दियां ते विरोधी धिर दे हंगामे कारण दोपहर बाद 2 बजे तक लई मुलतवी कर दिती गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकां नूं हर घर तिरंगा मुहिम विच उत्साह नाल हिस्सा लैण ते विकसित भारत दे निर्माण विच योगदान पाउण दी अपील कीती है। झारखंड विच भर्ती प्रीख्यावां विच कथित बेनियमियां खिलाफ रोस प्रगट करदिआं वड्डी गिणती च विद्यार्थियों ने अज विधानसभा वल मार्च कीता है। सरकारी खरीद प्लेटफार्म जैम ते कुल कारोबार वध के 1,55,000 करोड़ रुपए तो वध हो गया है। अज विश्व शेर दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार भाईचारक भागीदारी राही जंगली जीवां की संभाल लई वचनबद्ध है। हुण खबरां विस्थार नाल। संसद दीआं दोहां सभावां दी कारवाई नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों दे प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कारवाई समेत वख-वख मुद्दिआं ते विरोधी धिर दे हंगामे कारण दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दित्ती गई है। राज सभा दी कारवाई जदों दोपहर 12 बजे

0: एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन अज तो 4 दिन के सरकारी दौरे से मॉरीशस जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा मॉरीशस नाल दवल्ले समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधा मजबूत करने लिए भारत के निरंतर यत्नों का हिस्सा है। दौरे दौरान वह मॉरीशस सरकार की उच्च लीडरशिप नाल गलबात करेंगे ते समुद्री सुरक्षा रक्षा सहयोग समर्था निर्माण और फौजी सहयोग वर्गे आपसी हित के मामलों ते चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अज विश्व शेर दिवस से कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उन्होंने निवास स्थान का विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव के एक लेख साझा करदे श्री मोदी ने कहा कि भाईचारक भागीदारी राही जंगली जीवों की संभाल प्रति सरकार की वचनबद्धता पीढ़ियों तक विलखण प्रजातियों सुरक्षित रखने की एक प्रेरणादायक मिसाल है। चौगिरदा जंगलात ते जलवायु तब्दीली मंत्री भूपेन्द्र यादव दे लेख विच कहा गया है कि शेरां दा निवास स्थान 30,000 वर्ग किलोमीटर तो वध के 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। लेख विच कहा गया है कि शेरां दी गिणती 2015 विच 523 तो वध के 2025 विच 891 हो गई है। विश्व शेर दिवस दे मौके ते केंद्रीय वातावरण जंगलात जलवायु तब्दीली मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि एशियाई शेरां दी संभाल विच भारत की सफलता सरकार की जंगली जीवों और जैव भिन्नता प्रति अटुट वचनबद्धता की मिसाल है। सोशल मीडिया से एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण रखा की रक्षा तो लैके संभाल के यत्नों मजबूत करने तक देश ने साबित किया है कि विकास और कुदरत संभाल नालों नाल चल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2026 दी राष्ट्रमंडल खेडों दौरान ग्लासगो के एक रेस्टोरेंट विच भारत का गलत नक्शा देखने तो बाद इतराज उठाने लई मुक्केबाज लवलीना बुरगहन की शलाघा की है। खिडारियों नाल गलबात दौरान प्रधानमंत्री ने लवलीना की प्रशंसा की ते कहा कि यह एक सोच समझ के की गई प्रतिक्रिया सी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस कदम नूं लंबे समय तक याद रखा जाएगा। लवलीना बुरगहन ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेडां 2026 विच औरतों के 75 किलोग्राम मुक्केबाजी मुकाबले विच चांदी का तमगा जीतिया सी। मौसम विभाग ने अज पूर्वी राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड ते पछमी मध्य प्रदेश विच बहुत भारी मीह लई ओरेंज अलर्ट जारी किया है। अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश बिहार विदर्भ ते उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों विच भी भारी मीह पैण की संभावना है। इस तों अलावा मौसम विभाग ने अज दोपहर बाद दिल्ली विच वख-वख थावां ते दरमियानी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। हिमाचल प्रदेश विच मानसून मुड़ सरगर्म हो गया है। राजधानी शिमला समेत राज्य के कई हिस्सों विच बीती रात तों रुक रुक के मीह पै रहा है। अंत विच चोणवीआं खबरां इक वार फिर सुन लो। संसद दीआं दोहां सभावां दी कार्रवाई नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों दे प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत वख-वख मुद्दिआं ते विरोधी धिर दे हंगामे कारण दोपहर बाद 2 बजे तक लई मुलतवी कर दित्ती गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकां नूं हर घर तिरंगा मुहिम विच उत्साह नाल हिस्सा लैण ते विकसित भारत दे निर्माण विच योगदान पाउण दी अपील कीती है। झारखंड विच भर्ती प्रीख्यावां विच कथित बेनियमियां खिलाफ रोस प्रगट करदिआं वड्डी गिणती च विद्यार्थियों ने अज विधानसभा वल मार्च कीता है। सरकारी खरीद प्लेटफार्म जिम ते कुल कारोबार वध के 1,55,000 करोड़ रुपए तों वध हो गया है ते अज विश्व शेर दिवस है। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रदेशक खबरां दा बुलेटिन शामी 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। कई मामलों पर अपोजिशन अरकान के शोरगुल के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज भी रुकावट पड़ी। लोकसभा में ट्राइब्यूनल्स इस्लाहात बिल 2026 समेत 4 बिल पेश किए गए। मजकूरा बिल का मकसद ट्राइब्यूनल्स के कामकाज में शफाफियत और सलाहियत में बेहतरी लाना है। झारखंड में भर्ती इम्तहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर एहतजाज करने वाले तलबा ने रियासती असम्बली की जानिब अपना मार्च शुरू कर दिया है। पूरे मुल्क में तिरंगा रैलियों का एहतमाम किया जा रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ रही है। मशरकी चीन के कुछ हिस्सों में शदीद तूफान डॉल्फिन से काफी नुकसान हुआ है। 10 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। और आज बब्बर शेरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 साल में बब्बर शेरों को महफूज रखने का सफर कामयाबी के साथ तय किया है और इनकी तादाद 891 हो गई है। अब खबरें तफसील से। कई मामलों पर अपोजिशन अरकान की हंगामा आरई के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। इनमें नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई का मामला भी शामिल है। ट्राइब्यूनल्स की असलाहत से मुतालिक बिल 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। पहली बार मुलतवी होने के बाद जब दिन में 12 बजे ऐवान की कार्रवाई फिर शुरू हुई तो कानून और इंसाफ महकमे के वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल ने अपोजिशन अरकान के शोरगुल के बीच मजकूरा बिल पेश किया। इसका मकसद मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल्स के चेयरपर्सन्स और अरकान की तालीमी काबिलियत और तकर्रुर में यकसानियत, शफाफियत और आज़ादी को यकीनी बनाने के साथ साथ सलाहियत को बेहतर बनाना नीज ट्राइब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज में बेहतरी लाना है। मजकूरा बिल में एक कौमी ट्राइब्यूनल्स कमीशन कायम करने की भी तजवीज़ है। इधर कोयले और कानों के महकमे के वजीर जी किशन रेड्डी ने कानों और मादनियात से मुतालिक तरक्याती और इंजिबाती तरमीमी बिल 2026 पेश किया। मजकूरा बिल में 1957 के मुतालिका एक्ट में तरमीम करने की बात कही गई है। इधर उमूर दाखिला के वजीर ममलकत नित्यानंद राय ने केरला से मुतालिक नाम बदलने का बिल 2026 पेश किया। इमदाद बाहमी के वजीर ममलकत मुरलीधर मोहन ने कौमी इमदाद बाहमी तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 पेश किया, जिसका मकसद 1962 के मुतालिका एक्ट में मजीद तरमीम करना है। इसके बाद सदनशीन सिंधियारे ने अपोजिशन अरकान पर जोर दिया कि वह अपनी अपनी सीटों पर वापस चले जाएं और ऐवान का कामकाज होने दें। सदनशी ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल जब दिन में 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो सदनशी इनके प्रेमचंद्रन ने सवालों के वक्फे की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई का मामला उठाया और अपोजिशन के शोरगुल के तनाजुर में कार्रवाई दिन में 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत दीगर उमूर पर अपोजिशन की हंगामा आरई के तनाजुर में राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। पहले इल्तवा के बाद 12 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फ सवाला शुरू किया। बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने बताया कि बिजली से मुतालिक कौमी पॉलिसी 2026 का मसौदा मुतालिका फरीकों से मुशावरत मुकम्मल होने के बाद हतमी मरहले में है। ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इस पॉलिसी को बिजली की तकसीम के स्मार्ट निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए तैयार किया गया है।
2: स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान आ गया है।
1: उन्होंने मजीद कहा कि बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मांग और सप्लाई दोनों इंतजाम पर खसूसी तवज्जो दी गई है। अपोजिशन के शोरगुल के दौरान जनाब मनोहर लाल ने ज़िमनी सवालों के जवाब दिए। हंगामा आरई जारी रहने पर चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल दिन में 11 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो मुख्तलिफ वजीरों ने अपनी अपनी वजारतों से मुतालिक दस्तावेजात ऐवान की मेज़ पर पेश की। पार्लिमानी कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की गईं, जिनमें खजाना, हाउसिंग और शहरी उमूर, रेलवे, समाज इंसाफ और तफवीज इख्तियार से मुतालिक कमेटियाँ शामिल थीं। इसके बाद सदनशीन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फ़े सिफर शुरू किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से झारखंड कानून साज असम्बली की जानिब मार्च शुरू कर दिया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC में इस्लाहात से मुतालिक मंच की क्यादत में तलबा का एहतजाज आज 17वें रोज में दाखिल हो गया है। एहतजाज कर रहे तलबा बाज़ इम्तिहानात खासतौर पर JSSC CGL को रद्द करने और मुबैना बेजाबतगियों की CBI जांच का मुतालबा कर रहे हैं। इस दौरान हुकूमत ने दावा किया है कि तलबा के 98% मुतालबात मान लिए गए हैं। अपोजिशन रहनुमा बाबूलाल मरांडी और रियासती सदर आदित्य साहू समेत BJP के रहनुमाओं को वजीर आला हेमंत सोरेन की रहायशगाह के बाहर एहतजाज के दौरान हिरासत में लिया गया है। पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा तहरीक जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र में हर घर तिरंगा मुहिम हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ शुरू हो गई है। ریاست کے مختلف ضلعوں میں ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا گیا، ان میں بیڑ، تھانے اور بلدانہ شامل ہیں۔

0: उधर मणिपुर में वजीर आला युमनाम खेमचंद ने अपनी रिहायशगाह से इस मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी तस्वूर करें। वजीर आजम ने मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो हर घर तिरंगा तहरीक में जोश व खरोश के साथ शामिल हों और विकसित भारत की तामीर की समत अपना रोल अदा करने की खातिर अपने इज्तिमाई अज़्म की तजदीद करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारी शान है और मुल्क के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए तरगीब का एक मुस्तकिल वसीला है। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी है कि इस साल कोशिशें वंदे मातरम के लिए वक्फ हैं और वो भी एक ऐसे वक्त के जब हम कौमी गीत के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। चीन के हुकाम ने शदीद तूफान डॉल्फिन के आने के तनाजुर में शंघाई समेत मशरकी चीन से 10 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। खित्ते में शदीद तूफान के नतीजे में मूसलाधार बारिश हुई और ट्रांसपोर्ट निजाम में खलल पड़ गया। आज शंघाई में तकरीबन 1000 परवाजें मनसूख की गईं। चीन के हुकाम ने इससे पहले डॉल्फिन तूफान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया था, जो इस साल वहां आने वाला सबसे शदीद तूफान है। बब्बर शेरों के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में एशियाटिक लायन के मस्कन और इसकी रेंज में उसत के साथ साथ इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव का तहरीर करदा मजमून शेयर करते हुए जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि लोगों को की मजबूत शमूलियत के साथ बब्बर शेरों को महफूज रखने के सरकार का पुख्ता अज़्म मुल्क के जंगली जानवरों का तहफ्फुज करने की एक बाइस से तरगीब मिसाल है। माहौलियात जंगलात और आब हवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव के तहरीर करदा मजमून में कहा गया है कि 11 ज़िलों में 2020 में तकरीबन 30,000 मुरबा किलोमीटर के इलाके से बढ़कर बब्बर शेरों का मस्कन अब तकरीबन 35,000 मुरबा किलोमीटर तक फैल गया है। वजीर आजम ने मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान खिलाड़ियों ने वजीर आजम के साथ खेलों से मुतालिक अपने तजर्बात शेयर किए। वजीर आजम मोदी ने कहा कि वक़ार सिर्फ फीता काटने से हासिल नहीं होता बल्कि एक नौजवान तालिबे इल्म या उभरते हुए खिलाड़ियों के जज्बे के साथ खेलने से हासिल होता है।
1: मेरे यहाँ मुझे यहाँ लगभग 12-13 साल हो गए इसी मकान में। अगर मैंने रेगुलरली और हर बार किसी को रिसीव किया है, किसी को मैं मिला हूँ, तो खिलाड़ी है। पिछले 10-12 सालों के आप लोगों के पुरुषार्थ के कारण, भारत को लगातार विजय दिलाने के आपके प्रयासों के कारण और उत्तरोत्तर सफलता में नई ऊंचाइयां पार करने की परंपरा के कारण, जो काम शायद हम स्कूलों में जाके कहें कि नहीं नहीं खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो काम स्कूलों में जाकर के हम कर सकते थे, उससे ज्यादा आपका मेडल उनको इंस्पायर करता है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। कई मामलों पर अपोजिशन अरकान के शोरगुल के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज भी रुकावट पड़ी। लोकसभा में ट्राइब्यूनल्स इस्लाहात बिल 2026 समेत 4 बिल पेश किए गए। मजकूरा बिल का मकसद ट्राइब्यूनल्स के कामकाज में शफाफियत और सलाहियत में बेहतरी लाना है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतियों के मामले पर एहतजाज करने वाले तलबा ने रियासती असम्बली की जानिब अपना मार्च शुरू कर दिया है। पूरे मुल्क में तिरंगा रैलियों का अहतमाम किया जा रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम में तेजी आ रही है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Disruption continues in both houses of parliament amid opposition uproar on several issues. 4 bills, including Tribunals Reforms Bill 2026, introduced in Lok Sabha. Bill aims to improve transparency and efficiency in functioning of tribunals. Protesting students begin their march towards Jharkhand Assembly over alleged irregularities in recruitment examinations. Har Ghar Tiranga movement gains momentum as Tiranga rallies organized across the nation. Over 10 lakh people evacuated as Typhoon Dolphin batters parts of eastern China. World Lion Day being celebrated today. Prime Minister Narendra Modi says India scripted successful conservation journey from 523 lions to 891 in last 10 years.

0: शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
3: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
1: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
4: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
1: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
5: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित है जॉनी लीवर पर।

जी हाँ श्रोताओं, आपने गैस कर ही लिया होगा कि मैं आज किस हीरो की बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ कॉमेडियन जॉनी लीवर की। जब भी हिंदी सिनेमा में कॉमेडी की बात आती है ना, तो कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक ऐसा कलाकार जिसने सिर्फ अपने अभिनय से लोगों को ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के संघर्षों से ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। जी हाँ, सभी के बस की बात नहीं होता जीवन के संघर्षों को अपनी ताकत बनाना, लेकिन जॉनी लीवर एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने संघर्षों से भी सीख ली। जिस इंसान ने बचपन में आर्थिक परेशानियां देखी, 7वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, सड़कों पर पेन बेचने पड़े और लोगों की नकल करके अपना गुजारा करना पड़ा, वही बच्चा आगे चलकर हिंदी सिनेमा का ऐसा कॉमेडियन बना जिसकी आवाज, अंदाज, चेहरे के हाव भाव और संवाद बोलने की शैली की अपनी अलग पहचान थी है।

उनका ये नाम जन से नहीं था। जब उन्होंने हिंदुस्तान लीवर की एक कंपनी के कार्यक्रम में अपने वरिष्ठ अधिकारियों की शानदार नकल की तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने उन्हें मजाक मजाक में जॉनी लीवर कहना शुरू कर दिया। यही नाम आगे चलकर उनकी पहचान बन गया और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो इसी नाम को अपना स्क्रीन नाम बना दिया। यानी जिस कंपनी में उनके पिता काम करते थे और जहां जॉनी ने भी संघर्ष के दिनों में काम किया, उसी लीवर नाम से आगे चलकर उन्हें दुनिया भर में पहचान मिली। जॉनी लीवर ने मंच से अपने करियर को मजबूत बनाया। उन्होंने स्टेज शो मिमिक्री के जरिए अपनी पहचान बनाई। उस दौर में आज की तरह स्टैंड अप कॉमेडी का इतना बड़ा मंच नहीं था, लेकिन जॉनी लीवर ने अकेले मंच पर खड़े होकर अपनी आवाज, चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और मिमिक्री से लोगों को हंसाने का हुनर विकसित किया।

सितारों से सजी इस फिल्म ने जॉनी लीवर ने अपने हास्य अंदाज से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इसके बाद तो जैसे हिंदी सिनेमा में कॉमेडी और जॉनी लीवर एक दूसरे के पर्याय बन गए। अंदाज अपना अपना, करण अर्जुन, कुली नंबर वन, कृष्णा, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, कुछ कुछ होता है, बादशाह, कभी खुशी कभी गम और फिर हेरा फेरी और फिर एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने दी और जिन्होंने उसमें बहुत ही यादगार किरदार निभाया। जॉनी लीवर ने हिंदी सिनेमा में कॉमेडियन के किरदार को एक नई ऊंचाई दी। उनसे पहले भी महान हास्य कलाकार हुए जैसे महमूद, जॉनी वॉकर और असरानी, लेकिन जॉनी लीवर ने मिमिक्री, इम्प्रोवाइजेशन, बॉडी लैंग्वेज और टाइमिंग को जिस तरह मिलाया वो अपनी खास पहचान बनी।

दोस्तों अब बात करते हैं जॉनी लीवर की, जिन्हें बहुत से सम्मानों से नवाजा गया। जॉनी लीवर को फिल्मफेयर अवार्ड में कॉमिक भूमिका लिए के लिए कई बार नामांकन मिला। उन्हें दो बार फिल्मफेयर अवार्ड मिला। पहली बार उन्हें दीवाना मस्ताना के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। इसके बाद दूल्हे राजा के लिए भी उन्हें बेस्ट कॉमेडियन का फिल्मफेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड, पोगो अमेजिंग किड्स अवार्ड और अन्य सम्मानों से भी उन्हें नवाजा गया था। बहुत सी बातें हैं जॉनी लीवर के बारे में बताने के लिए, लेकिन समय अब इजाज़त नहीं दे रही है। और अब देख लेते हैं कि हमारे साथ जो हैं मेल पर कौन कौन से श्रोता जुड़े हैं। ये हमें मेल किया है शांति नगर सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी ने। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप गिल, गुरनूर गिल, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। अगला मैसेज आया है पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन का। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, इन्होंने हमें मैसेज किया है छत्तीसगढ़ पलारी से। दोस्तों इसी के साथ समय हो रहा है कार्यक्रम का, तो हम अधिक मेल्स नहीं ले पाएंगे और चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

0: बहुत से श्रोता मेल के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खातिमा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफसारी कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा। अगला मेल आया है अनीता मुखी, सिमरन मुखी, सुदर्शन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। बहुत से मैसेजेस आए हैं लेकिन समय के अभाव के कारण हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसलिए हम क्षमा चाहेंगे श्रोताओं से। और सभी के मेल शामिल किए जाते हैं लेकिन समय के आगे किसी की नहीं चलती, तो इसी के साथ मीना चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: मुझको बीवी, मुझको बीवी, मम्मी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। हमारा आज का कार्यक्रम केंद्रित था जॉनी लीवर पर। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी
0: और मीना चौहान। हम दोनों का आप सभी को प्यार भरा
1: नमस्कार। तो दोस्तों, कहते हैं ना, मोहब्बत जब दिल में उतरती है तो उसका कोई शोर नहीं होता, बस धीरे धीरे चुपके से कोई आपकी धड़कनों में शामिल हो जाता है। फिर उसकी याद सुबह की पहली किरण में होती है, शाम की तन्हाई में होती है, और कभी कभी तो यूं लगता है जैसे वो पास नहीं है। वो पास नहीं है, फिर भी हर पल हमारे साथ है।
0: यही तो खूबसूरती है राखी मोहब्बत की।
1: बिल्कुल सही बात। और पता है तुम्हें, जहाँ इश्क का इजहार बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि एक नज़र, एक मुस्कान और एक गीत से ही हो जाता है। ये साल 1962 में आई गुरुदत्त साहब की यादगार फिल्म साहेब बीवी और गुलाम की बात है। और उस फिल्म में मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गीत, जिसे आशा भोसले की आवाज़ ने ऐसा जादू दिया कि आज भी सुनते ही दिल ठहर जाता है। ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये उस स्त्री के मन की आवाज़ है जो अपने पिया को अपने भीतर इस कदर महसूस कर रही है कि फिर उसके और अपने बीच कोई दूरी रह नहीं सकती है।
0: तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बहुत बड़ी चीजों में नहीं होती, बल्कि किसी अपने का साथ होने से मिलती है। एक ऐसा रिश्ता जहां साथ मिल जाए तो लगता है कि जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। ना कोई बड़ी ख्वाहिश, ना कोई शिकवा, बस इतना सा सपना कि जिसका हाथ थामा है उसका साथ जिंदगी भर बना रहे।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूँ राखी बैनर्जी और मेरे साथ है मीना चौहान। तो श्रोताओं, कभी कभी किसी की याद अचानक यूँ चली आती है कि हम चाहकर भी उसे रोक नहीं पाती। कोई चेहरा आंखों के सामने नहीं होता, कोई आवाज़ कानों में नहीं होती, फिर भी दिल बस एक ही सवाल करता है, कहाँ हो तुम। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी दूरी तो बन जाती है लेकिन दिल उनसे कभी दूर नहीं हो पाता। वक्त गुजरता रहता है, मौसम बदलते रहते, मगर किसी की एक याद आज भी उसी जगह ठहरी रहती है जहां हमने उसे आखिरी बार महसूस किया था। और फिर दिल खामोशी से पुकार उठता है, शायद वो सुन ले, शायद कहीं दूर बैठा हो और वो हमें भी याद कर रहा हो। फिल्म पतिता का ये बेहद खूबसूरत सा गीत हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में एक ऐसी पुकार है जिसमें प्यार भी है, इंतज़ार भी और जुदाई की हल्की सी टीस भी। तो आइए इस दोपहर में उस आवाज़ को सुनते हैं जो बरसों बाद दिल से पूछती है कि याद किया दिल ने कहाँ हो तुम।

दोस्तों, कभी-कभी मौसम सिर्फ बाहर नहीं बदलता, बल्कि मौसम हमारे दिल के भीतर भी उतर जाता है। हवा में घुली खुशबू, फूलों की महक और किसी अपने की याद, इन सब के लिए जाने से दिल कह उठता है कि अब तो बहार आ गई है। और जब दिल किसी खास शख्स के इंतजार में हो, तो हर आती हुई पुरवाई उसकी आहट लगती है, हर धुन उसकी आवाज और हर धड़कन उसकी याद बन जाती है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म राजकुमार का ये गीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं गोल्डन मैटिनी। श्रोताओं,
1: कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म जोर मचाए शोर से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

0: राखी बहुत से श्रोता मेल के जरिए हमसे जुड़े हैं, तो चलिए उनके नाम भी पढ़ लेते हैं। ये मेल आया है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा और शेख मूसा भाईजान का। अगला मैसेज आया है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है रिस्पेक्टेड मीना चौहान जी, राखी जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी मंडे, गुड आफ्टरनून, वी आर लिसनिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें सुन रहे हैं। और अगला मैसेज आया है,
1: ये है, लिखते हैं कि होस्ट राखी बैनर्जी जी, मीना चौहान जी नमस्कार, हम आप दोनों को मैटनी मेलोडी शो में बने हुए हैं, सो सुपर लवली सॉन्ग याद किया दिल ने, कहाँ हो तुम, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन जी का। धन्यवाद तुलसी मस्कीन जी। और ये है, लिखते आदरणीय होस्ट मीना चौहान जी नमस्कार, हम भी मैटनी मेलोडी शो सुन रहे हैं, पेशकश सुपर बेस्ट सॉन्ग मांग के साथ तुम्हारा। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसमें इससे जुड़े हुए हैं वीना मस्कीन, आशीष, चैतन्य मस्कीन, मेघा चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना।
0: जी अगला मेल आया है, इन्होंने भी वही मैसेज किया है, फिर से रिपीट इन्होंने मैसेज किया है, तो हम ये मैसेज नहीं लेंगे। फिर से रिपीट मैसेज, बहुत से रिपीट्स मैसेज आ रहे हैं, लेकिन चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिर मैसेजेस लेंगे।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ मैथिली मेलोडीज कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मुझे यानी राखी बैनर्जी को
1: और मुझे मीना चौहान को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सामईन, हम जिस मुल्क में पैदा हुए हैं वो मुल्क हमारे लिए कुदरत का अता करदा एक बेहतरीन तोहफा है। हमारा ये वतन हमारी पहचान और हमारी इज्जत है। इंसान जहाँ पैदा होता है परवरिश पाता है, जहाँ उसका बचपन गुजरता है उससे मोहब्बत होना फितरी बात है। हम भी अपने हिंदुस्तान को, अपने वतन को बे इंतहा दिलो जान से चाहते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं। हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क तरक्की की राहों पर गामजन रहे और दुनिया में हमारा सर फख्र से ऊंचा रहे। आइए सुनते हैं ये फीचर। हिंदी हैं हम।

कितने काफले कितनी सिमतों से आए और हमेशा के लिए यहीं रह गए। भांत भांत की बोलियां बोलने वाले, रंग अलग ढंग अलग, कितने धर्म कितने विश्वास, अलग अलग सूरतें अलग अलग लिबास, अनगिनत रस्में अनगिनत रिवायतें।

0: बाबाए कौम महात्मा गांधी ने कहा था,
1: आज के दौर का तकाजा एक मजहब नहीं है बल्कि मुख्तलिफ किस्म के मजाहिब के मानने वालों का एक दूसरे के साथ मोहब्बत और रवादारी से पेश आना है। तमाम मजाहिब की रूह एक है लेकिन ये मुख्तलिफ मजाहिर में जलवागर है।
0: और जदीद हिंदुस्तान के मीमार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था,
1: एक मुल्क का एहसास, एक कल्चर का एहसास हमें एक रिश्ते में बांधे हुए है। हिंदुस्तान मुख्तलिफ मजाहिब का मुल्क है, मजहब ने हमें तकसीम नहीं किया।

मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान और तुलसीदास, तुकाराम, सूरदास, मीरा और कबीर, मीर, गालिब, नज़ीर और प्रेमचंद, वारिस शाह और टैगोर।

0: एक मगरबी दानिश्वर ने मशरक के इस अजीम शान मुल्क की रूह को अपना खिराज इन लफ्जों में पेश किया था।
1: 3000 साल से नूर का एक दरख्त अपनी हजारहा शाखों और करोड़ों टहनियों के साथ इस गर्म सरजमीन में, जिसे देवताओं की जलती हुई कोख कहिए, उगा और आगे बढ़ा। ये पशमुर्दगी के आसार से बालातर रहकर हमेशा सरसब्ज होता रहा। इसकी डालियों में एक ही वक्त में हर तरह के फल आए।
0: इसकी गोद में हर किस्म के माबूद पले, बर्बरी देवताओं से लेकर नूरुन अला नूरिन तक, जो रूप, नाम और हदों से बेनियाज है, लेकिन उसकी असली नौयत में कोई फर्क नहीं आया। हमारे शायर ने एक दुआ की थी,
2: जहां विजदान बेखौफ है और सर ऊंचा है, जहां इल्म आजाद है, जहां दुनिया को तंग घरेलू दीवारों ने टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिया है, जहां अल्फाज सच्चाई की गहराइयों से निकलते हैं, जहां खस्तगी से बेनियाज कोशिश अपने बाजू कमाल की तरफ फैलाती है, जहां अक्ल की पाकीजा नदी बेजान रस्मों के खुश्क रेतीले खारजारों में राह से भटकती नहीं फिरती, जहां मेरे परवरदिगार तू हमवार वसत पजीर ख्याल और अमल की तरफ मेरी रहनुमाई करता है, ऐ मेरे रब, मेरे पालनहार, आज़ादी की उस बहिश्त में मेरे वतन को बेदार होने दे।

0: रंग और नस्ल, मजहब और अकीदे, रस्म और रिवायत की जंजीरों से आजादी जो हमारी पहचान है।
1: यह आजादी जो हमारे शानदार माजी, हमारे तरक्की पजीर हाल का निशान है।
0: इसी आजादी के साए में हम अपना सफर करते आए हैं। हमारी कौमियत के तसव्वुर की वजाहत करते हुए डॉक्टर ताराचंद ने कहा था,
1: कौमी शऊर सुबह के सूरज की रोशनी की तरह फैलता है। सबसे पहले ये आला जहन रखने वाले तरक्की पसंद इंसानों के दिलों को मुनव्वर करता है, उनके बाद ये वसीतर दायरे में फैलता है।
0: डॉक्टर ताराचंद ने यह भी कहा था,
1: कौम सिर्फ इंसानों का इज्तिमा नहीं, कौम जिंदगी के

0: सुंदर था।
1: मुवर्रिख कहता है,
0: मौसीकी में खुसरो, बेजुबावरा और तानसेन के कारनामों की रोशनी एक दूसरे से कम नहीं।
1: हमारा विरसा एलोरा और अजंता की गुफाएं भी हैं और ताजमहल की सूरत में संगे मरमर का खाप भी। मुवर्रिख कहता है,
0: दरवेशों, इबादत गुजारों और मुसलहों ने जमाने पर अपने नक्श अलग अलग सब्त किए हैं।
1: कबीर, नानक, चैतन्य, तुकाराम, सूर, तुलसी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और एक दूसरे के हमसफर भी।
0: उनकी तलाश बातिनी और अबदी मसरत और सुकून की तलाश थी, किसी एक मजहब या कबीले के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए।
1: मुवर्रिख कहता है,
0: यही बात मुसलमान दरवेशों हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज पर भी सादिक आती है।
1: सूफी सिलसिले, कुर्बत इलाही की जस्तजू, दौलत व ताकत से नफरत, गरीबों, दुखियारों और मुसीबत जदों से मोहब्बत की बिना पर कायम हुए।
0: हिंदू भक्तों की मानिंद चिश्तियों, सुहरावर्दियों, कादरियों, नक्शबंदियों के रास्ते अलग अलग थे, मगर सबकी मंजिल एक थी।
1: जून सन 1947 की एक तकरीर में आजाद ने कहा था,
0: हमें ये नहीं फरामोश करना चाहिए कि कौम एक है जिसकी तहजीबी जिंदगी एक है और एक रहेगी। हमें इसकी कोशिश करना चाहिए कि हमारी तहजीब, हमारा कल्चर तकसीम ना होने पाए। अगर पानी में एक लट्ठा गाड़ दिया जाए तो सतही तौर पर ऐसा होगा जैसे पानी तकसीम हो गया है, लेकिन पानी वही रहता है, और जिस लम्हे लकड़ी का लट्ठा हटा लिया जाता है तकसीम के निशानात भी गायब हो जाते हैं।

0: मुवर्रिख कहता है,
1: एक तवील तारीख, मुख्तलिफ नस्लों के अफराद, मुख्तलिफ मजाहिब और जबानों ने हिंदुस्तान की तामीर में हिस्सा लिया, लेकिन इस कसरत के बावजूद हिंदुस्तान में हमेशा एक बुनियादी वहदत रही और एक मुमताज इनफरादियत।
0: मुवर्रिख कहता है,
1: इस देश में कभी भी एक ही नस्ल या एक ही जबान के बोलने वाले नहीं रहे। इसकी मिसाल गंगा की है, जिसमें हर धारा मिल जाने के बाद गंगा ही कहलाती है।
0: मुवर्रिख कहता है,
1: हमारा मुल्क मशरिक और मगरिब का संगम है। यहाँ मगरिब की इंसान दोस्ती ने अपना मस्कन बनाया है। यहाँ मशरिक के सदियों पुराने इदराक का घर है। यहाँ अक्ल और इश्क में इम्तिजाज के चर्चे हैं।

0: नस्ली एतबार से हिंदुस्तान के बाशिंदे 6 बुनियादी और 9 ज़ैली तबकों से ताल्लुक रखते हैं।
1: लिसानी एतबार से ये 1000 से ज्यादा बोलियां बोलते हैं।
0: दुनिया के तमाम बड़े मजाहिब हिंदुस्तान में पाए जाते हैं।
1: फन तामीर, संग तराशी, मुसव्वरी, मुसीकी और रक्स जैसे फनून को हिंदुस्तान ने उन जमालियाती बुलंदियों तक पहुंचा दिया है जिसे कोई और तहजीब आज तक न छू सकी। हिंदुस्तान का माजी अजीम इनकलाबात की दास्तान है।
0: इस सरजमीन ने अजीम सल्तनतों का उरूज देखा और ऐसे समाजी इदारे बनाए जिनकी बुनियादें आज भी मुस्तहकम हैं।
1: इस देश की बका और तरक्की के लिए गुरुदेव ने एक दुआ की थी।
2: ऐ सख्तगीर रथबान, तुम इंसान की तारीख को उस शाहराह पर खींचते हो जो कौमों के उरूज और जवाल की वजह से नाहमवार हो चुकी है।
3: तमाम सोबतों और अंदेशों के दरमियान तुम्हारा शंख गूंजता है उन लोगों का दिल बढ़ाने के लिए जो मायूस और पशमुर्दा हैं।

तुम सारे लोगों को राह दिखाते हो, उनके जोखों और यात्रा के रास्तों में तुम के हिंदुस्तान की तकदीर के मालिक हो। जय हो, जय हो, जय हो तुम्हारी।

0: सामईन अभी आप डॉक्टर शमीम हनफी का तहरीर करदा ये फीचर सुन रहे थे। सदाकार थे वीना शर्मा, एसएम शफीक और मुजीब सिद्दीकी। पेशकश थी प्रेम वोरा की, मुआविन थे सरफराज अहमद। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। अब अपनी मेज़बान फरहीन इकबाल को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
3: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
2: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
4: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
2: लोकसभा से अधिग्रहण सुधार विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिग्रहण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता और नियुक्ति में एकरूपता सुनिश्चित करने तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। विधेयक पारित होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल राज्य का नाम बदलने के लिए केरल नाम संशोधन विधेयक 2026

सदन के समक्ष रखा। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया।

परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आज से 4 दिन की मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत द्वारा मॉरिशस के साथ द्विपक्षीय समुद्री सहयोग और रक्षा संबंधों को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। यात्रा के दौरान वे मॉरिशस सरकार के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे और समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, क्षमता निर्माण और सैन्य सहयोग जैसे पारस्परिक हित के मामलों पर चर्चा करेंगे। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूह पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: to function so that Home Minister Amit Shah can make a statement about the students' protest and address all concerns raised by the opposition members. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country, inspiring citizens from all walks of life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. Union Home Minister Amit Shah has appealed to the citizens to participate in and celebrate the campaign through Tiranga Yatras, Tiranga rallies and mass singing of Vande Mataram, and to hoist the Tiranga and upload a selfie on harghartiranga.com. The students' agitation in Jharkhand over alleged irregularities in recruitment examinations entered its 17th day today. Police today used water cannons as students protesting alleged irregularities in recruitment examinations marched towards the State Assembly in Ranchi. The protesters are demanding cancellation of the JSSC CGL examination and a CBI probe into the alleged irregularities. Chinese authorities have evacuated more than 1 million people from eastern China, including Shanghai, as Typhoon Dolphin made landfall. The typhoon brought heavy rain and disrupted transport across the region. Nearly 1,000 flights were cancelled in Shanghai today. Benchmark domestic equity indices ended nearly flat today. The Sensex rose 43 points to close at 78,542. The Nifty added 13 points to settle at 24,584. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचनाएं। जनेश्वर 28 मई 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 40 वर्ष, कद 5 फुट 6 इंच, शरीर सामान्य है, रंग गोरा है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष सरूरपुर मेरठ से जानकारी प्राप्त करें। जितेंद्र, इनकी उम्र है 32 वर्ष, शरीर सामान्य है, कद 107.64 सेंटीमीटर, ग्राम उलाड़ी अलवर राजस्थान से ये लापता है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना नौचंदी मेरठ से संपर्क करें। नेहा कश्यप, पुत्री संजय कश्यप 5 मई 2026 से लापता है। इनकी उम्र है 24 वर्ष, कद 3 फुट 10 इंच, शरीर सामान्य है, रंग सांवला है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना नौचंदी मेरठ से संपर्क करें। एक अज्ञात व्यक्ति जिन्हें सैमसंग पार्क के पास देखा गया, इनकी उम्र करीब 55 वर्ष, इकहरा बदन, कद 5 फुट 2 इंच। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना फेस 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। एक अज्ञात व्यक्ति जिनका नाम शिवांग उपाध्याय थाना कासना में है, इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना कासना कमिश्नर गेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें। कविता पत्नी बिट्टू निवासी ग्राम डालमपुर थाना रोहटा जिला मेरठ, इनकी उम्र है 48 वर्ष, बाल काले हैं, चेहरा नाक कान औसत है। इनके बारे में सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष थाना रोहटा जनपद मेरठ से संपर्क करें। जुगल किशोर नई बस्ती ललापुरा से लापता है। इनकी उम्र है 20 वर्ष, बाल काले हैं, शरीर सामान्य। इन्होंने सफ़ेद पैंट और लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना ललनपुरा से संपर्क करें, जो कि जनपद

0: गौतम बुद्ध नगर में है। विवेक पुत्र बिट्टू निवासी ग्राम चिंदौड़ी थाना रोहटा जिला मेरठ से लापता है। इनकी उम्र है 52 वर्ष। बाल काले हैं। चेहरा आंख कान नाक औसत है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर थाना रोहटा जनपद मेरठ से संपर्क करें। ये थी खोए पाए व्यक्तियों संबंधी सूचनाएं।
1: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहें हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।
1: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
2: कितनी खूबसूरत बात है ना, जिंदगी को सिर्फ जीना नहीं महसूस करना भी जरूरी है। कभी बारिश में भीगना, कभी बेवजह मुस्कुराना, और कभी बस दिल की बात कह देना।
1: और शायद इसी एहसास का नाम है युववाणी, जहां बातें सिर्फ होती रही दिल तक पहुंचती हैं।
2: नमस्कार, मैं हूं निधि।
1: और मैं हूं श्रेया। और आज 10 अगस्त हम आपके साथ हैं एक ऐसी खास शुरुआत के साथ, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है इंडिपेंडेंस वीक, वो हफ्ता जो हमें सिर्फ अपनी आज़ादी का जश्न मनाने नहीं बल्कि उसके मायने समझने का भी मौका देता है।
2: अगले कुछ मिनटों में होंगी कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ ज़रूरी सवाल, थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारी पॉजिटिव बातें, क्योंकि ये है युववाणी और ये है आपकी आवाज़, आपकी बातें।
1: चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पहले गीत के साथ। गीत का नाम तू जरूरी है, फिल्म जिद से।

0: श्रेया, 15 अगस्त आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और आज की तारीख हमें सीधे ले जाती है उस दौर में जब आजादी सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि पूरे देश का मिशन बन चुकी थी।
1: बिल्कुल, और आज ही हमारी आज की बात भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट है। निधि, एक बात सोचो, अगर आज से 84 साल पहले देश के लाखों लोग एक ही आवाज में कह रहे हो कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा, तो कैसा माहौल रहा होगा?
0: और उस आवाज को दिशा मिली 8 अगस्त 1942 को, जब मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने इसी मौके पर करो या मरो का आवाहन किया।
1: और फिर अगले ही दिन 9 अगस्त गांधी जी और कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तो मूवमेंट ने एक नया मोड़ लिया।
0: बड़े नेता जेल में थे लेकिन देश की आवाज रुकी नहीं। स्टूडेंट्स, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया।
1: और यही बात इसे इतना खास बनाती है कि लीडरशिप ऊपर से हट गई, लेकिन लोगों की भागीदारी नीचे से और मजबूत हो गई।
0: और हमारे पास उस दौर की कुछ इनक्रेडिबल यंग स्टोरीज भी हैं, जैसे उषा मेहता। उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए आंदोलन की आवाज लोगों तक पहुंचाई।
1: मतलब आज के समय में हम पॉडकास्ट और सोशल मीडिया की बात करते हैं, और उस समय कम्युनिकेशन का एक बड़ा माध्यम था एक छिपा हुआ रेडियो।
0: और आज 10 अगस्त 2026 को हमारे सामने सवाल है कि आजाद भारत को बेहतर कैसे बनाएं।
1: बिल्कुल, और यही सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुम्हारे हिसाब से आज की जनरेशन देश के लिए सबसे आसान क्या कर सकती है?
0: मुझे लगता है बड़ी बड़ी बातें करने से पहले छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना और सबसे जरूरी एक दूसरे का सम्मान करना।
1: हाँ जी, तो इस इंडिपेंडेंस वीक सिर्फ काउंटडाउन 15 अगस्त का मत कीजिए, अपने अच्छे कामों का भी काउंटडाउन शुरू कीजिए, क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
0: इसी बात पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। सुनिए ये खूबसूरत गाना।

0: आजादी केवल हमारा अधिकार नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जो बताती हैं कि आज़ादी केवल शब्द नहीं, बल्कि साहस, त्याग और रिस्पॉन्सिबिलिटी का दूसरा नाम है।
1: सही कहा श्रेया। ऐसी ही एक अद्भुत कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज की,

0: दो 16 साल की जासूस, सरस्वती राजामणि और दुर्गा की। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे स्कूल की किताबों में इतिहास पढ़ते हैं, उस उम्र में ये दोनों इतिहास रच रही थी। अंग्रेजों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने लंबे बाल कटवा दिए, लड़का बनकर जूते पॉलिश करना, कपड़े धोना, इस तरीके के काम करती और बर्मा में ब्रिटिश आर्मी शेल्टर में घुसकर महत्वपूर्ण सैन्य जानकारियां आजाद हिंद फौज तक पहुंचाती थी। एक दिन मिशन के दौरान दुर्गा अंग्रेज सैनिकों के हाथों पकड़ी गई। बिना हार माने उन्हें एक्सट्रीम टॉर्चर और मृत्यु दंड से बचाने के लिए सरस्वती ने एक क्लासिकल डांसर बनकर अंग्रेज पहरेदारों को अफीम मिलाकर बेहोश किया और दुर्गा को कैद से बाहर निकाल लिया।
1: और दोस्तों, मैंने तो सुना है कि भागते समय अंग्रेज सैनिकों ने उन पर गोलियां चलाई। एक गोली सरस्वती के पैर में लगी, पर घायल होने के बावजूद वो हार नहीं माने और 3 दिनों तक एक पेड़ पर छिपे रहे।
0: दर्द था, भूख थी और प्यास भी, लेकिन देश के प्रति उनका कर्तव्य इन सब पर भारी था।
1: जब वो सुरक्षित लौटकर नेताजी के सामने पहुंची, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अपनी सेना का गौरव कहा।
0: हाँ, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता सिर्फ पाने की चीज नहीं, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारे अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें।
1: तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

0: अच्छा श्रेया, एक बात बताओ, अभी लास्ट टाइम तुमने कितनी देर पहले पानी पिया था?
1: अरे यार, ये सवाल ऑन एयर पूछना जरूरी था क्या? सच बताऊं, याद ही नहीं है।
0: अच्छा तो ये बताओ, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि रील स्क्रॉल करते करते या फिर कोई सीरीज देखते देखते तुम्हें नींद आ गई हो?
1: ऐसा तो सबके साथ ही हुआ होगा कभी ना कभी। अब ये मत कहना कि ये भी हमारे नर्वस सिस्टम के लिए डेंजरस है।
0: डेंजरस का तो पता नहीं, पर हेल्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन आराम चाहता है, पर हम उसे फोर्स करके रेस्ट के मोड में जाने से रोकते रहते हैं।
1: अरे निधि, इतना तो लोग सोचते भी नहीं है आजकल।
0: यही तो है हमारे वीकली सेगमेंट फिटनेस एंड वेलनेस की खास बात, जिसमें हम बात करते हैं ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स की जो हमारी हेल्थ को बेहतर बना सकती है।
1: ऑल्सो निधि, हैव यू नोटिस्ड कि जैसे ही हेल्थ से रिलेटेड किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसके कितने ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं?
0: टोटली अग्री विथ यू श्रेया। जैसे ही प्रोटीन पाउडर का कंजम्पशन बढ़ा, वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन और अब तो यीस्ट प्रोटीन के इतने ऑप्शंस आ गए हैं कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं।
1: एकदम इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लागू हो गया यहाँ पे तो। क्योंकि फिटनेस का मतलब सिर्फ वर्कआउट या जिम नहीं होता, अपने बॉडी की नीड्स को समझना भी उतना ही ज़रूरी है दोस्तों। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिस पर खुलकर बात होनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल वेलनेस।
0: बिल्कुल, इट्स जस्ट अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन आज भी समाज के कई हिस्सों में इसको अछूत की तरह समझा जाता है। इट्स स्टिल अ टैबू। कई लड़कियां इस वजह से या तो खुलकर बात नहीं कर पाती या फिर अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देती हैं।
1: ट्रू, इस दौरान सबसे बेसिक चीज़ है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। सैनिटरी पैड, टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप, जो भी इस्तेमाल करें उसे समय पर बदलना बहुत ज़रूरी है। साथ ही पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है दोस्तों।
0: एंड डोंट फॉरगेट टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। खूब पानी पीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए और जितना भी हो सके वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या योगा भी कर सकती हैं। आप अच्छा फील करेंगी।
1: और एक और बात जो मुझे बहुत ज़रूरी लगती है, पीरियड्स के दौरान पेन को हमेशा नॉर्मल कह के इग्नोर मत कीजिए। अगर अनयूजुअल पेन हो, ब्लीडिंग हैवी हो या डेली रूटीन पर इम्पैक्ट होने लगे, देन इट्स ऑलवेज ओके टू कंसल्ट अ डॉक्टर।
0: एब्सोल्यूटली, हेल्प लेना कोई वीकनेस नहीं, स्मार्टनेस है।
1: और अब एक छोटी सी बात, स्लीप इज बेस्ट थेरेपी। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि यंग अडल्ट्स को लगभग 7 से 9 घंटों की नींद लेनी चाहिए।
0: मतलब लेट नाइट स्क्रोलिंग थोड़ा कम और सेल्फ केयर थोड़ा ज्यादा।
1: एग्जैक्टली, क्योंकि सेल्फ केयर कोई लग्जरी नहीं है, इट्स अ नेसेसिटी गाइस।
0: तो इस हफ्ते का हमारा वेलनेस चैलेंज रहेगा, ड्रिंक एनफ वाटर, टेक केयर ऑफ योर हाइजीन, लिसन टू योर बॉडी एंड हैव अ साउंड स्लीप एंड डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू नीड इट।
1: क्योंकि हेल्दी बॉडी ही नहीं, हेल्दी आदतें भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और यही हम सबको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है। मेंस्ट्रुअल वेलनेस सिर्फ महिलाओं का नहीं, अवेयरनेस का टॉपिक है। क्योंकि अगर हम अपने घर, अपनी क्लास, अपने वर्क प्लेस या अपने फ्रेंड सर्कल की महिलाओं को समझेंगे, तभी तो हम एक केयरिंग सोसाइटी बना पाएंगे।
0: अगर आप फीमेल लिसनर हैं तो अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए, और अगर आप लड़के हमें सुन पा रहे हैं तो आप भी अपने हेल्थ का ध्यान रखें। बस इतना याद रखिए कि एम्पैथी इज द बेस्ट सपोर्ट। कभी किसी का मजाक मत उड़ाइए, उनके डिस्कम्फर्ट को समझिए और जरूरत पड़े तो सिंपली आस्क, कैन आई हेल्प। कई बार यही छोटा सा सवाल बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाता है।
1: एब्सोल्युटली, पीरियड्स शर्म की नहीं, समझ की बात है। जितने ओपनली और रिस्पेक्टफुली हम इस पर बात करेंगे, उतने ही मिथ्स कम होंगे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी।
0: अब कुर्सी की पेटी भले मत बांधिए, लेकिन अपने स्पाइन पर जरा रहम कीजिए, सीधे बैठ जाइए और एंजॉय कीजिए हमारा अगला गाना।

0: वेलकम बैक दोस्तों, अब बारी है हमारे सबसे एनर्जेटिक सेगमेंट क्विक बज की, जहां हेडलाइंस होंगी क्विक लेकिन इंस्पिरेशन होगी फुल ऑन।
1: बिल्कुल, और क्योंकि इंडिपेंडेंस वीक की शुरुआत हो चुकी है तो आज की सारी अपडेट्स भी हैं न्यू इंडिया यंग इंडिया वाली। रेडी?
0: ऑलवेज। तो पहली अपडेट स्पेस से, 6 और 7 अगस्त को इसरो के भारतीय अंतरिक्ष हैकेथॉन 2026 का ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ, जहां देश भर के स्टूडेंट्स ने स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई, क्लाइमेट और सैटेलाइट डेटा से जुड़े रियल लाइफ चैलेंजेस पर अपने इनोवेटिव आइडियाज पेश किए। सोचिए, क्लासरूम से सीधे स्पेस मिशंस तक।
1: दोस्तों, अब दूसरी अपडेट, टेक्नोलॉजी

0: और स्टार्टअप्स की दुनिया से। हाल ही में ये बात फिर सामने आई कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम्स में शामिल है। एआई, सेमीकंडक्टर्स, डीप टेक और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में इंडियन यूथ लगातार नए इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं।
1: और यही तो है न्यू इंडिया की पहचान। पहले लोग कहते थे थिंक बिग, अब इंडियन यूथ कहते हैं थिंक बिग बिल्ड बेटर।
0: बिल्कुल निधि। और अब तीसरी अपडेट रोड सेफ्टी से जुड़ी। आईआईटी मद्रास में एआई पावर्ड रोड सेफ्टी हैकथॉन आयोजित किया गया, जहां स्टूडेंट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सड़क सुरक्षा के नए सॉल्यूशंस तैयार किए। यानी टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्ट नहीं, सेफ भी बन रही है।
1: और आज की तीनों अपडेट्स हमें एक ही बात याद दिलाती है
0: कि आज का युवा सिर्फ सपने नहीं देख रहा, बल्कि उन्हें रियलिटी में भी बदल रहा है।
1: और इसी बात पर याद आती है रामधारी सिंह दिनकर जी की ये प्रेरणादायक पंक्तियां। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।
0: जी, यानी मेहनत, इनोवेशन और टीम वर्क, यही है आज के युवा भारत की असली ताकत। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे गाने की तरफ, जिसका नाम है कभी कभी आदिति, फिल्म जाने तू या जाने ना।

0: और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट टुडे इन हिस्ट्री की, जहां हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स नहीं होती, बल्कि उन लोगों और घटनाओं की कहानियां होती हैं जिन्होंने अपने अपने दौर को बदल दिया।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज 10 अगस्त को हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय नेता की जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक का सफर तय किया।
0: जी, हम बात कर रहे हैं वराहगिरी वेंकट गिरी यानी वीवी गिरी की, जो बाद में भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। लेकिन राष्ट्रपति बनने से बहुत पहले ही वीवी गिरी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो चुके थे। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तो उन्होंने भी इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और करीब 3 साल तक जेल में बिताए।
1: शायद इसी वजह से उनकी राजनीति में लेबर राइट्स और वर्कर्स की आवाज़ का मुद्दा हमेशा महत्वपूर्ण रहा। वो एक पायनियरिंग लेबर लीडर भी थे।
0: और आज़ादी के बाद वो उत्तर प्रदेश, केरला और मैसूर यानी आज के कर्नाटका के गवर्नर रहे। और फिर 1967 में वो भारत के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। इसके बाद 1969 में उन्होंने भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला।
1: और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं दोस्तों, वीवी गिरी भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलेक्टेड हुए थे।
0: और उनके योगदान को देखते हुए 1975 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
1: वाह, फ्रीडम फाइटर से लेबर लीडर, फिर गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और आखिर में प्रेसिडेंट, काफी रिमार्केबल जर्नी है।
0: बिल्कुल, और यही तो हिस्ट्री की खूबसूरती है। किसी व्यक्ति की कहानी सिर्फ उसके पद से नहीं बल्कि उन संघर्षों से बनती है जो उसने उस पोजीशन तक पहुंचने से पहले किए।
1: ठीक है, तो दोस्तों अब एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ आगे बढ़ते हैं बॉर्डर पिक्चर से।

0: वैसे निधि, आज 10 अगस्त की एक और खासियत है, आज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी मनाया जाता है।
1: यानी ऐसा फ्यूल जो सिर्फ पेट्रोल डीजल पर हमारी डिपेंडेंसी कम करने की दिशा में मदद कर सकता है और रिन्यूएबल सोर्सेस से तैयार किया जाता है।
0: बिल्कुल दोस्तों, बायोफ्यूल्स आमतौर पर प्लांट्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि भारत में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग और दूसरे बायोफ्यूल इनिशिएटिव्स के जरिए क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है।
1: और मुझे लगता है कि इसका कनेक्शन आज के हमारे पूरे प्रोग्राम से भी है। इंडिपेंडेंस सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम तक सीमित नहीं है, एक आत्मनिर्भर देश वो भी है जो अपनी एनर्जी नीड्स के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस तलाशे।
0: यानी आज की तारीख हमें फ्रीडम स्ट्रगल की याद भी दिलाती है और फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस करना भी सिखाती है।
1: तो आज के टुडे इन हिस्ट्री से बस इतना याद रखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं है, ये उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपने समय को प्रभावित किया।
0: और अब हिस्ट्री से निकलकर चलते हैं थोड़ा म्यूजिक की तरफ।
1: क्योंकि अब वक्त है श्रेया के फेवरेट गाने का।
0: ओ यस, इसका तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। आइए सुनते हैं।

0: तो साथियों, आप सुन रहे थे आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, और मैं श्रेया
1: और मैं निधि
0: आपसे विदा लेते हैं।
1: तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे अवेयर।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: युववाणी कार्यक्रम अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने बैंक कार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंक कार बही से संबंधित साक्ष्यों के लिए एक कानून बनाने और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बहिस्साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में चलाए जा रहे सुधारों के अंतर्गत लाया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि नागरिकों को तथ्यों को जानने का अधिकार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष से सदन में अनुशासन बनाए रखने और कार्यवाही में बाधा न डालने का आग्रह किया।
2: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करें।

0: और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर शाम के 5:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी।

लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। तो देखिए यमुना बहन, हमारे जो लोकगीत हैं हम अपने भाइयों को लोक रंजनी में लोकगीत भजन ये सब कुछ सुनवाते हैं, और जो हमारे पर्व होते हैं उनके अनुसार भी हम अपने भाइयों को सारे गाने सुनवाते हैं। तो जैसे इस वक्त सावन का महीना है और कावर चल रही है, दोनों ही चीज़ें हैं, तो हमारे जो लोकगीत हैं वो रंग बिरंगे हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं सविता शर्मा से ये प्यारा सा लोकगीत।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे सविता शर्मा की आवाज में प्यारा सा लोकगीत। और आगे बढ़ते हैं, देखिए धार्मिक महोत्सव चल रहा है कावड़ का।
1: बिल्कुल। और कांवड़ का जो मौसम चल रहा है इसमें देखे तो सभी भक्त जल लेकर के और शिव जी की आराधना कर रहे हैं, वहां पर डालने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भक्ति और तप की बात करें तो यह यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम, कठिन तप और अनुशासन का अगर देखा जाए तो प्रतीक है।
0: जी
1: और सच्चे
0: बिल्कुल
1: मन से कांवड़ लाने वाले को सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
0: बिल्कुल। और मनोकामना पूरी तो होती है, कहते हैं ना जब कावड़ की शुरुआत कब से हुई, यमुना बहन कहते हैं पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विष पिया था तब भगवान शिव के शरीर में जलन पैदा हो गई थी। तो उसको शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उनके ऊपर गंगा जल अर्पित किया था।
1: बिल्कुल,
0: तो तब से ही कावड़ की शुरुआत हुई। और
1: दूसरी
0: कुछ
1: जो बात
0: और
1: है
0: भी कथा है जैसे परशुराम की, कि परशुराम ने सबसे पहले पूरा महादेव पे गंगा जल चढ़ाया था, तो वहां से भी शिव की कावड़ की शुरुआत
1: तो
0: हुई।
1: ऐसे में भक्ति में होने का ये समय अवसर है। और खास करके कल जो है शिवरात्रि भी है,
0: बिल्कुल
1: तो शिव की महिमा की तरफ बढ़ते हैं और हम भी उनका ध्यान करते हैं इस गीत के
0: बिल्कुल
1: माध्यम से। और कलाकार हैं ये भजन लेकर के कृष्ण कुमार।

0: और हम तिरंगा अभियान की बात करें तो हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है वंदना, और जो कि
1: जी
0: 9 से 17 अगस्त तक चल रहा है। हर घर में इस भाव के साथ तिरंगा फहराया जाए कि हमारा भारत देश बहुत महान है और हमारा भारत देश सभी को साथ लेकर के चलता है, अनेकता में एकता का प्रतीक है।
1: बिल्कुल। और इस वर्ष की जो थीम है वो वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत, यानी कि 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है, जिसमें तिरंगे के साथ साथ वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी किया जाएगा।
0: और इसके लिए यात्राएं निकाली जाएंगी, कोई साइकिल पर सवार होकर अपनी रैली से चलेगा, तो कोई संगीत कार्यक्रम करेगा, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगा। तो इस जरिए से हर घर तिरंगा अभियान को प्रोत्साहित किया जाएगा।
1: जी हाँ,
0: अपने भाव को प्रकट किया
1: लोगों
0: जाएगा,
1: लोगों को जागरूक किया जाएगा देशभक्ति के लिए।
0: बिल्कुल। तो इसी भक्ति भाव को प्रस्तुत कर रही देशभक्ति गीत के साथ रेणु वर्मन, चलिए सुनते हैं।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे रेरू मरबन की आवाज में ये लोकगीत, और आगे बढ़ते हैं अपने भाइयों को एक और सावन का गीत सुनवाते हैं, पुष्प
1: बिल्कुल
0: गोसाई
1: सावन
0: से।
1: का, बिल्कुल सावन का मौसम चल रहा है वंदना, और इस समय यही गीत मन को बहुत भाता है।
0: जी।

0: पुष्पा गोसाई के द्वारा गाए हुए इसी सावन गीत के साथ आज का हमारा लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल।
0: और अगला कार्यक्रम जो हमारा होगा ग्राम संसार और कृषि जगत 6:30 बजे से लेकर के 7:35 तक आप सुन सकते हैं
1: जी।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी अभी आपने सुना, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज मेरे साथ रहेंगे इस कार्यक्रम में मेरी सहयोगी
3: विजेता चतुर्वेदी।
2: मैं और विजेता आज आपको लेकर के चलेंगे खेल जगत के उन तमाम खेल खबरों की ओर जो आप सुनने के इच्छुक होते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे हमारी बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि बहुत सालों बाद होने वाली है, उसके ऊपर विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। उसके बाद
3: हम बात करेंगे अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि आज पांचवा दिन खत्म हो गया, उसका रिजल्ट क्या रहा है, क्या फाइनल हमारे पास अंक आए और कहां पर हम खड़े हैं, इस बारे में भी बात होगी।
2: इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे टेबल टेनिस यूरो स्मैश के बारे में जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैच जो हैं वो खेले जा रहे हैं,
3: और पेरू पैरा बैडमिंटन का भी लेंगे जायजा। साथ ही सेपक टेक्रो वर्ल्ड चैंपियनशिप पर भी होगी बात।
2: फुटबॉल के मैदान में भी आपको लेकर चलेंगे और साथ साथ क्रिकेट की खबरों से भी करवाएंगे रूबरू। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की जो कि 17 से लेकर 23 अगस्त तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाली है। और क्यों खास है ये चैंपियनशिप, आइए सुन लेते हैं। BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 17 से 23 अगस्त 2026 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाला है जिसमें अब केवल 7 दिन शेष बचे हैं। भारत 17 साल के लंबे अंतराल के बाद बैडमिंटन के इस सबसे बड़े प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। भारतीय दल की अगुवाई पीवी सिंधु करेंगी। इस चैंपियनशिप में 50 से अधिक देशों के 400 से ज्यादा शीर्ष शटलर पुरुष एकल पुरुष युगल महिला युगल और मिश्रित युगल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। पीवी सिंधु ने साल 1919 में वर्ल्ड बैडमिंटन खिताब हासिल किया था। 2017 और 2018 में सिल्वर मेडल जीते थे। उन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के क्वालिफिकेशन नियमों के तहत मेजबान देश की प्रतिनिधि के तौर पर विमेन सिंगल ड्रॉ में अपनी जगह बनाई है। ताजा वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग के आधार पर क्वालिफिकेशन लिस्ट में पुरुष और महिला एकल में 64-64 खिलाड़ी और हर युगल स्पर्धा में 48 जोड़ियां हिस्सा ले रही हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में हर कैटेगरी में भारत के दो दो खिलाड़ी सीधे एंट्री कर रहे हैं। मेन सिंगल में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी ने क्वालिफाई किया है, जबकि विमेन सिंगल में सिंधु के साथ उभरती हुई खिलाड़ी उन्नति हुड्डा भी शामिल हैं। भारत की मजबूत रैंकिंग वाली एंट्री मेंस डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की है, जिन्होंने कुल मिलाकर चौथा स्थान हासिल करके क्वालिफाई किया है। पुरुष युगल में हरिहरन अमस करुणन और MR अर्जुन भारत की दूसरी युगल जोड़ी है, जिन्होंने अपनी जगह पक्की की है। क्वालिफाई करने वाली जोड़ियों में तीसवें स्थान पर मौजूद त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद, कवि प्रिया सेल्वम और सिमरन सिंधी के साथ मिलकर विमेन्स डबल्स में भारत की चुनौती संभालेंगी। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने 21वीं पोजीशन पर क्वालिफाई किया, जबकि रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी ने भारत के लिए दूसरी जगह पक्की की है। कई भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी रिजर्व लिस्ट में भी शामिल है, जिनमें पुरुष एकल में वर्ल्ड चैंपियन पदक विजेता किदांबी श्रीकांत और

0: एक्ट्रेस प्रणॉय हैं। वहीं महिला एकल में तन्वी शर्मा, अनमोल खरब, मालविका बंसोड और तस्नीम मीर के नाम है। चीन के मेंस सिंगल चैंपियन शी यू की रिपब्लिक ऑफ कोरिया के मेंस डबल विजेता किम वॉन हो और सीओ सेउंग जे और चीन की विमेंस डबल चैंपियन लियू शेंग शू और टैन निंग सभी अपने अपने इवेंट में टॉप रैंक वाले खिलाड़ियों के तौर पर क्वालिफाई कर चुके हैं। मौजूदा महिला एकल चैंपियन जापान की अकाने यामागुची तीसरे स्थान पर रही, जबकि मलेशिया के मौजूदा मिक्स डबल चैंपियन चेन तांगजी और तो ईवेई चौथे स्थान पर रहे। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को मिले ड्रॉ की। पुरुष एकल में शी यू की चीन नंबर एक सीड, गत विश्व चैंपियन अपने अभियान की शुरुआत भारत के युवा शटलर आयुष शेट्टी के खिलाफ करेंगे। भारत के लक्ष्य सेन को आसान ड्रॉ मिला है, जहां पहले दौर में उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के कालिंस फिलिमोन से होगा। भारत के 5 बार के विश्व चैंपियन पदक विजेता सिंधु को सेमीफाइनल से पहले शीर्ष वरीय ऑन से यंग और अकाने यामागुची से मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। उनका पहला मैच आयरलैंड की सोफिया नोबल से होगा। वहीं उन्नति हुड्डा का मुकाबला म्यांमार की ठेठ हतार थुजार से होगा। बात करते हैं पुरुष युगल की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी की 5वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी पहले दौर में बाई मिलने से सीधे दूसरे दौर में प्रवेश कर गई है। तो वहीं हरिहरन अमर करुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी पहले राउंड में आयरलैंड की जोड़ी से भिड़ेंगे। बात करते हैं महिला युगल की। ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज लूसिया रोड्रिगेज से मुकाबला करेंगी। वहीं कवि प्रिया सेल्वम सिमरन सिंधी पहले दौर में स्पेन की निकोल कारुला कार्मेन मारिया की जोड़ी से भिड़ेंगे। मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो 15वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी पहले दौर में बाई के साथ सीधे दूसरे दौर में प्रवेश कर गई है। तो वहीं रोहन कपूर ऋत्विका शिवानी पहले दौर में कनाडा की जोनाथन बिंग और क्रिस्टल लाई की जोड़ी से मुकाबला करेंगे। भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की संभावनाओं पर बात करते हुए भारतीय कोच पुलेला गोपीचंद कहते हैं,
1: I think we'll all be pleasantly surprised by the way things can transform in our country if we want it. So I'm sure that we'll host a very good World Championships and the venue is fully ready for overall. Happy with the way the draw has progressed or the draw proceedings and the draw has come out. Yes, we have a couple of tough initial rounds, especially Ayush Shetty against Shiuchi is a tough one. But I think... I do see it's better to play Shiuchi in the first round than later in the tournament. So I think if he clears that, then it opens up. And I do think that we have a chance in both singles and doubles for a podium finish. Sindhu has done well in Japan. So it's very hopeful that she can continue her performance here as well. And also Unnati has a favorable draw, so looking for some good performances there. Satwik and Chirag in the men's doubles have done well to win Singapore, and with Satwik coming back to form, I think back from his injury, I do believe we'll have some good performances from Satwik as well, Satwik and Chirag as well. Overall, very optimistic and very positive about the World Championships here in Delhi.
0: तो दोस्तों 17 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत एक बार फिर BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बिल्कुल तैयार है। आप सभी 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दुनिया के दिग्गज शटलरों की टक्कर के गवाह बन सकते हैं। देखना होगा कि घरेलू सरजमी पर भारतीय सितारे विश्व चैंपियन बन पाएंगे या नहीं।

0: मुझे लगता है कि आप सब लोग भी शोर मचाने के लिए उतावले हो रहे होंगे जब शटल हवा में उड़ेगी और भारतीय खिलाड़ी अपना जलवा दिखाने के लिए मैदान में होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए अपने भारतीय शटलर्स को और देखिए कि कितने चिराग यहाँ पर जलते हैं और कितने यहाँ पर होते हैं उज्ज्वल। चलिए चलते हैं अगली खबर के लिए विजेता के पास।
1: एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026, भारत के युवा एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन। दुनिया के सबसे बड़े एथलेटिक्स मैचों में से एक पर भारत के युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का दम दिखा दिया। अमेरिका के यूजीन में 5 से 9 अगस्त तक आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में दुनिया भर के युवा एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड के अलग अलग इवेंट्स में हिस्सा लिया। भारत की ओर से भी 36 युवा एथलीट्स मैदान में उतरे और प्रतियोगिता के आखिरी दिन तक भारतीय खिलाड़ियों ने 3 पदक अपने नाम कर लिए। भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रही पुरुषों के जेवलिन थ्रो में आशीष यादव का सिल्वर मेडल। आशीष ने 74.09 मीटर का शानदार थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने भारतीय जेवलिन की उस परंपरा को आगे बढ़ाया जिसे पिछले एक दशक में नीरज चोपड़ा ने नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। आशीष का सिल्वर इसलिए भी खास है क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो भारत के लिए पहले भी पदक देने वाला इवेंट रहा है, लेकिन इस बार एक युवा खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक संकेत दिया है कि भारत के पास भविष्य के लिए जेवलिन में नई प्रतिभाएं तैयार हो रही हैं। और इसके बाद हाई जंप में आया एक और बड़ा धमाका। बसंत कुमार मेघवाल ने पुरुषों की हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। बसंत ने 2.21 मीटर की ऊंचाई पार की और दूसरा स्थान हासिल किया। खास बात यह है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का पुरुषों की हाई जंप में ये पहला पदक है। यानी जिस इवेंट में भारत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक का इंतजार कर रहा था, वहां एक युवा भारतीय एथलीट ने सीधे सिल्वर पर कब्जा कर लिया। बसंत की कामयाबी सिर्फ एक पदक नहीं, ये इस बात का संकेत है कि भारतीय एथलेटिक्स में अब सिर्फ दौड़ जेवलिन ही नहीं बल्कि हाई जंप जैसे फील्ड इवेंट में भी नई प्रतिभाएं तेजी से सामने आ रही हैं। लेकिन भारत का पदक अभियान यही नहीं रुका। पुरुषों की लॉन्ग जंप में शाहनवाज खान ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। शाहनवाज ने 7.84 मीटर की छलांग लगाई और तीसरे स्थान पर रहे। इस पदक के साथ उन्होंने भी एक नया इतिहास बनाया क्योंकि ये वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में पुरुषों की लॉन्ग जंप में भारत का पहला पदक है। इससे पहले इस प्रतियोगिता में भारत का लॉन्ग जंप पदक महिलाओं की कैटेगरी में आया था जब शाइली सिंह ने 2021 में सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन अब शाहनवाज खान ने पुरुषों की लॉन्ग जंप में भी भारत का पदक खाता खोल दिया है। यानी 3 पदक और तीनों के पीछे भारतीय एथलेटिक्स के भविष्य की एक अलग कहानी। अगर पूरे प्रदर्शन को देखें तो भारत के खाते में इस चैंपियनशिप में 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। जैवलिन में आशीष यादव का सिल्वर, हाई जंप में बसंत कुमार मेघवाल का सिल्वर और लॉन्ग जंप में शाहनवाज खान का ब्रॉन्ज। इन नतीजों ने भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। भारत अब सिर्फ 1 या 2 स्टार खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है, अलग अलग इवेंट्स में युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। खासतौर पर फील्ड इवेंट्स में भारत का प्रदर्शन लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के बाद युवाओं के बीच इस इवेंट को लेकर दिलचस्पी बढ़ी, वहीं लॉन्ग जंप और हाई जंप में भी नई प्रतिभाएं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना प्रभाव छोड़ रही हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिता का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यही वो मंच है जहां दुनिया के युवा खिलाड़ी पहली बार बड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव में खुद को साबित करते हैं। आज के ये जूनियर खिलाड़ी ही आने वाले वर्षों में सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और भारत के लिए 2026 का ये प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी साल देश की नज़र आगे आने वाले बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों पर है। यूजीन में भारतीय युवाओं ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उससे उम्मीद बढ़ी है कि आने वाले वर्षों में भारत के पास एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संख्या और बढ़ सकती है। इस चैंपियनशिप में दुनिया के कई मजबूत एथलेटिक्स देशों के खिलाड़ी मैदान में थे। ऐसे माहौल में भारत के युवा खिलाड़ियों का 3 पदक जीतना निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। अब बात सिर्फ पदक की नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन खिलाड़ियों ने दबाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन करना सीखा है। आशीष यादव ने जेवलिन में अपनी ताकत दिखाई, बसंत कुमार मेघवाल ने ऊंचाई को चुनौती दी और शहनवाज खान ने लंबी छलांग लगाकर इतिहास रच दिया। तीनों खिलाड़ियों की कहानी अलग है लेकिन मंजिल एक है, भारतीय एथलेटिक्स की दुनिया की शीर्ष शक्तियों में शामिल होना। और अगर यही युवा खिलाड़ी आने वाले वर्षों में अपनी टेक्निक, फिटनेस और प्रदर्शन में लगातार सुधार करते रहें तो निश्चित तौर पर इनमें बड़े मंचों पर और बड़ी उम्मीदें की जा सकती हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 से भारत के लिए संदेश बिल्कुल साफ है, युवा भारत दौड़ ही नहीं रहा, युवा भारत छलांग भी लगा रहा है और दूर तक भाला भी फेंक रहा है।

0: यूजीन में 3 पदकों के साथ भारतीय एथलेटिक्स ने ये बता दिया कि अगली पीढ़ी तैयार है। अब नजर इन युवा सितारों पर रहेगी कि जूनियर स्तर की इस सफलता को वे सीनियर स्तर पर कितनी बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं। बात करें पदक तालिका की तो मेजबान अमेरिका सबसे ऊपर रहा। अमेरिका ने कुल 24 पदक जीतने के साथ पहला स्थान हासिल किया। उसके बाद केन्या 11 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इटली 5 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 27वें स्थान पर रहा। भारत ने स्वर्ण पदक तो नहीं जीता लेकिन 2 रजत और 81 पदक के साथ प्रतियोगिता में अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराई है। सच में पदक तालिकाओं के साथ में भले ही 27वें स्थान पर रहा है भारत, लेकिन अपनी उपलब्धि दर्ज कराने में, अपना नाम दर्ज कराने में पीछे नहीं रहा है। अब चलते हैं अगले गेम की तरफ, जो है यूरो स्मैश 2026। टेबल टेनिस की दुनिया में ये एक ऐसा मुकाबला है जहां दुनिया के टॉप खिलाड़ी एक ही टेबल पर अपनी बादशाहत साबित करते हैं। ये टूर्नामेंट 8 से 16 अगस्त तक चल रहा है और यहाँ पर क्या क्या गेम हो रहे हैं, इसके लिए ताज़ा अपडेट के लिए आइए जानते हैं कविता से।
1: जी हाँ बिल्कुल विजेता, जिस तरह से आपने टेबल टेनिस के बारे में बताया, अभी फिलहाल जो स्थिति है यहाँ पर मेंस डबल्स राउंड 32 में यूएसए के नरेश जो हैं वो अभी आगे चल रहे हैं। वहीं अगर मेंस सिंगल राउंड ऑफ 64 की बात करें तो यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं ओमर असर इजिप्त के, वो यहाँ लीड कर रहे हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं चाइना के, उनसे आगे चल रहे हैं। वहीं अगर मेंस सिंगल्स की बात करें राउंड ऑफ 64 में, तो फिलहाल यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं आगे चल रहे हैं फ्रांस के। इसके साथ साथ ये जो मुकाबले हैं अभी खेले ही जा रहे हैं, लाइव अपडेट है और अगर कार्यक्रम में समय बचा तो हम इस पर फिर से जानकारी जरूर लेंगे।

0: तो अब बात करते हैं यहाँ पर, अभी हमने बैडमिंटन से शुरुआत की थी अपने कार्यक्रम की, लेकिन बैडमिंटन के साथ साथ जो हमारे पैरा खिलाड़ी हैं विजेता, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी हाल ही में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो है वो खेली गई, उसमें भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को कुल 7 पदक दिलवाए। भारतीय दल ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुष एकल SL3, जिसमें हमेशा से भारत का दबदबा रहता है, वर्ग में उमेश विक्रम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुष युगल SL3 SL4 वर्ग में दीप रंजन और तगरबीरी की जोड़ी ने शानदार तालमेल और प्रदर्शन के दम पर स्वर्ण पदक हासिल किया। रजत पदक भारत के विजेंद्र ने पुरुष एकल SL3 वर्ग में जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों ने 4 कांस्य पदक भी अपने नाम किए। दिनेश राजैया ने पुरुष एकल SL3 वर्ग में कांस्य पदक जीता। पुरुष युगल SL3 SL4 वर्ग में विजेंद्र और योगेश की जोड़ी ने कांस्य पदक हासिल किए। प्रणय सेठ ने पुरुष एकल SL4 वर्ग में कांस्य पदक जीता, जबकि तकर बिरी ने पुरुष एकल SL4 वर्ग में भी कांस्य पदक जीतकर प्रतियोगिता में अपना दूसरा पदक हासिल किया। हमने बात की है भारतीय पैरा बैडमिंटन के असिस्टेंट कोच जॉय गुप्ता के साथ, क्या कहा उन्होंने इस परफॉर्मेंस पे, साथ ही साथ एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप को भी लेकर कैसी है तैयारी, आइए सुनते हैं।
1: जस्ट बिफोर एशियन पैरा गेम्स हो रहा है जो अभी हमारा होने वाला है जापान में, हाँ ऑब्वियसली कम एंट्रीज गई थी वहाँ पे इंडिया की और नहीं गई थी, उस हिसाब से तो बेटर रिजल्ट ही है। ज्यादा प्लेयर्स गए नहीं थे वहाँ पे भी, जस्ट बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एशियन गेम्स जो अभी होने वाला है जापान में, तो उस हिसाब से तो अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही है। जितने भी गए बच्चे वो सभी मेडल लाए, हाँ उम्मीद से बेहतर कर सकते थे, गोल्ड ज्यादा होने चाहिए थे, कि जितने भी गए सबने अपना बेस्ट ही दिया होगा।
0: प्रदर्शन के बारे में बात करें तो थोड़ा प्रदर्शन के ऊपर बताइए, कौन से प्लेयर ने हमारे यहाँ मेडल जीता है?
1: उमेश विक्रम है जिन्होंने SL3 में गोल्ड जीता है, और दीप रंजन है, टक्कर बिरी है जो मेंस डबल्स में गोल्ड जीते हैं, और एक यंग लड़का है जो सिल्वर मेडल लाया वीरेंद्र, ये SL3 का बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है, बहुत यंग है अभी 18 साल तक का एज है उसका, तो उसपे काफी उम्मीद है इन फ्यूचर। दिनेश जो है हमारे SL3 में वो भी ब्राउन मेडल लाए हैं, तो SL3 में तो हमारा इंडिया का वैसे भी दबदबा रहता है पहले से ही, प्रमोद भगत और नितेश गोल्ड मेडलिस्ट हैं लास्ट 2 ओलंपिक से, उसके बाद प्रणय सेठ है जो SL4 में ब्राउन्स है, और वीरेंद्र एंड योगेश मेंस डबल्स में SL3 SL4 में ब्राउन्स है, तो अच्छा रिजल्ट था। बट ये है कि डबल्स में मुझे और उम्मीद है ये वीरेंद्र एंड योगेश से, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अपनी कैपेबिलिटी से कम ही खेले मुझे लगता है, पर आई होप इन फ्यूचर सीखेंगे, इससे कुछ लर्निंग लेंगे, आगे बढ़ेंगे।
0: तो टोटल हमारे कितने प्लेयर गए थे और हमारे

0: मेडल आए हैं?
1: टोटल हमारे 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज हैं, और टोटल हमारे तकरीबन 15 प्लेस की टीम गई थी।
0: तो अभी एशियन गेम की तैयारियां चल रही हैं, कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह की प्रिपरेशन है हमारे शटलर्स की?
1: एशियन गेम्स की तैयारी अभी फाइनल लिस्ट आने को है, और मुझे लगता है जल्दी आ जाएगी आजकल। तो जब फाइनल हो जाएंगे तो उसके लिए कैंप्स का प्रिपरेशन होगा, देन हम देख पाएंगे कि क्या प्रिपरेशन करना चालू करेंगे कब से। और बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि पिछली बार हमारे काफी अच्छे मेडल थे एशियन गेम्स में, तो इस बार भी उम्मीद है कि काफी अच्छे आने हैं। 108 मेडल्स थे ओवरऑल टीम इंडिया के, इन अदर गेम्स इंक्लूडेड, तो इस बार भी अच्छी उम्मीद है। हमें लगता है 28 हमारे बैडमिंटन से ही मेडल थे, तो इस बार और अच्छी उम्मीद है कि मेडल ला सकते हैं हम, क्योंकि इस बार सारे प्लेयर्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में।
0: वर्ल्ड चैंपियनशिप, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन 17 तारीख से होना है, इस पर क्या कहेंगे आप?
1: हाँ, बहुत एक्साइटेड है उसके लिए, मेरे को भी जाने का मन बहुत हो रहा है, बिकॉज चले एशियन गेम्स की तो शायद मैं ना जा पाऊँ, बट हाँ वेरी एक्साइटिंग। और हाँ, इतने दिनों बाद हो रही है इंडिया में, तो इंडिया का ऑलरेडी दबदबा अब बढ़ रहा है बैडमिंटन में। जैसे पहले मलेशिया, इंडोनेशिया और चाइना का होता था, अब इंडिया भी उसमें आ रहा है, जल्दी जल्दी इस मेडल आ रहे थे, तो उम्मीद है लक्ष्य भी अच्छा ही कर रहा है। नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं जो अभी आप अगर ऑल इंडिया फॉलो करते हैं तो उसमें, अगर अभी उड़ीसा में हुआ अंडर 19 वगैरह, तो उसमें भी काफी नए एक्साइटिंग मैंने प्लेयर्स देखे, तो फ्यूचर तो अच्छा ही है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो हमारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको पूरी तरह से बेस्ट विशेस की ऐसा परफॉर्म करें, और देश के लिए जितने मेडल आ सके बैडमिंटन में लाए और बैडमिंटन का ग्रोथ करें।
0: तो श्रोताओं, जब एक के बाद एक खेल खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, तो कई बार ऐसे ऐसे खेल भी हम सबके सामने आते हैं जिसके बारे में बहुत कम जानकारी जो है वो किसी को हो सकती है। जैसे मैं अपनी ही बात कर लूँ, तो कुछ कुछ खेल ऐसे हैं जिनके बारे में अभी जो ज़्यादा जानकारी है वो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरी जो सहयोगी है विजेता, उनके पास है। और क्या है वो खेल, चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं।
2: बिल्कुल, ये सेपक टकराव गेम है जहां पर सिर्फ हाथ पैरों से नहीं खेला जाता। ये एक ऐसा गेम है जो वाकई सबको हैरान कर दे, और हैरान करने वाले इस गेम ने, मतलब भारत की अगर बात करें तो, इतिहास रच दिया है और कहां से पदक अपने नाम कर लिया है।
0: तो यही तो विजेता हमारे इस कार्यक्रम की खूबसूरती है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने श्रोताओं तक वो जानकारी पहुंचाते हैं जिसके अभाव कहीं कहीं रह जाते हैं, और खिलाड़ी जो हैं उन्हें स्टार बनाते हैं। तो चलिए सुनते हैं पूरी खबर।
3: अगर आपको लगता है कि खेल सिर्फ हाथों और पैरों से खेले जाते हैं, तो सेपक टकराव आपको हैरान कर देगा। फुटबॉल जैसे किक, वॉलीबॉल जैसा नेट और मार्शल आर्ट्स जैसी कलाबाजियों का रोमांच, इन सब का शानदार मेल है सेपक टकराव। दक्षिण पूर्व एशिया से निकला ये खेल अब दुनिया के कई देशों में अपनी पहचान बना चुका है, और इसकी सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में से एक है ISTAF वर्ल्ड सेपक टकराव चैंपियनशिप, यानी कि थाई किंग्स कप। साल 2026 में चैंपियनशिप का 39वां संस्करण 3 से 11 अगस्त तक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित हो रहा है। मुकाबले फैशन आइलैंड टर्मिनल 21 के कन्वेंशन हॉल में हो रहे हैं, और दुनिया के बेहतरीन सेपक टकराव खिलाड़ी यहां अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए कई इवेंट रखे गए हैं। इनमें टीम इवेंट, रेगु डबल, क्वाड यानी क्वाड्रेंट, हुप और मिक्स्ड क्वाड्रेंट जैसे मुकाबले शामिल हैं। और इस विश्व मंच पर भारत ने एक बार फिर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। भारत ने पुरुषों के क्वाड्रेंट इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम का सामना मेजबान थाईलैंड से हुआ, जहां भारत को कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचने के साथ ही भारतीय टीम ने पोडियम पर अपनी जगह पक्की कर ली और कांस्य पदक हासिल किया। भारत के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सेपक टकराव में दक्षिण पूर्व एशियाई देश लंबे समय से मजबूत माने जाते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसी टीम इस खेल की बड़ी ताकत हैं। ऐसे में भारत का लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना बताता है कि देश इस खेल में तेजी से अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। दरअसल भारत के लिए साल 2026 पहले से ही शानदार रहा है। मई में जापान के नागोआ में आयोजित एशियन सेपक टकराव चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पुरुषों के क्वाड्रेंट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। फाइनल में भारत ने जापान को हराकर खिताब अपने नाम किया था। यानी एक तरफ एशियाई स्तर पर स्वर्ण और अब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक किंग्स कप में कांस्य। भारतीय सेपक टकराव टीम के लिए यह

0: हाल बेहद खास बनता जा रहा है। अगर इस खेल को आसान भाषा में समझे तो सेपक टेक्रो में खिलाड़ी गेंद को हाथ का इस्तेमाल किए बिना शरीर के अलग अलग हिस्सों, खासकर पैरों, घुटनों और सिर से खेलते हैं। सामने नेट होता है और लक्ष्य होता है गेंद को विरोधी के हिस्से में इस तरह गिराना कि वो वापस न कर पाए। यही वजह है कि मैच के दौरान खिलाड़ियों की ऊंची छलांग, हवा में घूमकर लगाई गई किक और बिजली जैसी तेजी से किए गए रिटर्न दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होते हैं। भारत की ये सफलता ऐसे समय पर आई है जब देश की नजर आने वाले एशियन गेम्स 2026 पर भी है। 20वें एशियन गेम्स का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची नगोआ में होना है और सेपक टेक्रो वहां भी भारत के लिए पदक की उम्मीदें खोलेगा। फिलहाल बैंकॉक में जारी किंग्स कप में भारतीय खिलाड़ियों ने साफ कर दिया है कि सेपक टेक्रो में भारत अब सिर्फ हिस्सा लेने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया की मजबूत टीमों को चुनौती देने की क्षमता भी रखता है। पदक भले ही स्वर्ण न हो लेकिन इस प्रदर्शन के पीछे छिपा संदेश बहुत बड़ा है। भारत सेपक टेक्रो की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहा है और आने वाले मुकाबले में देश की नजर अब पदक के रंग को कांस्य से बदलकर सोने पर करने की होगी। यानी थाईलैंड की धरती पर भारतीय खिलाड़ियों की ये उड़ान अभी रुकी नहीं है बल्कि ये आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए एक मजबूत शुरुआत है।
1: तो इस इंटरेस्टिंग खबर के बाद जब भारत ने यहाँ पर भी इस खेल में पदक ले लिया है, हम बात करते हैं अब क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट में भी बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि बाहर हो रहा है बारिश का मौसम और दिल्ली में खेली जा रही है डीपीएल लीग जिसमें ईस्ट दिल्ली राइडर्स और वेस्ट दिल्ली लॉयंस का मैच चल रहा था। लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है, सीधे आपको मैदान पर लिए चलते हैं, जुड़ते हैं प्रवीण सोनी जी से, डीडीसीएल ऑफिशियल और क्रिकेट एक्सपर्ट। सर आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद मैम।
1: सर क्या स्थिति है मैदान की, चलिए बताइए वहीं से सीधा।
2: इस वक्त तो बारिश रुकी हुई है, ग्राउंड पर पूरा काम कर रहे हैं, कवर हटा दिए गए हैं और अभी भी एक घंटे का जो टाइम हमने एक्सटेंड किया हुआ है उस तक हमारी बातें अभी हो सकती है कि अब देखते हैं कि रेफरी क्या डिसीजन लेते हैं इस मैच के बारे में और फिर हमें पता चलेगा। अभी कोई अपडेट आया नहीं है, रेफरी की और अंपायर की मीटिंग हो रही है, ग्राउंड का इंस्पेक्शन किया जा रहा है और शायद कुछ मिनटों में कोई डिसीजन आएगा।
1: जी तो अभी तक स्थिति क्या थी मैच की?
2: मैच में 4 आउट हो चुके थे इसलिए राइडर्स के और 15 ओवर का खेल हो चुका था, बहुत ज्यादा रन नहीं बने थे क्योंकि बहुत स्लो दोनों बैट्समैन खेल रहे थे, मयंक रावत और दूसरे जो बैट्समैन के साथ खेल रहे थे और केवल 45 गेंदों से हो गई थी और बाउंड्री नहीं लगी थी। पता नहीं किस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं मयंक रावत, हालांकि अच्छे क्रिकेटर हैं और पहले दो डीपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पर इस डीपीएल में उनका बल्ला भी बहुत खामोश है।
1: तो अभी क्योंकि दूसरा मैच भी आज होना ही था, दूसरा मैच पुरानी दिल्ली 6 आउटर दिल्ली वॉरियर्स के बीच था, तो आपको लग रहा है कि हो पाएगा क्या दूसरा मुकाबला?
2: अगर अब बारिश नहीं होती है तो शायद वो मैच शुरू हो जाए, थोड़ा लेट होगा तो कोई डिस्कस है कि अब 5 ओवर 10 ओवर की मैच कराने हैं क्योंकि एक इनिंग एक साइकिल 15 ओवर हो चुके हैं तो हो सकता है कि उनको और 10 ओवर का मैच कर दिया जाए और 10 ओवर में डीरेस्ट के स्कोर निकाला जाएगा फिर वो सिचुएशन होगी। अभी रेफरी इस बात का डिस्कशन हो रही है वहां पर और ग्राउंड में देख पा रहे हैं रेफरीज अंपायर ग्राउंड का निरीक्षण कर रहे हैं और पूरी तरह से कवर हटा दिए गए हैं, ग्राउंड मैन ने ग्राउंड रेफरी के हवाले कर दिया है, वो प्रिकॉशन लेंगे क्या किस तरह से वो डिसीजन लेंगे अभी इसके समय पर पता चलेगा।
1: जी तो लगभग क्या आप लग रहा है यहाँ पे कि थोड़े से जो बारिश है उन्होंने थोड़ा सा मैदान में खिलाड़ियों की जो उम्मीदें उन्हें धो दिया है?
2: नहीं ऐसा नहीं है, ग्राउंड में पूरे कवर रहते हैं पर फिर भी देखिए बारिश बहुत हुई है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा लीकेज और रहता है, काफी बारिश हो रही है तो जब कवर हटाते हैं तो उसके पूरी काफी पानी जमा होता है। हालांकि ग्राउंडमैन की बहुत तारीफ करनी होगी, क्यूरेटर की बहुत तारीफ करनी होगी, पूरे ग्राउंड साहब बहुत मेहनत करता है क्योंकि हम लोग तो अंदर आके बैठ जाते हैं बारिश हो रही है तो वो बेचारे ग्राउंड में रहते हैं, कभी भी जैसे बारिश होती है उनको कवर हटाने पड़ते हैं और बहुत ही मेहनत की है उन्होंने और पूरे बधाई के पात्र हैं सभी ग्राउंड्समैन और क्यूरेटर।
1: जी तो अब क्योंकि कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला है, प्रवीण जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: थैंक यू सो मच।
1: तो यहाँ पर क्रिकेट की बात है और क्योंकि अब जो है समय धीरे धीरे हमें समाप्ति की ओर लेके चल रहा है लेकिन दिल्ली में जो खेला जा रहा है डीपीएल क्रिकेट लीग उसमें तो अभी फिलहाल अभी इंटरेस्टिंग मोमेंट पे है, मैच बस शुरू होने वाला है लेकिन अब हम चलेंगे आपको क्रिकेट के मैदान से निकालकर फुटबॉल के मैदान में लेकर।
0: बिल्कुल, भारतीय फुटबॉल के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में शामिल ड्यूरेंट कप 2026 में मुकाबलों का रोमांच लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 135वां संस्करण है जहां पर मैच लगातार उस मोड़ पर आ गए हैं जहां लोग अपने दांतों में उंगली दबाकर उस मैच को देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कल जो मैच हुआ वहाँ TRAUFC ने इंडियन नेवी को 2-1 से मात दी। और वहीं अगर बात करें आज के मुकाबलों की, तो मोहन बगान सुपर जायंट का सामना CISF प्रोटेक्टर से हो रहा है। ये मुकाबला कोलकाता के किशोर भारती किरांगन यानी कि KBK में खेला जा रहा है। और अब देखना ये होगा कि मैच में जीत किसकी होती है। मोहन बगान के लिए ये मुकाबला बेहद अहम है
1: जी, और क्योंकि अब घड़ी की जो सुइयां हैं ऑलमोस्ट हमें इशारा कर रही है कार्यक्रम को समाप्त करने की। लेकिन उससे पहले एक और खबर, फिलहाल मानस धामने को पहली बार भारत की मुख्य डेविस कप टीम में शामिल किया गया, जबकि टीम प्रबंधन ने सितंबर में सोल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ होने वाले क्वालिफायर राउंड 2 मुकाबले के लिए उस मुख्य टीम को बरकरार रखा है जिसने नीदरलैंड के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। विश्व रैंकिंग 362वें स्थान पर काबिज और भारत के दूसरे नंबर के एकल खिलाड़ी धामने लंबे समय से सीनियर टीम में जगह बनाने की दहलीज पे थे और अब वो सुमित नांगल के साथ अपने पिछले मुकाबले के स्टार भी रहे थे, तो फिलहाल अब हिस्सा लेने वाले हैं वो। अब इसी के साथ कार्यक्रम में अब मेरी सहयोगी
0: विजेता चतुर्वेदी
1: कविता शर्मा को अपने प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ खेल खिलाड़ी से दीजिए अनुमति। नमस्कार।
3: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बहिस्साक्ष अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं।

0: सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे ना।
1: ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा तब तक होर्मुज जलडमरो मध्य को फिर से नहीं खोला जाएगा। श्री बघाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के कारण होर्मुज जलडमरो मध्य को बंद किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: देखिए यमुना बहन, हमारे जो युवा हैं उनको जो रोजगार के लिए प्रशिक्षण लेना होता है उसके लिए वो जगह जगह घूमते हैं। कितनी बार ऐसा होता है उनके पास पैसे भी नहीं होते और उनको एडमिशन लेना पड़ता है लोन लेके, उधार लेके।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन हमारे सरकार ने कुछ ऐसी रोजगार योजनाएं शुरू करी हैं हमारे युवाओं के लिए, जो कि छोटे छोटे रोजगार हैं और छोटे छोटे उद्योग हैं जो कि वो सीख सकते हैं, प्रशिक्षण ले सकते हैं और अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगी कि वो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ वो प्रशिक्षण ले सकते हैं।
0: जी
1: तो अगर देखा जाए तो जो वर्तमान में है इस समय, तो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान और साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये
0: जी
1: इसके तहत वो जो है, और ट्राइसेम भी है, इसके तहत जो है वो मुफ्त प्रशिक्षण ले सकते हैं और वित्तीय सहायता भी दी जाती है और बैंक ऋण की सुविधा भी दी जाती है जब वो सीख लेते हैं, कुछ काम करना चाहते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल। और कौशल विकास जो है वो गांव-गांव में है, खुला हुआ है ये प्रशिक्षण केंद्र। वहाँ पे हमारे जो युवा साथी हैं जो 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं, इसके बाद वो नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो जाके निशुल्क जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई और कंप्यूटर का, मोबाइल फोन का और इंग्लिश
1: जितनी
0: स्पीकिंग का, ये बहुत सारे कोर्स हैं जो वो सीख सकते हैं, उसमें अपना रोजगार कर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं कहीं ना
1: इसमें
0: कहीं।
1: ग्रामीण युवाओं की हम बात करें, युवक युवतियां जिनके अंदर हुनर है और
0: जी
1: थोड़ा सा वो अगर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं
0: जी
1: तो उनके हुनर में निखार तो आता ही, साथ साथ अगर मान लीजिए कोई प्रसंस्करण वो करना चाह रहे हैं, खाद्य प्रसंस्करण का कोई प्रशिक्षण लेना
0: जी
1: चाह रहे हैं, तो होता ही है कि हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे लॉन्ग टाइम तक, मतलब ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रखने के लिए प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है कि कैसे
0: बिल्कुल
1: प्रिजर्व किया जाए, उसे कैसे ज़्यादा दिनों तक संरक्षित करके रखा जा सकता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और हमारी जो सरकार है वो उनको ऋण भी
1: हाँ
0: मुहैया कराती है और साथ साथ जो हमारी सरकार है उनको नौकरियां भी दिलाती है।
1: तो जब आप प्रशिक्षण ले लेते हैं, जैसे वंदना अगर कोई युवा युवक है और ले लिया वो कोई प्रशिक्षण, तो उसके बाद क्या होता है, वो सर्टिफिकेट उसके काम आता है और उससे
0: बिल्कुल।
1: उसको रोजगार का बहुत अच्छा जरिया मिल जाता है।
0: और देखिए ये रोजगार जो है, ये जो प्रशिक्षण है ये छोटे छोटे हैं, 2 महीने 3 महीने
1: हाँ
0: 6 महीने, तो इतना टाइम हमारे बच्चे निकाल लेते हैं, उनके हाथों में एक हुनर पैदा हो जाता है और वो अपने जीवन में अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं अपना रोजगार खोल के।
1: बिल्कुल। जो ट्राइसिम की हम बात कर रहे हैं तो यह ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए तकनीकी टेक्निकल जानकारी देने की
0: जी
1: बात होती है और व्यावसायिक जो है उनको कौशल सिखाने के लिए 1979 में ही शुरू की गई थी। एक अहम ऐतिहासिक योजना है जो अभी तक चल रही है, 1979 से लेकर के अभी
0: जी
1: तक।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरीके से देखा जाए तो अगर कोई चीज़ या कोई हुनर आपके अंदर है और आप थोड़ा सा प्रशिक्षण ले लेते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन निखार आ जाता है और बहुत ही अच्छा आपको रोजगार का जरिया भी मिल सकता है। बात को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि अपने कार्यक्रम के जरिए हम कुछ ना कुछ जानकारी दिलवाते रहते हैं अपने श्रोताओं को, अपने भाइयों बहनों को। तो आज जो हमारा बातचीत का विषय है वो बता देते हैं।
0: हमारा बातचीत का विषय है ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण।
1: जानकारी हम बताएंगे, देखो
0: जी हाँ,
1: अभी तो इस पर बात कर ही लिए तो
0: जिस पे तो हमने बात कर ही ली है। और जो हमारा आज का जानकारी का विषय है वो मत्स्य संपदा योजना किसानों के लिए लाभ, डॉक्टर बी के मिश्रा से बातचीत कर रहे हैं शिव नंदन लाल।
1: चलिए जानकारी सुनते हैं और इस पर लाभ उठाने हैं।
0: जी
2: किसान भाइयों नमस्कार, आज हम बात करेंगे मत्स्य संपदा योजना की और इसके जो हमारे मछली पालक हैं उनको किस तरीके से इसका लाभ मिले, और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वी के

0: मिश्रा जी, जो कि प्रबंध निदेशक रह चुके हैं फिस्को फेड में, और मछली पालकों के लिए आप दिन प्रतिदिन लगे रहते हैं कि किस तरीके से मछली पालकों को लाभ हो, किस तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया जाए, किस तरीके से उनका जो काम करते हैं उसका बीमा कराया जाए, बीमा का क्लेम कैसे लिया जाए। तो मिश्रा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जो मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई भारत सरकार द्वारा, तो इसको लाने का क्या मुख्य उद्देश्य था?
1: देखिए, भारत सरकार 2014 से फिशरीज को एक सनराइजिंग सेक्टर माना है, और भारत सरकार फिशरीज पे ब्लू रिवॉल्यूशन 2014 पे जब लाए, उसका बाद फिशरीज पे प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बीमा हो, और ये सारी क्षेत्र पे काफ़ी अच्छा पॉलिसी चेंजेस किया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी लाया है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान पे मछली का जो उत्पादन है लगभग 20 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। जहाँ तक एक्सपोर्ट की है, एक्सपोर्ट 70,000 करोड़ से ज़्यादा एक साल पे एक्सपोर्ट हो रहा है। मछुआरों को 5 लाख का बीमा का कवर दिया जा रहा है। इसका अलावा इतने स्कीम है, पहले तो इन्वेस्टमेंट कम होता था, आजकल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिशरीज फील्ड पे आ रहे हैं। तो ये सब ब्लू रिवॉल्यूशन की वजह से कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ है, आगे हमको और बढ़ना है।
0: जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि इसमें प्रोडक्शन है, बीमा है, तो जो पहले इसका प्रोडक्शन हो रहा था उत्पादन, और अब उत्पादन में कितना फर्क पड़ा है?
1: फिशरी सेक्टर पे अच्छा 7-8% ग्रोथ हो रहा है, हमारा 1% का GDP पे भी कंट्रीब्यूशन है। ये होने का ये कारण है, ये जो फिशरीज है यहाँ ग्रोथ काफ़ी जल्दी जल्दी होता है, और इसका भी अच्छा इंटरनेशनल मार्केट है, पॉलिसी सपोर्ट भी मिला है। पहले जब लोगों को सब्सिडी नहीं मिलता था, प्रॉब्लम होता था, आजकल अच्छा सब्सिडी भी मिल रहा है, इंडिविजुअल फिशरमैन को भी मिल रहा है, सेंट्रल स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट प्लान पे सब जगह पे बजट बढ़ा है, लेकिन काफ़ी एरियाज है, लेकिन जितना भी स्कोप आज मिल रहा है लोगों को ये सुविधा लेना चाहिए, और इसका साथ साथ लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। काफ़ी ICR का इंस्टीट्यूट, कृषि विज्ञान केंद्र और कोऑपरेटिव जो नेटवर्क है फिस्कोपेट के माध्यम से लगभग 30,000 प्राइमरी फिशरीज कोऑपरेटिव से उनको भी ये लाभ मिल रहा है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत से हमारे मछली पालक हैं, कुछ तो तालाबों में पालते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फिशरमैन का आपने जिक्र किया, जो समंदर से भी मछलियां पकड़ते हैं, तो इन दोनों को किस तरीके से सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है?
1: देखिए, सरकार का जो लाभ इसलिए मिल रहा है कि पहले मेराइन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, आज की डेट पे मेराइन का प्रोडक्शन कम है, थोड़ा बहुत सैचुरेशन आ गया, ज़्यादातर इनलैंड पे प्रोडक्शन हो रहा है, जिसपे जितना पोखरा है, पौंड आ रहा है, रिजर्वर आ रहा है, कैनाल आ रहा है, रिवर आ रहा है, सारी जगह पे फिशरीज हो रहा है, और सिडलिंग डाल के और अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन इसका साथ साथ सरकार मेरीकल्चर के ऊपर भी जोर दिया है, और कैचिंग के लिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे और बियॉन्ड भी, उस पर भी सरकार के ऊपर नया पॉलिसी आया है, उनका भी लाभ मिल रहा है, फिशरमैन कम्युनिटी को, फिशरमैन ग्रुप को, FPO को मिल रहा है, फिशरीज कोऑपरेटिव को मिल रहा है, इंडिविजुअल फिशरमैन को मिल रहा है। सरकार का ये प्रयास है इनलैंड फिशरीज, मेराइन फिशरीज, अन्ना मिनरल फिशरीज, ब्रैकिस वाटर फिशरीज, ये सारी चीज पे जो पॉलिसी है ये लाभ मिले, इंडिविजुअल लेवल पे मिले, इंस्टीट्यूशन लेवल पे मिले, और सबके लिए सब्सिडी वगैरह वगैरह सारी चीज सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पे, तो ये लाभ सबको मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा फिशरीज का जो ग्रोथ है लगभग 7-8% का ग्रोथ हर साल हो रहा है।
0: अच्छा, जैसे कृषि में किसान क्रेडिट कार्ड किसान बनवा लेते हैं, उससे उन्हें मदद मिलती है, क्या मछली पालकों को भी कोई क्रेडिट कार्ड सरकार द्वारा सुविधा उपलब्ध कराई गई?
1: सरकार पहले तो नहीं था, लेकिन अभी मछुआरों को भी क्रेडिट कार्ड बनाने पे सुविधा मिल रहा है, अभी लाखों पे फिशरमैन को क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। इस पर क्या लाभ होता है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, और इस पे इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, इंटरेस्ट भी सरकार की तरफ से भी दिया जाता है, हार्डली 3-4% इंटरेस्ट पे फिशरमैन को मिल रहा है, पहले ये चीज सुविधा नहीं मिल रहा था। मेरा तो ये निवेदन होगा जितने भी जो फिशरमैन है, इन लोग बैंक के माध्यम से किसान क्रेडिट

0: कार्ड जैसे है वो ही कार्ड को ले, ताकि मछली का प्रोडक्शन मछली पे लाभ ले, ताकि उनको पास कैपिटल आ। पहले तो लोग 8% 10% 12% पे ले रहे थे, आज अगर 3% पे मिल रहा है उनको लाभ लेना चाहिए। और आजकल रूल भी काफी फ्लेक्सिबल हो गया और क्रेडिट कार्ड भी इशू हो रहा है, फिशरमैन फिशर वुमेन इनका लाभ उनको जरूर लेना चाहिए। ये एक मास मूवमेंट होना चाहिए, लोगों के पास जागरूकता नहीं है, और ये सुविधा मिलेगा कंसर्न बैंक से कंसल्ट करें।
1: डॉक्टर साहब, जैसे पहले तो तालाबों में मछली पालन होता था, लेकिन आजकल लोग छोटे छोटे पोंड बना के खेतों में भी मछली पालन करने लगे हैं, तो इसके लिए उनको पोंड बनाने के लिए कुछ सरकार द्वारा सहायता दी जा रही हो?
0: देखिए, सरकार के द्वारा पहले ब्लू रिवॉल्यूशन पे भी था, उसका बाद वो मॉडिफाई होके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हुआ, और उसपे भी और भी सब्सिडी का भी प्रावधान हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, बैकवर्ड से भी लीजिए, सीड प्रोडक्शन के लिए, पॉन्ड बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, उसपे इनपुट के लिए और मार्केटिंग के लिए, सारी चीज के लिए भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी का प्रावधान है। आप अगर वो जनरल कास्ट से है उनको 40% सब्सिडी मिलेगा, अगर वो वीमेन है SC ST से है उनको 60% मिलेगा। इसका अलावा आपको किसान क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट सबवेंशन है, इवन फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है, इसीलिए फिशरमैन को इनका भी लाभ लेना होना चाहिए। और इंडिविजुअल फिशरमैन को तो मिल रहा है, उसका साथ साथ जो ग्रुप है, जैसे फिशरीज कलेक्टिव से फिशरमैन का कलेक्टिव हो, जो कोऑपरेटिव है, जो FPOs है, उनको भी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन उनको थोड़ा सा स्कीम को पढ़ना चाहिए,
1: जी
0: जैसे एक संस्था है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, उनके माध्यम से देखना है क्या क्या इसके प्रावधान है। कुछ सेंट्रल फंडिंग है, कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे फंडिंग है, कुछ स्टेट प्लान पे फंडिंग है, तो आपको देख के कहाँ से एक फंड लेके आपका प्रोडक्शन को बढ़ाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, ट्रेनिंग का लाभ सबको मिले। मेरा ख्याल हर चीज पे कुछ ना कुछ तो फंडिंग का पैटर्न है और मिलेगा फंडिंग।
1: जिस तरीके से फसलों में फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है, क्या इसमें मछली पालकों को भी कोई बीमा होता है जिसका उन्हें लाभ मिले?
0: फिस्कोपैड के माध्यम से बीमा 1980 से चल रहा था, 2020 पे वो NFDP के माध्यम से चल रहा है। पहले तो 10-11 लाख अमाउंट का होता था, धीरे धीरे बढ़ोतरी होते हुए आज की डेट पे फिशरमैन का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पे कवर है 5 लाख रुपया। अगर कोई फिशरमैन का मछली का काम करते टाइम पे इवन रोड पे जा रहा है, स्नेक बाइट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उनको 5 लाख रुपया मिलेगा उनका नॉमिनी। अगर डिसेबिलिटी हो गया 100%, उनको भी 5 लाख मिलेगा। अगर पार्शियल डिसेबिलिटी हो गया तो उनको 2.5 लाख रुपया मिलेगा। इसका अलावा क्रॉप के लिए भी इंश्योरेंस है, पहले क्रॉप के लिए इंश्योरेंस नहीं होता था, पिछले 2-3 साल से क्रॉप के लिए भी इंश्योरेंस हो रहा है, उसके लिए भी भारत सरकार का भी सब्सिडी है। आप NFDP की तरफ से एक पोर्टल आ गया है, आप वो पोर्टल पे अपना नाम रजिस्टर कर दीजिए, रिकॉर्ड पे आपका नाम आ जाएगा, आपको इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। 18 साल से 70 साल के बीच में आप फिशरमैन बाई कास्ट है कि बाई प्रोफेशन है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। स्कीम तो बहुत है, लाभ नहीं
1: जी
0: लेते हैं कि जागरूकता नहीं है, लेकिन ये लाभ उनको लेना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, जागरूक होने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि अब तकनीकी का युग आ गया है, क्योंकि पहले जो हमारे फिशरमैन समंदर में जाते थे कि मछली पकड़ने के लिए, और कभी कभी उनको सूचना नहीं मिल पाती थी कि कभी तूफान आ रहा है या समुद्र में लहरें उठने लगी हैं, तो आज कोई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है जिससे फिशरमैन निकलते हैं जब डीप फिशिंग के लिए, तो उनको कोई ऐसा उपकरण उपलब्ध कराए गए कि जिससे उनको जानकारी उसकी तुरंत मिलती रहे?
0: गवर्नमेंट की तरफ से BSNL के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाता है। इवन आजकल अगर तूफान आता है तो 5 दिन पहले पता चल जाता है, तो तुरंत वायरलेस के माध्यम से और डिफरेंट मैकेनिज्म के माध्यम से फिशरमैन को बताया दिया जाता है कि भाई ये साइक्लोन आ रहा है, उनका अलर्ट क्रिएट हो जाता है। बहुत जगह पे हमने भी शुरू किया था डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर, कहीं
1: जी
0: भी होता है तुरंत डिस्ट्रेस अलर्ट भी आ जाएगा, वो कोस्ट गार्ड को भी उनका इन्फॉर्मेशन आ जाता है। वायरलेस का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, इसीलिए आजकल जो मोर्टालिटी है धीरे धीरे कम हो गया। पहले क्या है पता नहीं होता था, हाई सी पे डेथ ज्यादा होता था, अभी धीरे धीरे हाई सी पे डेथ कम होना शुरू हो गया, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन कम से कम 4-5 दिन पहले से मिल जाता है। कोई भी आदमी हाई सी पे गया है वेसल लेके, वो तुरंत आ जाता है कोस्ट को।
1: डॉक्टर साहब, देखते

0: कि कोई भी क्षेत्र हो उसमें जो लोग उत्पादन करते हैं उनको तो रोजगार मिलता है, और कुछ लोग उसको खरीद कर उसकी प्रोसेसिंग मार्केटिंग करते हैं उनको भी रोजगार मिलता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ सरकार की सहायता मिलती है?
1: देखिए, ये आ गया वैल्यू एडिशन पे। आप जो प्रोडक्शन होता है उनका मार्केटिंग होना जरूरी है, तो मार्केटिंग के लिए रिटेल आउटलेट, होलसेल मार्केट, ये सब को मॉडर्नाइज करने के लिए भारत सरकार की तरफ से डिफरेंट स्कीम है। कहीं कहीं जगह पे होलसेल मार्केट भी हुआ है, बहुत लोग फंडिंग लेके रिटेल आउटलेट किए हैं, लेकिन इसको भी इंटरनेशनल टाइप का काफ़ी ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो होलसेल मार्केट है उनमें गंदगी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से फंडिंग सिस्टम है, इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए, और होगा तो ये काफ़ी सक्सेस होगा। और इंडिया का फिशरीज मार्केट धीरे धीरे देश पे प्रोडक्शन पे, तो अभी हम नंबर 2 है, हम लोग का ये प्रयास है। काफ़ी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कैप्सूल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक दिन से ओरिएंटेशन प्रोग्राम लेके 5 दिन 10 दिन तक भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उनका लाभ होना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको कोऑपरेटिवाइजेशन किया जाए। भारत सरकार की अंडर पे कम से कम 30,000 कोऑपरेटिव है, उसका भी बढ़ोतरी होना चाहिए, और कोऑपरेटिव को एम्पावर किया जाए। और लगभग 40 लाख लोगों को कोऑपरेटिव पे जुड़ा है, उनको एम्पावर करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको लाभ मिले सारी पॉलिसी का। और इन लोग को जो नेशनल फिशरीज पोर्टल है उस पर नाम रजिस्ट्री करें, ताकि उनको डिफरेंट स्कीम का भी लाभ मिलेगा।
0: तो डॉक्टर साहब, देश में युवाओं की संख्या काफ़ी है, और अगर युवा मछली पालन को रोजगार की दृष्टि से देखें तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: वो तो देखना चाहिए, जहाँ पानी है वहाँ प्रोडक्शन हो सकता है, अपना पास पॉन्ड है नहीं तो लीज पे पॉन्ड लेके डिपार्टमेंट से पिसीकल्चर करे, ये पिसीकल्चर पे जो प्रॉफिट है इज मोर देन एग्रीकल्चर। और सबसे बढ़िया चीज़ है आप मार्केटिंग करो, प्रोसेसिंग करो, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट पे जाओ। देश
0: जी
1: से कम 70,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हर साल हो रहा है। ऑर्नामेंटल फिश एक न्यू एरिया है, इधर न्यू टेक्नोलॉजी, लेकिन फिशरमैन फिशरवुमेन को एम्पावर करो, और हो सकता है फिशर वुमेन जो वल्नरेबल ग्रुप है उनको अगर इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए, हो
0: जी
1: सकता है कुछ मैकेनिज्म भारत सरकार की तरफ से कुछ पायलट प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट फ्री दिया जाए। जैसे आपका सुंदरबन एरिया हुआ, आपका चिल्का एरिया हुआ, जहाँ अच्छा क्लस्टर मिल जाएगा, जहाँ फिशर वुमेन ज़्यादा इन्वॉल्व है,
0: जी जी
1: उन लोगों को उनका भी लाभ दिया जाए। एक कहीं मॉडल क्लस्टर टाइप का भारत सरकार को इस टाइप का स्कीम लेना चाहिए। इसका अलावा तो बहुत स्कीम है, ऐसे तो है, लेकिन ज़्यादातर तो लोग जो अनपढ़ है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उनको कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव और एफपीओ का साथ लिंक करना पड़ेगा, और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर को ये सब को इंटीग्रेट करके प्रोफेशनली ये सेक्टर को डेवलप करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें सरकार भी आगे आ रही है और जो हमारे मछली पालक हैं उनको भी आगे आके जागरूक होना भी जरूरी है, और जो हमारे युवा साथी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं से आप थोड़े दिन का प्रशिक्षण लेकर के कार्यक्रम की शुरुआत करें, और सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं जिनके द्वारा आप लाभ लेकर के मछली पालन शुरू कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: डॉक्टर वी के मिश्रा, जो कि प्रबंध निदेशक हैं फिशको पैड में, और इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि मत्स्य संपदा योजना किसानों के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है, इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे शिवनंदन लाल जी।
3: जी हाँ, और जानकारी को आगे बढ़ाते हुए यमुना बहन एक और बाइट अपने भाइयों को सुनवाते हैं। दिनांक 8 अगस्त को विज्ञान भवन में आयोजित हुए 2 दिवसीय इंडियन मेडिकल डिवाइस 2026 सम्मेलन के दौरान आकाशवाणी से विशेष बातचीत में आइए सुनते हैं आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल जी को।
2: और इनके साथ हैं, जानकारी ले रही हैं हमारी साथी मंजीत कौर, चलिए सुनते हैं।
4: हमारे साथ इस समय मौजूद है डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल हमारे साथ हैं राजीव बहल जी। सर, जानना चाहेंगे, बहुत ही अहम कार्यक्रम का आयोजन किया गया विज्ञान भवन में इंडिया मेडिकल डिवाइस, और थीम की बात करें तो टुवर्ड्स विकसित भारत, क्या कहना चाहेंगे आप?
5: जो ये मेडिकल डिवाइसेस हैं ये क्वालिटी ऑफ केयर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, चाहे वो रिहैबिलिटेशन हो, हर एक चीज़ में कोई ना कोई डिवाइस यूज़ होते हैं। और ये डिवाइसेस में जो बेस्ट क्वालिटी केयर हमारे सिटीजन्स को मिले, भारतवासियों को मिले,

0: ये भारत सरकार का एक प्रयत्न रहता है और इसमें कई डिपार्टमेंट्स जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने सपोर्ट किया है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का इवेंट है और उन्होंने इंडस्ट्री के साथ भी कनेक्ट किया है। सारी इंडस्ट्री के साथ डिस्कशंस हुए हैं कि किस प्रकार से जो डिवाइसेस को सिटीजन्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए, जो उसकी क्वालिटी ऑफ केयर बढ़ाने के लिए किस तरह यूज़ किया जा सकता है। ख़ास तौर पे जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जहाँ तक एफर्ट है वो ये है कि हम जो भारत में डेवलप्ड और भारत में बने हुए डिवाइसेस को प्रमोट करें और नए डिवाइसेस बनाएं, क्योंकि अभी 80% डिवाइसेस हमारे 80% डायग्नोस्टिक डिवाइसेस वो इम्पोर्ट होते हैं। और प्रधानमंत्री जी का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है कि हम मेक इन इंडिया और डेवलप इन इंडिया करें, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम एक एंड टू एंड सिस्टम है हमारा, जिस तरह की जहाँ रिसर्च को पैसा देना और पेटेंट्स और आईपी को फाइल कराना, उस पेटेंट को इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना और फिर उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना। तो इसके लिए हमने रिसर्च के साथ साथ पेटेंट मित्र और मेडटेक मित्र करके इनिशिएटिव्स चलाए हुए हैं, जिसमें कि कोई भी इनोवेटर ICMR के साथ और CDSCO जो कि हमारा रेगुलेटर है उससे मदद मांग सकता है और मदद उनको मिल रही है, जिससे तेज़ी के साथ हमारे डिवाइसेस जो भारत में बने हों और उनकी क्वालिटी बाहर के डिवाइसेस जैसी या उससे अच्छी हो, और उसके बावजूद भी हमें ये उम्मीद है कि जब वो इंडिया में बनते हैं तो उनकी कॉस्ट 1/5 से 1/10 होती है, यानी कि बहुत सब्सटैंशियल। इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए और इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव्स को सरकार के साथ जोड़ने के लिए, जिससे कि भारतवासियों का सबसे ज़्यादा फायदा हो, ये इसके लिए ये इवेंट किया गया है।
1: बिल्कुल सर, हेल्थ इज़ वेल्थ हमेशा से कहा गया है, तो जितने भी नागरिक हैं उनको किस तरीके से इस इन सुविधाओं को उठाने का फ़ायदा कैसे पहुंचेगा सर?
0: ये जो इनिशिएटिव्स हैं जिसमें मैंने आपको कहा, इससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा, यानी कि अगर हम सस्ते डिवाइस बना पाएंगे, अच्छे और क्वालिटी के और सस्ते होंगे, तो उसको सरकारें, राज्य सरकारें या दूसरी सरकारी संस्थाएं, अस्पताल उसको प्रोक्योर कर पाएंगे। अगर कॉस्ट कम होगी तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स और बाकी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स और बाकी जो प्राइवेट केयर प्रोवाइडर हैं वो भी लो कॉस्ट पे इन डिवाइसेस को प्रोक्योर कर पाएंगे, जिससे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर कम होनी चाहिए और क्वालिटी बढ़नी चाहिए। तो जनता का फ़ायदा यह है कि उसको बेटर क्वालिटी हेल्थ केयर मिले और उसका अपनी जेब से पैसा कम लगे।
1: बिल्कुल सर, और हमारे जो लिसनर्स हैं जो भी आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
0: सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि अपनी, पहले तो सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ हेल्थ। अपने बीमार होने से अपने को बचाएं, जो भी चीज़ें, डाइट है, फिज़िकल एक्टिविटी है, स्मोकिंग को अवॉइड करना, टोबैको को ना इस्तेमाल करना, अल्कोहल को कम करना, ये सब चीज़ें जो हैं अच्छा लाइफस्टाइल करने से हमारी वो कम होंगी। और उसके बाद अगर आपको हेल्थ केयर की ज़रूरत पड़े तो उसमें एक तो सबसे पहले अपनी वही उस तरह की हेल्थ केयर लें जिसमें आपका विश्वास हो, जिसमें जो सर्टिफाइड हो, किसी भी, चाहे ट्रेडिशनल मेडिसिन हो चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो, तो सर्टिफाइड लोगों के साथ ही हेल्थ केयर लें। और तीसरा कि जो इन हेल्थ केयर में अपने हेल्थ केयर को एक तरह से, उसको जिस तरह का आपको इलाज बताया जाए अगर उसी तरह आप करेंगे तो आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।
1: आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: धन्यवाद।
2: इस सम्मेलन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री श्री प्रकाश नड्डा जी द्वारा आत्मनिर्भर मेडटेक विकसित भारत की ओर भारत की यात्रा को गति प्रदान करना, इस विषय पर भी संबोधित किया गया। और इनसे बातचीत प्राप्त कर रही थी, जानकारी ले रही थी मनजीत कौर, हमारी साथी।
3: और अब करवाते हैं अपने भाइयों का मनोरंजन और सुनवाते हैं रविंदर कुमार बदोला से।

0: रविंद्र कुमार भदौला के साथ गए हुए इसी गीत के साथ ही आज का हमारा ये ग्राम संसार कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।

0: सर और संयोजक शिवनंदन लाल।
1: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्राम संसार। आइए आपसे कुछ ही पलों में सुनते हैं हिंदी समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन किया गया है। संसद ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसका उद्देश्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि यह विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 में बनाया गया था, जब बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से कागजी थी। लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्त और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित हो गया। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
3: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
2: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की।
4: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत के निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और harghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। और खेलों में FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप से पहले इसकी संरचना में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। यह प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम।
1: वंदना, देखो अपने कार्यक्रम के जरिए हम कुछ न कुछ विशेष बातें, विशेष जानकारी उन तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं
2: जी।
1: और आज भी हम कुछ ऐसी बातचीत लेकर के आए हैं, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे किसानों के लिए बेहद ही लाभकारी साबित होगा। तो इसमें जो जानकारी का जो हमारा विषय है वो हरे चारे के परिरक्षण की विधियाँ। और इस समय हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर ऋषिराज जी जो कि इसमें कार्यक्रम में आए हुए हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सबसे पहला प्रश्न जो हरे चारे को लेकर के है तो ये है कि हरे चारे का परिरक्षण क्यों आवश्यक है?
3: जी, हरे चारे का जो परिरक्षण है हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे किसान भाइयों के साथ जो हरा चारा है
1: जी।
3: वो साल भर के 12 महीनों में लगातार उपलब्ध नहीं होता है। तो इसकी जो हरे चारे की जो उपलब्धता है वो वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में होती है। गर्मी के मौसम में हमारे किसान भाइयों के पास इन हरे चारों की उपलब्धता कम हो जाती है। तो इन उपलब्धता न होने की जो समस्या उसको दूर करने के लिए हमें गर्मी के मौसम में हमें हरे चारे को परिरक्षण करके रख लें तो जो हमारे पशुओं के लिए जो आहार की आवश्यकता है इन महीनों में वो आसानी से पूर्ण की जा सकती है।
0: जी जी जी हाँ। और हरे चारे का जो परिरक्षण का क्या क्या विधियाँ हैं?
3: हरे चारे के परिरक्षण के लिए जो हमारी जो वैज्ञानिक विधियाँ हैं उनमें दो वैज्ञानिक विधि हैं। एक तो हम साइलेज बना के हम हरे चारे को परिरक्षण कर सकते हैं और दूसरी हमारी जो विधि है उसमें हम हे के रूप में अपने चारों को परिरक्षण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो हरे चारे के परिरक्षण की जो मुख्य दो विधियाँ हैं, एक तो साइलेज विधि हो गई और दूसरी हे विधि होती है।
1: जी जी। जैसे आपने साइलेज की बात की डॉक्टर साहब, तो साइलेज क्या है और कैसे बनता है?
3: जी साइलेज को अगर हम विस्तार से देखें, साइलेज का एक वैज्ञानिक सिद्धांत होता है। तो जो वैज्ञानिक जो सिद्धांत है साइलेज बनाने का, उसमें जो हमारा हरा चारा है, हरे चारे में जो हमारे जो घुलनशील जो शर्करा है जिसे हम सॉल्युबल शुगर कहते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और यह जो घुलनशील शर्करा है वो वाय रहित जो हमारा परिदृश्य है उसमें इस घुलनशील शर्करा का रूपांतरण हो जाता है जो लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया के द्वारा। जब लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया के द्वारा हमारी जो घुलनशील जो शुगर है वो परिवर्तित हो जाती है लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण जो हमारा जो पीएच का मान है जो हमारे चारे का वो काफ़ी कम हो जाता है, वो लगभग 3.8 से 4.2 के बीच पहुंच जाता है। तो जो पूरा जो वातावरण है चारे का वो अम्ली हो जाता है। जब अम्ली चारा हमारा हो जाता है तो उस दशा में जो हमारे हानिकारक जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे चारे को सड़ाते हैं वो उनकी जो वृद्धि है वो नहीं हो पाती। तो जो लैक्टिक अम्ल है वो हमारा प्रिजर्वेटिव का परिरक्षण का काम यहाँ पे हमारे चारे के लिए करता है। तो इस सिद्धांत पे हमारा साइलेज बनाया जाता है।
0: जी बिल्कुल, आपने साइलेज की बात बताई कि कैसे बनता है, तो अभी बताइए डॉक्टर साहब की साइलेज बनाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
3: सावधानियों से पहले अब हम मैं विस्तृत बताना चाहूंगा, ये तो मैंने साइलेज का सिद्धांत बताया।
1: बिल्कुल, आपने सिद्धांत बताया, हम विस्तार में जानना भी चाहेंगे क्योंकि हमारे किसान उसका फायदा उठाएं।
3: तो साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा जो मुख्य बिंदु है कि हम साइलेज बनाने के लिए हम किन फसलों का चयन करें। तो साइलेज बनाने के लिए सबसे जो उपयुक्त फसलें हैं उनमें हमारी

0: एक तो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जई है, ये मुख्य जो हमारी फसलें हैं उनका मुख्य रूप से हम साइलेज बनाने में उनका प्रयोग करते हैं। अब जब हमारा फसल का चयन हमने कर लिया जो साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त हैं, उसके बाद हमारा जो आता है कि हम फसल की कटाई कब करें।
1: जी,
0: तो जब हम इन फसलों का चयन कर लेते हैं, उसके बाद फसल की जो साइलेज बनाने के लिए जो कटाई की जो सबसे उपयुक्त स्थिति होती है, वो जब हमारी फसल में फूल आ जाए या हमारी फसल में दाने में दूधिया भर जाए, दूध भर जाए, उस अवस्था में अगर हम इन फसलों की कटाई करते हैं, तो उस समय इन फसलों में सबसे अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस अवस्था में ही हमें अपनी फसलों की कटाई करना चाहिए। विशेष ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम इन फसलों की कटाई उपयुक्त समय पर नहीं करते हैं, तो हमारा जो साइलेज बनता है वो उसकी पोषक तत्व की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। उदाहरण के रूप में अगर देखें, अगर हम इस फसलों की कटाई देर से करते हैं, जैसे फसल के पकने की अवस्था में करते हैं, तो उस समय में जो हरे चारे में जो हमारा जो नमी है वो कम हो जाती है। अगर हमारी नमी कम हो जाएगी तो हमारी जो पोषक तत्व हैं या साइलेज बनने की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी। तो इस के लिए हमें चाहिए कि हमें उपयुक्त समय पर ही फसल की कटाई करें। अब दूसरी बात आती है कि फसल की कटाई, फसल का चयन एवं कटाई के बाद इसमें एक प्रमुख चरण आता है कि जब हम हमारे किसान भाई अपने खेत से हरे चारे की कटाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी जो चारे काटने वाली जो मशीन है उससे इस इन चारों को काटते हैं। तो इसका उद्देश्य होता है कि जो जो चारे का जो हमारा जो भाग है वो 1 से 2 इंच तक काट के हम इसको तैयार करते हैं। तो जब हम अपनी फसल को चारे काटने वाली मशीन के द्वारा काट लेते हैं, तो उसके बाद जब हमारा चारे के जो हिस्से हैं वो 1 से 2 इंच के हो जाते हैं, तो हम अब हमारा तीसरा जो चरण आता है उसमें आता है कि हम साइलेज को मुख्य रूप से हम लोग साइलो पिट में बनाते हैं। ये कई तरह के हो सकते हैं, ये मिट्टी के भी हो सकते हैं, ये ईंट बालू या सीमेंट के बने हुए पिट भी हो सकते हैं, तो या जो हमारे जो मार्केट है उसमें पॉलीथीन अच्छी मिलती हैं उनका भी हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। तो इन जो साइलो हैं, जो गड्ढे हैं, उनमें जो काटे हुए जो चारे के जो टुकड़े हैं उनको हम परत दर परत बिछाते हैं। परत दर परत बिछाने के बाद इसको हम अच्छी तरह से दबाते हैं। दबाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि साइलेज जब भी बनता है, इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि इसमें हवा नहीं होनी चाहिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं होने चाहिए। अगर ऑक्सीजन रहेगी तो हानिकारक जो जीवाणु हैं वो फैलेंगे और हमारे साइलेज को खराब कर। तो ऐसी दशा में हमें परत दर परत चारे को बिछाना चाहिए और उसको अच्छी तरह से दबाना चाहिए। दबाने से क्या होता है कि जो हमारी चारे के दो टुकड़ों के बीच में जो हवा बची हुई है वो निकल जाती। तो अच्छी तरह से हम परत दर परत चारे को बिछाएं और दबाते रहें, और तब तक हम गड्ढे को भरते हैं जब तक वो जो हमारा समतल जो जमीन है उससे 1 फीट तक ऊंचाई तक न हो। तो उस प्रक्रिया को हम जारी रखते हैं। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, साइलेज जब भी बनाएं तो जो चारा भरने का जो अवधि है वो कम से कम हो। ऐसा नहीं हमारे किसान भाई साइलेज बनाना शुरू करे और लगभग साइलेज का एक गड्ढा भरने में 7 दिन ले लिए, ऐसा नहीं करना है। अधिकतम 5 दिन में पूरा गड्ढा हमारा भर जाना चाहिए। जब हमारा गड्ढा चारे की जो कटे हुए जो टुकड़े उनसे भर गया, उसके बाद हमने अच्छी तरह से उसको दबा दिया। दबाने के बाद हम उसको कवर करें। कवर के लिए पॉलीथीन शीट का प्रयोग कर सकते हैं और मिट्टी की परत भी लगा सकते हैं। तो मिट्टी की परत से अच्छी तरह से हम अपने पेट को ढक दें। तो इसकी सारी जो प्रक्रिया है इसमें जो जो आखिरी अवस्था है वो आती है किण्वन की प्रक्रिया, जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं। जब हमने गड्ढा भर दिया, उसके बाद हमने पॉलीथीन सीट से या मिट्टी से उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से उसको कवर कर दिया, उसके बाद उसमें किण्वन की प्रक्रिया स्वतः ही प्रारंभ हो जाती है। और स्वतः ये जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है, जो हरे चारे में जो पाए जाने वाले लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया हैं, वो जो चारे में पाए जाने वाली घुलनशील शर्करा है उसको लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं, और इसके परिवर्तन के कारण अम्ल बनते हैं। तो अम्ल के कारण पीएच मान काफ़ी कम हो जाता है, उसके द्वारा ये जो अम्ल है वो हमारा प्रिजर्वेटिव का काम करता है। जब प्रिजर्वेटिव का काम करेगा तो हमारा जो चारा है वो सड़ता नहीं है, और इसकी जो स्वाद कहें या इसकी जो गंध है वो मीठी और खट्टी होती है। तो इस तरह से हम किण्वन की प्रक्रिया करते हैं। तो इसमें लगभग किण्वन की प्रक्रिया में लगभग 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन के समय के बाद 45 से 60 दिन में हमारा अच्छा साइलेज बनकर तैयार हो जाता है।
1: बिल्कुल, आपने साइलेज बनाना बता दिया। तो आपने दो विधियां बताई, एक साइलेज और एक हे।
0: जी,
1: तो साइलेज की विधि होगी, आप हे के बारे में जानना चाहेंगे, वो कैसे बनेगा?
0: जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अब साइलेज के बाद हमारी दूसरी वैज्ञानिक विधि है हे विधि। तो हे विद एक सिंपल विधि है। इसमें हम लोग किसान भाई हमारे क्या करते हैं, जो हमारा हरा चारा है उसको हम सुखाकर, जिसमें नमी की मात्रा 15% से कम होती है, उस अवस्था को अगर हम हरे चारे को सुखाकर रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उस दशा को हम हे के रूप में जानते हैं। अब हे के बनाने के लिए जो मुख्य बातें हैं वो सबसे पहले आता है फसल का चुनाव और कटाई की अवस्था। तो जैसा हमने साइलेज के उसमें बताया कि साइलेज के लिए ये प्रमुख फसलें, उसी तरह हे के लिए हमारी कुछ मुख्य फसलें हैं, उनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो हे की जो पोषण की मात्रा है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा कहें या खनिज लवण की मात्रा कहें, वो अच्छी पाई जाती है। तो सबसे उपयुक्त जो फसलें हैं हे बनाने के लिए, वो हमें फलीदार फसलें लेनी चाहिए।
1: अच्छा।
0: मुख्य रूप से जो हमारी दलहनी फसलें हैं, जैसे आपका लोबिया है, सोयाबीन है, बरसीम है, लहसुन है, ये जो मुख्य हमारी फसलें हैं जो फलीदार भी हैं और जिनको हम हरे चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो इन फसलों का हमें हे बनाने के लिए चयन करना चाहिए। अगर हम इन फसलों का चयन करते हैं तो हमें जो हे जो बनकर तैयार होगी वो बहुत ही गुणवत्ता युक्त होगी, उसमें पोषण की मात्रा बहुत अत्यधिक होगी और प्रोटीन की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से हम फसलों का चयन कर लेते हैं। अब बात आती है कि हम फसल की कटाई कब करें। तो हे बनाने के लिए जो मुख्य समय होता है कि जब हमारी फसल में फूल आने की अवस्था है, वो सबसे अच्छी अवस्था होती है हे बनाने के लिए। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व फसल में होते हैं। तो उस समय हम फसल की कटाई करें। उसके बाद कटाई करने के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है कि हम फसल की कटाई के समय उसकी नमी को कैसे निकालें। तो नमी को निकालने के लिए हम अपनी फसल को अच्छी तरह से पतली परत के रूप में अपने खेत में ही धूप में अच्छी तरह से फैलाएं। अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम उसको एक दो बार पलटें भी, जिससे जो सारा संपूर्ण जो हमारा चारा है, हरा चारा है, वो सूख जाए। अब उसके बाद हमें देना है तैयार किया हुआ जो हमारा चारा है, उसमें नमी की मात्रा हमें उसमें चेक करनी है। तो उसके लिए हमें साधारण सा तरीका है कि हम एक पौधा लें इस चारे वाली फसल का और मोड़ के देखें, अगर वो टूट जाता है, इसका मतलब है कि हमारा जो हरा चारा है वो सूख गया है और उसमें नमी की मात्रा 15% से कम हो चुकी है। जब ये विधि पूर्ण हो जाती है, उसके बाद हमारा जो लास्ट चरण है वो आता है कि भंडारण का। तो हम खेत से निकाल के सूखे हुए जो हमारे जो चारा है उसको उसके बंडल बनाएं, वो बंडल बना के जो हमारा जो बायो

0: जो हमें हवादार जो कोई स्थान हो उसमें रखें, और हम ये सुनिश्चित भी करें कि वहाँ पे नमी ना आए। तो इस तरह से हम हे को बना सकते हैं और हे का प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने हे के बारे में, साइलेज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे भाइयों को दी है। तो आगे आपसे पूछना चाहेंगे कि पशुओं के लिए कैसे लाभकारी है?
0: पशुओं के लिए बहुत ही ये बहुत लाभकारी विधि है, जिसके द्वारा अगर हम पशुओं को साइलेज या हे का प्रयोग करते हैं। चूंकि हमारे जो गर्मी के महीने होते हैं उनमें मुख्य रूप से हरे चारों की जो उपलब्धता है वो हमारे पशुओं के लिए कम होती है, कम हो जाती है। तो उस समय अगर हम इन जो हमारे परिरक्षण किए हुए चारे हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहला जो लाभ है कि जो पशुओं का स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहता है। पशुओं का स्वास्थ्य इसलिए अच्छा रहता है कि परिरक्षण किए हुए चाहे साइलेज हो या हे हो, इन दोनों में जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो बनी रहती है, उपयुक्त बनी रहती है, इनका ह्रास बहुत कम होता है। तो अगर हम इन चारों को पशुओं को खिलाते हैं तो इनसे हमारे पशु का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो लाभ है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। गर्मी के मौसम में क्या होता है कि हमारे किसान भाई सूखा भूसा पशुओं को खिलाते हैं, उससे अच्छा है कि अगर हमारा जो परिरक्षित किया हुआ साइलेज या हे खिलाएं, तो निश्चित रूप से दुग्ध का जो उत्पादन है वो बढ़ता है और दुग्ध की जो उत्पादन की जो गुणवत्ता है उसमें भी बढ़ोतरी होती है।
1: जी, और पशुओं का स्वास्थ्य तो ठीक रहता है।
0: जी जी, और तीसरा जो लाभ है, पाचन में सुधार। जो भी परिरक्षित किए हुए जो हमारी जो साइलेज या हे है, इसमें जो रेशा है, जो फाइबर की मात्रा है वो अधिक होती है। जब ये फाइबर की मात्रा इन आहारों में अधिक होती है तो जो पाचन तंत्र है पशु का, मुख्य रूप से जो जो हमारे जो पशु हैं जो जुगाली करते हैं उनमें इसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। तो पाचन तंत्र पशुओं का बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा प्रजनन क्षमता भी इन हरे चारियों को परिरक्षण करके खिलाने से बढ़ जाती है। पशुपालन की सबसे बड़ी जो इसका लाभ है वो है पशुपालन की लागत। आज के मौसम में अगर हमारे जो किसान भाई हैं भारतवर्ष में, पशुओं को पालने में जो लगने वाली जो लागत है उसका 60-70% भाग आहार पर खर्च होता है। तो अगर गर्मी के मौसम में जब किसान भाइयों के पास हरे चारे की फसल नहीं है खेत में, उस समय अगर इन परिरक्षित चारों का प्रयोग करते हैं तो उस समय जो हमारे किसान भाई अनाज और जो ज़्यादा कंसर्न खल चोरी देते हैं तो उसका जो उपयोग है वो उतना नहीं करना पड़ता, जिससे पशुपालन की जो लागत है वो कम हो जाती है।
2: डॉक्टर साहब, जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके सामने चुनौतियां भी आती है, तो जैसे हरे चारे के परिरक्षण की बात हो रही है तो इसकी कौन कौन सी चुनौतियां होती है और फिर इनसे कैसे निपटा जाए?
0: जी, चुनौतियों की अगर बात करें, इसकी कोई ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं हैं। थोड़ी बहुत चुनौतियाँ ये हैं कि हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा अभाव रहता है कि बनाने की विधि कहाँ से प्राप्त करें। तो उसके लिए हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, हमारा एक संस्थान है, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे किसान भाई चारा के लिए एक हमारा एक संस्थान है, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, जो मुख्य रूप से चारा पर ही अनुसंधान करता है। उससे संपर्क करके हमारे किसान भाई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी जानकारी लेके इन चारों से परिरक्षण कर सकते हैं इन चारों का।
2: बिल्कुल, हरे चारे की परिरक्षण की क्या विधियां हैं इस विषय में देखिए। डॉक्टर ऋषिराज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इस समय आप जो है देखा जाए तो आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आप आए हो, हमारे किसान भाइयों बहनों को बहुत अच्छी जानकारी दी, जरूर इसका लाभ उठाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कुछ गीत संगीत का भी आनंद लेते हैं।
1: जी हाँ, अपने डॉक्टर साहब का भी मनोरंजन कराते हैं। आइए सुनवाते हैं मंजू शर्मा की आवाज में ये कृषि गीत।

तेरे हाथ ना में ध्वजा देश की, इसकी शाने

0: यमुना बहन, अभी हमारे भाई सुन रहे थे मंजू शर्मा की आवाज़ में ये देशभक्ति गीत।
1: और देखो बरसात का मौसम चल रहा है वंदना, ऐसे में विशेष तौर पे ध्यान देना होगा कि हमारे जो पशु हैं
0: जी,
1: अपने साथ साथ हम अपने पशुओं का भी ध्यान रखें।
0: बिल्कुल,
1: उनके उठने बैठने खाने से लेकर के हर जगह का उनका ख्याल रखना होगा।
0: बिल्कुल, देखिए जब बरसात का मौसम होता है तो घर में सीलन पैदा हो जाती है और हमारे जो पशु हैं वहीं मूत्र उनका रहता है, गोबर रहता है, तो ऐसे भी उनके नीचे बहुत गीला हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और वो बैठने में बहुत परेशानी उनको होती है और ऐसे में कीड़े भी हो जाते हैं कितनी बार उनके खुरों में,
1: खुरों में पक
0: क्यों गंदगी ज्यादा हो जाती है। तो अपने पशुओं के नीचे हरा चारा तो नहीं होता जैसे, लेकिन सूखा भूसा डाल दीजिए, राख हो वो डाल दीजिए, तो इस तरह सूखा रखें तो ज्यादा अच्छा है।
1: एक चीज और है, जो उपले होते हैं ना, उपले छोटे छोटे टुकड़े हमारे टूटे हुए पड़े रहते हैं, उन उपलों को लीजिए और थोड़ा सा नीम की पत्ती लीजिए, उसे एक बोरसी में या किसी चीज में सुलगा दीजिए हल्का सा, तो जो मच्छर लग रहा है उस मच्छर के प्रकोप से भी बचेंगे।
0: बिल्कुल,
1: मच्छर भी बहुत पनपते हैं।
0: बिल्कुल, धोते वक्त जब भी धुलाई करें तो फिनाइल का पानी यूज करें, फिनाइल का पानी यूज करेंगे तो वहाँ पे कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर ये नहीं होंगे। और आप देखते हैं कूलर वूलर इस चीज का, पंखे का भी ध्यान रखें क्योंकि मक्खी मच्छर सबको लगते हैं।
1: बिल्कुल, और सूखे का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, जहाँ भी उनको बैठना है वो सूखा होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और जब उनके खाने की बात अगर आती है तो हरा चारा वैसे तो इस टाइम पे बहुत होता है, लेकिन फिर भी खाना मतलब चारा देते वक्त ध्यान रखें कि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा इस तरह का जहरीला कीड़ा मकोड़ा ना कट जाए जो हमारे जो पशु हैं उसको दिक्कत पैदा कर जाए।
1: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि तासीर जो चीज आप खिला रहे हैं उसकी तासीर गर्म है कि ठंडी है, इसका भी विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, जिससे उनके सेहत बनी रहे, उन्हें किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ना आने पाए।
0: बिल्कुल, और पानी का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि बरसात के मौसम में पानी दूषित हो जाता है, तो खुला पानी बिल्कुल ना पिलाएं, ताजी नल से खींच के या समरसीवर से जो भी आपके घर में है तुरंत ताजी निकालें और तभी पानी पिलाएं, क्योंकि पानी का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है शरीर पे।
1: बिल्कुल, और एक संदेश भी सुनवा देते हैं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: ये तो था हमारा ये नया प्रोग्राम है जो कि अब नया शुरू हुआ है उसका ऐड, और जो हम बात कर रहे थे अपने भाइयों से अपने पशुओं के बारे में, तो उनका ध्यान आपको ऐसे ही रखना है जैसे हम अपने बड़े बुजुर्गों का रखते हैं।
1: बिल्कुल, और कार्यक्रम जो कृषि जगत है खास करके आपके लिए है, कुछ न कुछ विशेष जानकारी के साथ कल हम फिर उपस्थित होंगे
0: जी।
1: और ये भी बता दें कि कार्यक्रम का जो हमारा पता है, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नौ प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली, पिन कोड है 1100001। और जो हमारा ईमेल का पता है feedback@gmail.com।
0: तो ये तो थी जानकारी, और आपको अगर कोई भी लेटर या कोई भी सूचना अगर देनी है तो आप इस पते पर हमको लिखकर भेज सकते हैं
1: जी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं तुषार पारसर
0: और संयोजक शिवनंदन लाल। इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संचार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए गजल कव्वाली के कार्यक्रम के अंतर्गत आगाज करते हैं एक खूबसूरत गजल के साथ आज के इस कार्यक्रम का।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे इन खूबसूरत सी गज़लों का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना में लगभग 6 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया और राजधानी दिल्ली में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत राजधानी के 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अब तक 3000 से अधिक छात्राओं को निशुल्क साइकिलें पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 में पढ़ने वाली 1,40,000 से अधिक बेटियों तक ये सुविधा पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए उन्हें मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करने के लिए पूरी तरह उनके साथ खड़ी है।
9: ये साइकिल नहीं है, ये मेरी दिल्ली की बेटियों का आत्मविश्वास है। इसे दिल्ली सरकार मजबूत करना चाहती है, वो आगे बढ़े, उसके लिए हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए, उनकी हेल्थ केयर के लिए, हर वो जरूरत जो हमारी इन बेटियों की है उसे हम पूरा करना चाहते हैं।
8: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इन साइकिलों के माध्यम से छात्राओं को मदद मिलेगी और वे अपनी पढ़ाई पर अधिक समय दे पाएंगी।
10: 1,40,000 बच्चों को साइकिल बटेगी। मैंने लोकसभा के कार्यक्रम में बच्चियों को ये कहते सुना, इस साइकिल से हम ज्यादा समय पढ़ाई में दे पाएंगे। अगली बार मेहनत करके राज्य सरकार की लैपटॉप स्कीम में भी पुरस्कार पाने की कोशिश करेंगे और ये हमारा कंसिडर्ड व्यू है। हम खर्चा बच्चों को एम्पावर करने में करेंगे, फुल पेज विज्ञापन में नहीं करेंगे।
8: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू होने के 10 दिन के भीतर ही लगभग 6 लाख महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पंजीकरण दिल्ली सरकार के प्रति महिलाओं के उत्साह और भरोसे को दिखाता है। उन्होंने पिंक सहेली कार्ड योजना पर बल देते हुए कहा कि इस योजना का लाभ राजधानी की हर महिला को मिलेगा, चाहे वो मूल रूप से किसी भी राज्य की रहने वाली हो।
11: दिल्ली राज्य में रहने वाली एक एक बहन, चाहे वो किसी और राज्य की भी है परंतु दिल्ली की निवासी है, हर बहन को पिंक कार्ड मिलेगा, क्योंकि दिल्ली राज्य का पैसा, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली राज्य के लोगों की सुविधाओं के लिए ही खर्च कर सकी है। तो पिंक कार्ड लगातार बन रहे हैं और दिल्ली की हर बहन के लिए है।
8: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज एक निजी मीडिया चैनल द्वारा आयोजित शक्ति अवार्ड 2026 में शामिल हुई। इस आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा, परिश्रम और उद्यम से नई पहचान बना रही महिला उद्यमियों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की सोच को नई दिशा दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया है।

0: आरोपी मेरठ, गाजियाबाद और जयपुर से साइबर अपराध कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने नई दिल्ली में आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अब तक राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP पर इस गिरोह से संबंधित करीब 19 शिकायतें दर्ज की गई हैं। ये शिकायतें महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना और उड़ीसा सहित कई राज्यों से मिली हैं। इन मामलों में करीब 65 लाख रुपए की ठगी की गई है। छापेमारी के दौरान दिल्ली पुलिस ने 4 लैपटॉप, 2 टैबलेट, करीब 52 मोबाइल फोन, 70 डेबिट कार्ड, 145 सिम कार्ड, 6 पॉइंट सेल POS मशीन, 13 बैंक पासबुक और 4 लाख रुपए नकद बरामद किए। दिल्ली पुलिस को संदेह है कि आरोपी विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से बिना सिम कार्ड का इस्तेमाल किए बैंक खातों तक पहुंचकर लेनदेन कर रहे थे। पुलिस इस तकनीकी पहलू की आगे जांच कर रही है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को ओडिशा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेडिंग निवेश के बहाने लगभग 5 लाख की धोखाधड़ी कर चुका था। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन शस्त्र के अंतर्गत रोहिणी क्षेत्र से लगभग 41 मामले दर्ज किए हैं और 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। संवाददाताओं से बातचीत में अपर पुलिस उपायुक्त सतीश कुमार ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य अवैध हथियारों पर रोक लगाना, सड़क पर होने वाले अपराधों को कम करना और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को जेल भेजना है।
2: ऑपरेशन शस्त्र का मुख्य उद्देश्य है अवैध हथियारों पर अंकुश लगाना, सड़क अपराध को रोकना और जो भी इलीगल गतिविधियों में शामिल हैं उनको जेल के भीतर करना। टोटल हमारी जो रिकवरी है वो 15 फायरआर्म हमने रिकवर किए हैं, 10 चाकू, 26 लाइव कार्ट्रिज, 18,000 क्वार्टर इलिसिट लिकर, 15 किलोग्राम गांजा और 800 ग्राम हेरोइन। तो हमने आर्म्स एक्ट ही नहीं, एक्साइज एक्ट के तहत भी एक्शन लिया है, NDPS एक्ट और गैम्बलिंग एक्ट के तहत भी।
0: भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी दिल्ली में दिल्ली भाजपा द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। चांदनी चौक के टाउन हॉल से हौज गाजी तक निकली इस यात्रा का नेतृत्व दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने किया। इस दौरान श्री मल्होत्रा ने कहा कि तिरंगा भारत का सम्मान और गौरव है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा उन लोगों को श्रद्धांजलि और नमन है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान दे दी।
3: ये जो तिरंगा यात्रा है ये स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे शहीद हुए हैं उनके प्रति सम्मान है। मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ लोग देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद हुए, सभी शहीदों को नमन कर रहे हैं।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी के भारत मंडपम में बुधवार से आयोजित होने वाले भारत व्यापार महोत्सव के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
4: यातायात पुलिस ने लोगों से भीड़ के समय में मथुरा रोड और भैरव मार्ग का उपयोग न करने की सलाह दी है। इन मार्गों पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक गाड़ी रोकने और पार्क करने पर रोक रहेगी। यातायात पुलिस ने बताया कि वैकल्पिक मार्ग के तौर पर रिंग रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं यात्रा की योजना पहले से बना लेने और यात्रा के लिए पर्याप्त समय लेकर चलने को कहा गया है। यातायात पुलिस ने ISBT रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना उसी हिसाब से बनाने की सलाह दी है। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली देहात विकास मंच के प्रतिनिधि और NH5 भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों से मुलाकात की। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। आर्थिक कार्य विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कमांड एरिया के लिए 2574 करोड़ रुपए की एशियन डेवलपमेंट बैंक सहायता प्राप्त परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना के अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर ट्रांसमिशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों और घरों तक पानी पहुंचाने वाली व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इस अवसर पर दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि हर नल के पीछे का पूरा सिस्टम मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद हो। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के

0: अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि कई क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आप दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज शून्यकाल में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए और विधायी कार्यों में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की 19वीं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट सदन में पटल पर रखी। विशेष उल्लेख के दौरान भाजपा विधायक डॉ. अनिल गोयल ने सफाई का मुद्दा उठाया, वहीं भाजपा विधायक गजेंद्र यादव ने महरौली में अस्पताल शुरू करने का मामला उठाया। साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन ने पुराने दिल्ली के कई क्षेत्रों में लगने वाले जाम से लोगों को होने वाली परेशानी का मामला रखा। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने सदन में विपक्ष द्वारा अनुचित नारे वाले टी शर्ट पहनकर आने पर आपत्ति जताई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आप पार्टी के विधायकों को सदन की गरिमा को बनाए रखने को कहा। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह का एक प्रस्ताव लेकर आए। इस प्रस्ताव में कुलदीप कुमार, संजीव झा, जरनैल सिंह, अजय दत्त, प्रेम कुमार, सोमदत्त सहित 6 आप विधायकों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण सदन से बाहर करने को कहा गया था। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें सदन से बाहर कर दिया गया। इसी दौरान सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित भी किया गया। दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली नागरिकों का समय पर और आसानी से सेवाएं पाने का अधिकार विधेयक 2026 विधानसभा में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली वासियों को सरकारी सेवाएं तय समय सीमा में पारदर्शी और बिना अनावश्यक भागदौड़ के उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 को प्रस्तुत किया। इसके बाद दिल्ली लक्ष्मी योजना पर कई विधायकों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा सरकार को धन्यवाद देकर आभार जताया। आरकेपुरम से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने लक्ष्मी योजना पर कहा कि महिलाओं को सम्मान देना सरकार का मूल सिद्धांत है। वहीं आप पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि अधिकारियों के दबाव में ये योजना सही नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि इस योजना में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए जिससे जरूरतमंद महिलाओं को लाभ मिल सके। इसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों में भूमिका के लिए राजनीतिक नेताओं की दोष सिद्धि पर अल्पकालिक चर्चा शुरू हुई। इस मुद्दे पर अभी चर्चा जारी रहेगी। सदन की कार्यवाही को कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी आप विधानसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना में लगभग 6,00,000 महिलाओं ने पंजीकरण कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। और राजधानी दिल्ली में भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है।
3: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
2: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
4: टेंशन क्यों, मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। और आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं महालक्ष्मी के गाए इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमालिका, जिसके अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर आए चंद खूबसूरत से फिल्मी गीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार,

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री

0: बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
3: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खेयांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
4: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
5: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
6: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ. अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ. राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नृत्य निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes taxation bill to strengthen country's manufacturing.

0: उजागर किया जाएगा। पहली मर्तबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। कल हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और FIH हॉकी आलमी कप 2026 नए फॉर्मेट के साथ इस हफ्ते बाद में शुरू होगा, जिसमें क्वार्टर फाइनल मुकाबले खत्म कर दिए गए हैं। अब खबरें तफसील से। टैक्सेशन और दीगर कवानीन तरमीमी बिल 2026 राज्यसभा में गौर खोज के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है, इस तरह इस बिल को पार्लियामेंट की मंजूरी मिल चुकी है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐवान बाला में ये बिल पेश किया। बहस का जवाब देते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि टैक्सेशन और दीगर कवानीन तरमीमी बिल 2026 का मकसद भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मुस्तहकम करना, मजीद सरमायाकारी को रागिब करना, रोजगार पैदा करना और मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियों को फरोग देना है। उन्होंने वाजे किया कि यह बिल UPI सारिफिन पर किसी तरह का टैक्स या लेन देन के चार्जेस आयद नहीं करता। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि छोटे कारोबारियों और ग्राहकों को UPI पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस अदा नहीं करने होंगे। पार्लियामेंट की जानिब से बैंकरों के बही खाता शवाहिद बिल 2026 को भी मंजूरी मिल गई है। क्योंकि राज्यसभा ने भी इसे आज मंजूर कर लिया, मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बिल पेश किया, जिसका मकसद मौजूदा बैंकिंग निजाम की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को हम आहंग करना है। ये बिल बैंकरों के बही खाते और इसे हम असर डिजिटल बैंकिंग तरीक़ाकार से मुताबिकत पैदा करने के लिए शवाहिद से मुतालिक कानून फराहम करता है। बैंकरों के बही खाता शवाहिद बिल 2026 में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि बैंकरों के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल और मजाज माना जाएगा और वह कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि यह बिल इसलाह पर मबनी कदम है जो मुल्क की तेज रफ्तार पेशकदमी में मदद करेगा। उन्होंने वाजे किया कि बैंकरों के बही खाता शवाहिद कानून को 1891 में तरतीब दिया गया था, जब बैंकिंग निजाम पूरी तरह से कागज से चलता था। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि आज भारत ने अपनी मईशत को डिजिटल शक्ल देने में काबिल जिक्र तरक्की का मुजाहरा किया है। मोहतरमा सीतारमन ने मजीद कहा कि बैंकिंग और इक्तसादी लेन देन अब बड़े पैमाने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो रहे हैं, जो अक्सर मोबाइल फोन पर आसान क्लिक के जरिए काबिल रसाई हैं। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि मुल्क का कानूनी फ्रेमवर्क इस तरह तब्दील हो जो इन जदीदकारियों की रफ्तार को बरकरार रख सके। इससे पहले राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामाराई की वजह से कई मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज ऐवान की बिला रुकावट कार्रवाई के सिलसिले में तावुन के खातिर ऐवान के अरकान से जाती तौर पर एक अपील की। जनाब बिरला ने पार्लियामेंट हाउस में मुनाकिदा कारोबारी मशावरती कमेटी की मीटिंग के दौरान ये अपील की। जनाब बिरला ने ऐवान में तातुल पर अपने दुख का इजहार किया। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई चलने देने के लिए ऐवान के लीडरों से एक जज्बाती अपील की कि वो वक्फा इस सवाल की कार्रवाई चलने दें और अहम बिलों पर बहस में हिस्सा लें। जनाब बिरला ने तामीरी बहस, बामायने शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी रिवायात की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। स्पीकर मौसूफ ने सभी पार्टियों से उनके तावुन की अपील की ताकि ऐवान की कार्रवाई को बिला रुकावट और मुनज्जम तरीके से चलाया जा सके और लोगों से वाबस्ता मामलात पर एक जामे और सूदबंद बहस हो सके। उन्होंने कहा कि लोगों के मामलात के सिलसिले में इस तरह से इंतजार नहीं कराया जा सकता और उनका इस ऐवान में इजहार किया जाना चाहिए, उन पर बहस होनी चाहिए और उनका हल निकाला जाना चाहिए। PAC मीटिंग के बाद पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के हालिया एहतजाज और मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस के लिए तैयार है। इस बात की यकीन दहानी कराते हुए कि वजीर दाखिला अमित शाह हर मामले पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, जनाब रिजिजू ने कहा कि शहरियों को हकायक जानने का हक हासिल है। उन्होंने अपोजिशन पर ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने और कार्रवाई में मजीद रुकावट न डालने पर जोर दिया। जनाब रिजिजू ने अपोजिशन से ऐवान की कार्रवाई चलने देने की अपील की ताकि वजीर दाखिला अमित शाह तलबा के एहतजाज के सिलसिले में बयान दे सकें और अपोजिशन अरकान की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब दे सकें।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकता है।

0: मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
1: वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि हुकूमत पार्लियामानी बहस से कभी पीछे नहीं हटी है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि बीएसई मीटिंग के दौरान हुकूमत ने इस मामले पर जामे बहस के सिलसिले में वाजे तौर पर अपनी आमादगी जाहिर की थी। लोकसभा ने ट्रिब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में चेयरपर्सन और अराकीन की अहलियत, आज़ादी और तकरूरात और खिदमात को यकीनी बनाते हुए शफाफियत में इजाफा करना है। साथ ही इस बिल का मकसद ट्रिब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज को बेहतर बनाना है। यह कानून नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन के क्याम की भी तजवीज पेश करता है। लोकसभा में नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आरई के दौरान इस बिल को बगैर किसी बहसो मुबाहिसे के मंजूर कर लिया गया। हंगामा जारी रहने पर सदर नशी ने लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर मुमलिकत सुरेश गोपी ने मुत्तला किया है कि हुकूमत ने पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमेजिश से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया है। वजीर मौसूफ ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में ये बात कही। जनाब गोपी ने कहा कि मुस्तकबिल में एथेनॉल की आमेजिश बढ़ाने के सिलसिले में कोई भी फैसला सिर्फ तफसीली साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतालिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेल 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों से कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर मुलाकात की। बातचीत के दौरान तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने वजीर आजम के साथ खेलों के अपने तजुर्बात के बारे में बातचीत की। जनाब मोदी ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में उनकी कामयाबियों के लिए एतमाद का इजहार किया।
2: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ तलबा की जानिब से एहतजाज के तौर पर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश के सबब आज भी रांची में सूरत हाल कशीदा रही। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठी चार्ज किया। इस दौरान जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल क्यांगेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की क्यादत में हजारों तलबा ने विधानसभा की जानिब मार्च किया और कई बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक कुछ मुजाहिरीन ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी ताकत का इस्तेमाल किया। रांची सिटी के एसपी पारस राणा और एसपी रूरल गौरव गोस्वामी ने तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील की और कहा कि पुलिस ने तहम्मुल से काम लिया है। मुजाहिरीन जेएसएससी सीजीएल इम्तिहानात के ताल्लुक से सीबीआई के जरिए गैर जानबदाराना छानबीन कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान झारखंड के सीआईडी ने भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के सिलसिले में जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल क्यांगटे को गिरफ्तार किया है। दिफाई उमूर के मरकजी वजीर मुमलकत जनाब संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की नुकताचीनी की है, नीज सीबीआई और ईडी के जरिए छानबीन कराए जाने की मांग को दोहराया है। इस दौरान हजारीबाग से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनीष जायसवाल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से बात की और इस मामले की सीबीआई के जरिए जांच कराने की तलबा की मांग को दोहराया। पुलिस कार्रवाई और जेपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: इस साल 80वें यौम आज़ादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत की तामीर में नौजवान भारत के ताउन के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने को उजागर किया जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि तारीखी लाल किले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी तकरीबात की क्यादत करेंगे। वजीर आजम कौमी परचम फहराएंगे और मुल्क से खिताब करेंगे। पहली मरतबा यौम आज़ादी की तकरीबात में लाल किले की फसील से कौमी गीत गाया जाएगा। मुल्क भर में जारी हर घर तिरंगा मुहिम में नुमाया तौर पर तेजी आ रही है और ये जिंदगी के सभी शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को मुल्क के कौमी फख्र और इत्तेहाद के जज्बे का मिलकर जश्न मनाने की तरकीब दे रही है। हर घर तिरंगा मुहिम इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी और ये इस साल वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह से मुताबिकत रखती है, जिससे सभी शहरियों के लिए ये एक पुरजोश मौका बन गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सभी से इस मुहिम में जोशो खरोश के साथ शामिल होने और विकसित भारत की तामीर के सिलसिले में अपने ताउन के मजमूई अज़म का इआदा करने पर जोर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी शहरियों से इसमें शामिल होने और तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली और बड़े पैमाने पर वंदे मातरम गाकर और तिरंगा फहराकर और हर घर तिरंगा .com पर सेल्फी अपलोड करके जश्न मनाने की अपील की है। उधर जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर सभी अजला में तिरंगा यात्रा और हुब्बुल वतनी के प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आबनाए हुरमुस तब तक नहीं खुलेगी जब तक वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ अपनी बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा। तेहरान में आज हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली फौज की जारहियत की वजह से तवानाई की सप्लाई की अहम बहरी गुजरगाह आबनाए हुरमुस को बंद किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आबनाए हुरमुस का दोबारा खोला जाना अमरीका और इसराइली हुक्काम की जानिब से ईरान पर आयद की गई शराइत पर मुनहसर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश और मशरक राजस्थान में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, वस्ती, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। FIH मर्दों और खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के मुकाबलों में ढांचा जाति तब्दीली की गई है। रिवायती क्वार्टर फाइनल मरहला खत्म कर दिया गया है और दो क्रॉस ओवर पूल्स के जरिए टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बेल्जियम और नीदरलैंड मुश्तरका तौर पर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। ये टूर्नामेंट इस माह की 15 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक जारी रहेगा। नए फॉर्मेट के तहत टीमों के लिए इब्तिदा से गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी क्योंकि इब्तदाई मरहले के नतायज अगले मरहले पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। भारतीय मर्दों की टीम को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है, जबकि भारतीय खवातीन खिलाड़ी पूल डी में चीन, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों से मुकाबला करेंगे। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने, सरमायाकारी रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर टैक्सेशन बिल को मंजूर कर लिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यकीन दहानी कराई है कि UPI लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को शवाहिद की हैसियत से कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक कानून को भी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो तलबा के एहतजाज से मुतालिक मामलात पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के लिए लोकसभा की कार्रवाई चलने दे। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। तलबा ने पुलिस कार्रवाई के दरमियान रांची में असेंबली की जानिब मार्च किया। और 80वें यौम आज़ादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के ताउन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
4: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और हर इंसान की चाहत रहती है कि हंसी खुशी ये सफर यूं ही चलता रहे, लेकिन प्रकृति का ये विधान है कि एक ना एक दिन ये सफर भी पूरा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब ये सफर खत्म होगा तब क्या हमारे पीछे ऐसा कुछ रह सकता है जो किसी और हम सफर के जीवन के बुझते हुए चराग को रोशन कर दे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अंग दान की। एक ऐसा दान जो इंसान को उसकी मृत्यु के बाद भी अमर बना सकता है। भारत में हर साल लाखों लोग दोस्तों सिर्फ इसलिए समय से पहले दम तोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें कोई अंग जैसे किडनी, लिवर या हृदय नहीं।

0: अस्पतालों के गलियारों में अपनों की जिंदगी की याचना करते परिवारों की आंखें किसी चमत्कार की उम्मीद में पथरा जाती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक जिंदगी खत्म हो रही होती है और दूसरी तरफ उस पर निर्भर कई और जिंदगियां भी किसी एक अंग के न मिल पाने की वजह से कठिनाई झेलती हैं। अंगदान इसी समस्या के निवारण का एक रास्ता है, लेकिन इसे लेकर मौजूद हैं बहुत सी भ्रांतियां भी, जिनकी वजह से बहुत से इच्छुक लोग भी परोपकार के इस महान कार्य को या तो कर नहीं पाते या हिचकिचाते हैं। और ऐसी ही तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज पब्लिक स्पीक में हमने विषय तय किया है, अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से पधारे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आप दोनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
1: नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आम तौर पर जैसा कि लोगों के जहन में रहता है कि अंगदान जो है वो है तो एक बहुत ही अच्छा एक नेक कार्य है, लेकिन यदि हमारे माता पिता में से या संबंधी में से कोई एक ऐसी प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर गए हैं तो जहन में ये आता है कि अब यदि हम वो अंगदान के लिए तैयार हो भी जाते हैं तो ये नहीं पता होता कि शायद कितने समय में हम संपर्क करें और क्या हमें उनका जो शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, वो इस अवस्था में हमें मिल पाएगा कि उसे देखकर दिल को किसी तरह की ठोस ठेस ना पहुंचे और क्षत विक्षत वो स्थिति में न हो, जैसे कि आम तौर पर लोग सोचते हैं और इस वजह से फिर वो हिचकिचा जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कितना समय जो है वो आदर्श माना गया है अंगदान के लिए मृत्यु के बाद।
1: मृत्यु के बाद अंगदान के लिए आमतौर पर एक आईसीयू में जब मरीज दाखिल होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ये जांच द्वारा कि उसके मस्तिष्क की मृत्यु हो चुकी है, तो ब्रेन डेड हो उसको घोषित किया जाता है। और इसमें एक बार नहीं, दो बार परीक्षण किए जाते हैं और चार डॉक्टरों की टीम इसको सर्टिफाई करती है। तो उसके बाद ये ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेयर करने के बाद में तो उसका उसको हम मेंटेन करके रखते हैं, सपोर्ट सिस्टम को हटाते नहीं हैं। अगर परिवार अंगदान की हामी भरता है तो उसके सारे ऑर्गेन्स जो डोनेट हो सकते हैं और वो दूसरों की जिंदगियां बचा सकते हैं, उसके साथ साथ उसके टिश्यूज़ भी डोनेट हो सकते हैं। तो टिश्यूज़ जो होते हैं वो इवन नेचुरल डेथ जो होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है या घर में मृत्यु हो जाती है या आईसीयू में नहीं होती, किसी वार्ड में मृत्यु हो जाती है, तो उनमें टिश्यू जैसे कॉर्निया, स्किन है, बोन्स हैं, वो भी डोनेट हो सकते हैं। और लेकिन अंगदान आम तौर पर जब आईसीयू में मरीज की मृत्यु होती है तो उसमें 8 लोगों तक की ज़िंदगी बच सकती है, जिसमें 2 किडनीज हैं, लिवर है, हार्ट है, 2 लंग्स हैं, फेफड़े जो बोलते हैं, और इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज भी दान हो सकते हैं। तो इसमें सभी को आगे आना चाहिए, ये एक नेक मुहिम है और सभी को इससे जुड़ना चाहिए।
0: शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक श्रोता हिसार हरियाणा से, राजेंद्र।
2: नमस्कार जी मनीष जी और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी।
0: नमस्कार राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका?
2: मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथ या पैर कोई डैमेज हो जाए तो दोबारा से लगवाना चाहे तो क्या लग सकता है, और दूसरा है ये आँख दान की हुई किन लोगों को नहीं लग सकती, ये जानना था। नमस्कार जी।
0: जी, तो आपने दो तरह के प्रश्न किए, एक तो खास तौर पर नेत्र से संबंधित है तो उसका जवाब आपको देंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के जो विशेषज्ञ हैं, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा, और दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार। तो मैं पहले आपसे ये निवेदन करता हूँ डॉक्टर अनिल, कि इनकी जो ये शंका है उसका निवारण आप करें।
1: बिल्कुल, हाथ का भी दान होता है और हाथ भी प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, और हमारा देश पूरे दुनिया में हार्ट हैंड ट्रांसप्लांट के मामले में, जो हाथ का ट्रांसप्लांट है, जैसे किसी के हाथ कट गए हैं किसी दुर्घटना में, कहीं मशीन में कट गए या, तो उस तरह के सिचुएशन में भी हाथ का दान करके भी हम उनका हैंड ट्रांसप्लांट करके, और वो भी 6 घंटे के अंदर ही हमें मृत्यु के उनका हाथ का दान कर देना होता है, तो वो आराम से उनको लगा करके, और 80 से ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे देश में हैंड ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, और ये दुनिया में आंकड़ा नंबर 1 पर है भारत का जो हैंड ट्रांसप्लांट का आंकड़ा है।
3: जहाँ तक नेत्र का सवाल है, आपका सवाल ये था कि किन लोगों को नेत्रदान करने के बाद भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नेत्रदान का मतलब ये होता है कि जो कॉर्निया से रिलेटेड, जो आगे जो पुतली होती है, जो ट्रांसपेरेंट, जो पारदर्शक पुतली होती है, उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसमें जब सफ़ेदी आ जाए तो फिर लोगों को उसके कारण अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो वो जो सफ़ेद पुतली है उसे हटाकर जो ट्रांसपेरेंट डोनर कॉर्निया है उसे लगाया जाता है। जो मरीज़ जिनकी नस सूख गई हो या पर्दा ख़राब हो गया हो या फिर एक होते हैं दिमागी रूप से उनको दिखाई कम देता है जैसे कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, वैसे मरीजों को हम पुतली लगा के भी उनकी नज़र को हम वापस नहीं ला सकते।
0: तो उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और हमारे श्रोता हैं हिमाचल प्रदेश शिमला से, और हमारे श्रोता हैं राकेश। राकेश जी, क्या प्रश्न है आपका, कहिए।
4: जी जी नमस्कार, मैं राकेश कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश जी। और मेरा एक प्रश्न ये है कि जो से दिव्यांग व्यक्ति हैं या दृष्टि बाधित लोग हैं, क्या वो अंगदान के पात्र हो सकते हैं या उनको दे सकते हैं या न दे सकते, ये मेरा प्रश्न है।
0: अंगदान के पात्र हो सकते हैं क्या दिव्यांग व्यक्ति, ये इनका प्रश्न है।
1: मृत्यु उपरांत तो दिव्यांग व्यक्ति हो या दृष्टिहीन व्यक्ति हो, अगर उनके जो भी अंग जो अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और हेल्दी पाए जाते हैं तो उनको दान किया जा सकता है। जब जीवित व्यक्ति जैसे कि कुछ अंग दान कर सकते हैं, किडनी या लिवर का हिस्सा, तो उसमें उनका मेडिकली फिट होना ज़रूरी होता है, तो और वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं जो जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है कि अगर वो मेडिकली उनको फिट समझते हैं तो ही उनका दान किया जाता है। आमतौर पे दिव्यांग व्यक्तियों के अंग, क्योंकि उनके अपने आप ही एक दिक्कत है तो उनको शायद फिटनेस नहीं मिलेगी अंग दान करने के लिए, लेकिन एज सच मृत्यु उपरांत अंग दान में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है।
0: जी, तो राकेश जी का जो सवाल था दिव्यांग व्यक्तियों के विषय में, आशा है हमारे अन्य श्रोताओं को भी ये जानकारी मिल ही गई है कि वे भी कर सकते हैं, किंतु ये एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि वो स्वयं एक कठिनाई से गुजर चुके हैं। तो इस प्रकार जो स्पष्टीकरण दिया है डॉक्टर अनिल ने वो आप तक पहुँचा है। और डॉक्टर साहब, एक और बड़ा ही ख़ास एक ये स्थिति होती है कि अंग दान जो है, जहाँ तक बड़े शहरों की बात है, देश की राजधानियाँ हैं या जो महानगर हैं, वहाँ पर शायद ये बहुत सरलता से हो सकता है, लेकिन जो ऐसे व्यक्ति हैं हमारे जो दूर दराज के गांवों में कस्बों में रहते हैं, और यदि उनकी ऐसी इच्छा हो तो वो कहाँ भला फिर वो इसके लिए संपर्क करें, इस विषय में आप हमें बताइए।
1: इसमें अंग दान के लिए एक तो हम कहते हैं कि आप रजिस्टर करवा लें, तो वो प्रक्रिया डिजिटली अवेलेबल है। नोटो की वेबसाइट पे जाके आप अंग दान 1 मिनट में अपने आधार से अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके एक छोटा सा फॉर्म भरना होता है कि पेरेंट्स के डिटेल हैं, कौन से अंग और उत्तक आप दान करना चाहेंगे मृत्यु उपरांत, तो वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया मात्र 1 मिनट की है। उसको आप वेबसाइट से जाके noto.mohfw.gov.in पर आप वो फॉर्म भर सकते हैं और आधार से सत्यापित ये फॉर्म होता है। दूसरा, आप हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मैं बता देता हूँ, 1-800-114770, 1-800-11-4770। तो ये 24 घंटे चलने वाला नंबर है, कहीं से भी आप कोई अंग दान के लिए रजिस्टर करना चाहे या अंग दान करवाना चाहे तो

0: राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, उसके द्वारा हमारी टीम जो इसको मैनेज करती है वो वहीं के नज़दीक के ही अस्पताल से टीम भेज कर की मृत्यु उपरांत भी अगर आप जानकारी देते हैं तो कॉर्निया डोनेशन है होता है तो वो नज़दीक के आई बैंक से टीम जा करके कॉर्निया का दान करवा पाएगी। लेकिन आपको जानकारी सही समय पर देनी है, समय से देनी है। 6 घंटे तो मैक्सिमम टाइम हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो आपको टाइम से फ़ोन कर देना है तो आपका ये सब हो जाएगा, चाहे आप कहीं भी दूर दराज भी एरिया में भी हो तो।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में त्रिपुरा से, और आप हैं अविनाश। अविनाश, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
2: जी नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जी, मेरा सवाल यह है कि देखिए, मतलब कि जो लोग अंग दान करना चाहते हैं और उनके परिवार भी पहले राजी हो जाते हैं और अपना फॉर्म पे मतलब कि सारा सारा कुछ फिलअप कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो उस पेशेंट की मृत्यु के बाद अगर उनके परिवार फिर से नकार जाएगा, नहीं इनका अंगदान नहीं करवाएंगे, तो फिर उस वक्त हम क्या कुछ कर सकते हैं?
3: देखिए, ऐसा है कि कोई भी अंगदान अगर होना है तो जिस इंसान की मृत्यु हो गई है तो उनके जो परिवारजन हैं, जैसे उनके बच्चे या उनके लड़के
1: वारिस हैं,
3: लड़कियां या
1: उत्तराधिकारी।
3: उनके
1: जी
3: पोते पोतियां भी, वो उनका कंसेंट ज़रूरी होता है। अगर वो कंसेंट नहीं देते हैं तो उनका अंगदान नहीं हो सकता है।
1: जी तो अविनाश, उम्मीद है आपको अपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल गया है। और नेत्रदान के ही विषय में डॉक्टर राजेश, एक और सवाल अक्सर ये आता है कि कौन लोग नेत्रदान कर सकते हैं? किसी बीमारी, उम्र या अन्य कारण जिससे ग्रसित व्यक्ति, क्या ऐसा कुछ है कि वो नेत्रदान नहीं कर सकते? लेकिन आपसे हम इस प्रश्न का उत्तर लेंगे अपने श्रोता के इस प्रश्न के बाद। हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं कोल्हापुर से, महाराष्ट्र से, और आप हैं विजय कुमार साहनी। जी विजय जी, कहिए। जी प्रश्न पूछिए विजय
2: हाँ
1: जी।
2: हाँ
1: जी
2: मनीष जी नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
3: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: मैं विजय कुमार स्वामी बोल रहा हूँ, गांव बस्तवा तहसील से, जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से। मेरा मेरा सवाल यह है कि मैं अंग दान करना चाहता हूँ, इसका प्रोसीजर जरा बताइए हमें।
1: अंगदान आप करना चाहते हैं और उसका प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया क्या है ये जानना चाहते हैं।
0: हाँ, तो जैसे अभी हमने बताया पहले भी कि आप ये डिजिटल माध्यम से अंगदान के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं एडवांस में ही, क्योंकि आप अभी पूरे होशोहवास में हैं, आप अपने लिए सोच सकते हैं। तो नोटो की वेबसाइट है, मैं वेबसाइट फिर बता देता हूँ, NOTTO.MOHFW.GOV.IN, या नोटो भी लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी। तो आप इस वेबसाइट पे जा करके अपना रजिस्टर फॉर प्लेज को क्लिक करेंगे तो आपका वो अपना आधार नंबर डालेंगे तो आधार नंबर के बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल में, तो आपका मोबाइल आपके पास होना चाहिए जो आधार से लिंक्ड है और आधार नंबर आपको पता होना चाहिए। तो आपका घर का कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी इसको जानकारी रखता है वो कर पाएगा 1 मिनट का। आपके उसके बाद आपको अपने एक फॉर्म भरना है, उसमें अपने माता पिता का नाम और कौन से अंग वगैरह आप दान करेंगे और इमरजेंसी के कांटेक्ट डिटेल्स देने होते हैं। आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, आपका ई डोनर कार्ड तुरंत आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड कर सकते हैं, और 24 घंटे की आपको कोई हेल्प चाहिए वो हेल्पलाइन नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करके अंग अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो कॉलर पे वहाँ पे बैठा है वो आपका अंगदान तुरंत आपका रजिस्टर करवा देगा। तो इसमें लेकिन आप ये आप मान के चलिए कि अंग रजिस्टर करने के बाद भी अंगदान के लिए परिवार को बताना बहुत ज़रूरी है, परिवार में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही उनकी सहमति के बिना आपका अंगदान, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया, आपका अंगदान मृत्यु उपरांत नहीं हो पाएगा। तो परिवार को बताना, उनसे डिस्कस करना कि ये मेरी इच्छा है और ये उसमें सहयोग करें आपकी मृत्यु के उपरांत, तो वो फिर जब भी कॉल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे चलता है, आप उस पर कॉल करके आप ये प्रक्रिया को पूरा आपका परिवार करवा सकता है।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और आज हम बात कर रहे हैं अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा विषय पर चर्चा। और दोस्तों, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। दोस्तों, ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, श्रीकांत चाकड़े। जी श्रीकांत जी, क्या है आपका प्रश्न, कहिए।
4: हेलो
1: जी। जी
4: नमस्कार।
1: नमस्कार
4: श्रीकांत जी, चाकड़े बोल रहा हूँ मैं, पूरे महाराष्ट्र से। तो मेरा सवाल ये है कि मेरा नेत्र का ऑपरेशन हुआ है, मेरा रेटिना का, तो उसमें मेरी जो ज्योति चली गई है आंखों की, तो इसी केस में कोई यदि डोनर मिलता है तो उससे कोई फायदा हो सकता है क्या? आई डोनेट करने वाला जो है।
1: जी, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे डॉक्टर राजेश। जी जी
3: जी, ऐसा है श्रीकांत जी कि आपका, आपकी जो नज़र गई है वो पर्दे की खराबी के कारण गई है, और वो नज़र पुतली के खराबी के कारण नहीं गई है। और जो नेत्रदान होता है उस पर हम पुतली बदलते हैं, और यदि पुतली तभी बदलते हैं जब पीछे का पर्दा अगर हेल्दी है या फिर नस सूखी ना हो। तो क्योंकि आपका पर्दा, पर्दे में खराबी है और आपकी नज़र पर्दे की खराबी के कारण गई है, तो नेत्रदान करने से उसका फ़ायदा नहीं होगा, जब बल्कि आपको किसी पर्दे के स्पेशलिस्ट के पास दिखाना चाहिए और वो एक बार फिर से पर्दे का ऑपरेशन करके, उसका इलाज करके आपकी नज़र को वापस ला सकते हैं।
1: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की फ़ोन लाइंस बराबर खुली हुई हैं। हमारे नंबर हैं 0112331081 और 2371711 तथा 2371710। लेकिन इन नंबरों से पहले भूलिए नहीं 011 अवश्य लगाइए। और व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको बता देते हैं अपना, 9289094044। और हमारे एक और श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे मथुरा उत्तर प्रदेश से, चौधरी महेंद्र सिंह। जी चौधरी साहब, बताइए क्या है आपका सवाल।
5: स्टूडियो में आमंत्रित आदरणीय विशेषज्ञ महोदय, नमस्कार।
3: नमस्कार
5: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी से नेत्र दान करना चाहे और परिवार भी सहमत हो, तो ये इन्फॉर्मेशन दानकर्ता को कहाँ देनी होगी? वो टीम घर आएगी या फिर कोई न कोई उनको खबर देनी होगी? दूसरी बात ये है सर कि मृत्यु के बाद कई घंटे तक वो रोशनी बरकरार बनी रहती है।
3: जी हाँ, एक्चुअली मृत्यु के बाद जल्दी से जल्दी नेत्रदान कर देना चाहिए। जहाँ तक समय का सवाल है, पहले 6 घंटे बड़े कीमती होते हैं, उन 6 घंटों में यदि नेत्रदान कर दिया जाए तो उसका उपयोग बहुत सही तरीके से हो सकता है। और उसके बाद भी अगर मौसम अगर ठंडा हो, अगर सर्दियों का मौसम हो, तो उसमें हम 8-10 घंटे तक भी, या फिर बॉडी को अगर बर्फ़ पर लिटाया हुआ हो, ठंडे वातावरण में रखा गया हो, तो हम आगे भी 8-10 घंटे और 12 घंटे तक भी हम नेत्र को निकाल कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। और जहाँ तक इनका पहला सवाल था वो
0: कैसे खबर करें,
3: हाँ पहला सवाल ये था कि आप खबर किस कैसे करेंगे कि यदि मृत्यु हो गई हो तो। तो नियरेस्ट जो भी कलेक्शन सेंटर हो, आप जिस शहर में हैं उस शहर का जो कलेक्शन सेंटर है, जो भी कोई आई बैंक है वहाँ पर, तो आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ने जैसा नोटो का नंबर बताया था वहाँ कर सकते हैं, और एक नेशनल आई बैंक का नंबर है

0: 9999168374। तो दिल्ली NCR में यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो ये नेशनल आई बैंक के इस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे खुला रहता है, और उससे आप जानकारी दे सकते हैं और नेत्रदान कर सकते हैं।
1: श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आज का विषय है अंगदान, भ्रांतियों का निवारण और जीवन रक्षा। और हमारे साथ एक और श्रोता ठाणे महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी, कहिए क्या है आपका सवाल।
2: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे ये अंगदान का जो ये प्रोसीजर के बारे में पूछना था। जैसे कोई एक आदमी आदमी कोई मतलब मरने से पहले जो मतलब अंगदान का जो संकल्प पत्र कुछ लिख के देता है कि मेरे मरणोपरांत मुझे ये अंगदान करना है, तो इसके बाद जो रिलेटिव का जो रोल होता है, अगर वो इसमें क्या मतलब नियम है कि रिलेटिव अगर उस टाइम भी न अगर चाहेंगे कि नहीं देना है, बॉडी नहीं देनी है अंगदान के लिए, तो ये पूछना था कि रिलेटिव का इसमें क्या रोल होता है। थैंक यू।
3: देखिए, रिलेटिव का रोल हमने पहले भी बताया, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप संकल्प पत्र भरने के बाद भी जो डिजिटल प्लेज आप ले लेते हैं, आप उसमें भी दो नंबर हम लोग पूछते हैं रिश्तेदारों के, उनके नंबर भी भरवाते हैं कि आपके क्लोज रिलेटिव, तो आप उनको बताएं ज़रूर कि आपने ये संकल्प पत्र लिया है और आप चाहते हैं कि आप मृत्यु के बाद आपके अंगदान हो। तो वो रिलेटिव को अगर आप सबको बता के रखेंगे, डिस्कस करेंगे, और उनके कोई अगर डाउट है तो उसको पहले से ही उनको दूर करेंगे, तो ऐसा आमतौर पे नहीं होता कि रिलेटिव ऑब्जेक्शन करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर में अगर आपने इच्छा जाहिर की है तो हम लोग सभी एक फ़र्ज़ समझते हैं कि हमारी एक फ़र्ज़ है कि हम आपकी उस इच्छा को पूर्ण करवाएं। ये भी परिवार के लोगों का भी यही भावना रहती है, तो आप बताएं ज़रूर। ऐसा ना हो कि किसी को पता ही ना हो कि आपने प्लेज ली थी। और आपका, जैसे मैंने पहले भी राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर बताया, मैं फिर बता देता हूँ, 1800-11-4770। 24 घंटे नंबर खुला है, आप उस पर कॉल करके कोई भी जानकारी मृत्यु की भी दे सकते हैं और वो टीम आपको फैसिलिटेट करेंगी। जी
1: जी हमारे एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मोहम्मद कासिम, या जिस तरह से शायद ही लिखा है, मोहम्मद काजिम जी, कहिए क्या प्रश्न है आपका।
4: जी नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार।
4: मेरा सवाल, दो सवाल है। पहला सवाल यह है कि एक बार हमें अगर दान की मदद से अंग लगे हों तो क्या हम वो अंग डोनेट कर सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि जो अबाउटेड क्रिप्टोफॉल्मस की बीमारी है, क्या इसमें आई डोनेशन की जा सकती है?
1: जी,
0: जहाँ तक आपने कहा क्रिप्टोफ्थैल्मस की बीमारी है, तो उसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि आँख के अंदर की स्ट्रक्चर इंटैक्ट है या नहीं है और सही है या नहीं है। तो यदि किसी को ऐसा है तो उसके नेत्रदान करने से शायद बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना हो सके, क्योंकि कई बार क्रिप्टोफ्थैल्मस में पुतली भी ख़राब रहती है और उस पुतली का डोनेट करने का फ़ायदा नहीं होता है।
1: जी
3: जो
1: शुक्रिया डॉक्टर राजेश। और हमारे एक और श्रोता मध्य प्रदेश के छतरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद अहमद खान जी।
5: नमस्ते सर।
1: नमस्कार। नमस्कार।
5: सभी देशवासियों को आगामी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं सर।
0: आपको भी।
1: आपको भी।
5: जी मतलब दो छोटे छोटे सवाल, एक तो बॉडी में सर सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि क्या लिवर, तो शायद अपन लोग जीते जी कुछ पार्ट उसका डोनेट कर देते हैं, तो कितना परसेंट डोनेट कर सकते हैं, बस प्लीज बता दीजिए।
1: जी, हमारा जो देखिए आज का विषय है उससे ताल्लुक तो आपका दूसरा सवाल रखता है, लेकिन फिर भी दोनों ही सवाल आपके महत्वपूर्ण हैं, और डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपकी इस शंका का समाधान करें। डॉक्टर अनिल
3: जी, वैसे देखा जाए तो जो सॉलिड ऑर्गन है उसमें लिवर को ही सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है। वैसे जो स्किन है, टिश्यू जो पूरे बॉडी को कवर करता है, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब टिश्यू के रूप में आता है, और लीवर का कितना हिस्सा दान किया जाता है ये डिपेंड करता है कि जो लेने वाला जिसको लगना है, अगर वो कोई बड़ी शरीर वाला व्यक्ति है जिसको हाई बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है, तो लीवर का आमतौर पे एक पार्ट दिया जाता है, एक दो लोब होते हैं लीवर में, राइट लोब और लेफ्ट लोब, तो एक लोब आमतौर पे दिया जाता है या तो राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट राइट का बड़ा होता है और लेफ्ट का छोटा होता है, तो लेफ्ट होता है आमतौर पे 30-40% और राइट होता है 50-70% तक। तो अगर जिसको बड़े वॉल्यूम की ज़रूरत है मरीज को, तो उसको राइट लोब लगा दिया जाता है, और जिसको छोटे वॉल्यूम से भी काम चल जाएगा, लीन एंड थिन कम वेट का रेसिपिएंट है पेशेंट लेने वाला है, तो उसको लेफ्ट लोब लगा दिया जाता है। तो आमतौर पे एक लोब लगता है, या तो राइट या लेफ्ट लोब।
1: जी, और हमारे जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उनको हम बता दें कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9289094044, और आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और डॉक्टर राजेश, जैसे कि आपसे मैं एक सवाल कर रहा था जो हमारे श्रोता जब हमसे बात करने लगे तो वो शायद बीच में छूट गया, कि कई बार ये शंका जाहिर करते हैं कि लोग अगर इच्छुक होने पर भी क्या वो नेत्रदान कर सकते हैं अगर उन्होंने कैटरेक्ट की सर्जरी जो है वो करा ली है या ज़्यादा नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो उनकी इच्छा है तो क्या वो इस पुण्य कार्य में सहभागी हो सकते हैं?
0: जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद पुतली बिल्कुल ठीक है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, और चाहे चश्मा लगाते हों, कितना भी बड़ा नंबर हो उससे मतलब नहीं है, पुतली स्वस्थ होनी चाहिए, कॉर्निया हेल्दी होनी चाहिए, और ये सारे लोग जिन्होंने जो भी ये इस तरह का ऑपरेशन कराया हुआ है, यदि उनकी पुतली ठीक है तो वो कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं।
1: जी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं आज हमसे जुड़े और उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान वो हुआ, लेकिन फिर भी एक बहुत अहम सवाल दिल में ये आता है कि इतना जो पुण्य कार्य करते हैं लोग जो अंगदान का, क्या उनके प्रोत्साहन के लिए भी डॉक्टर अनिल किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है?
3: भारत सरकार के जो कार्यक्रम, एक राष्ट्रीय अंग कार्यक्रम, अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें हम लोग उनके एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत सरकार की तरफ से एक राशि दी जाती है, और आजकल और उनको एक ये प्रावधान है कि उनकी बॉडी को बहुत रेस्पेक्टफुली हम लोग हैंडओवर करें, और उसमें उनके हैंडओवर करने के लिए हम लोग उसको एक शॉल या एक बुके ऑफ फ्लावर या एक सर्टिफिकेट भी दे आता है उनको अंगदान की इस नेक मुहिम के लिए आगे आने।
1: धन्यवाद डॉक्टर अनिल। और दोस्तों, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का। हम अपने श्रोताओं के आभारी हैं जिन्होंने फ़ोन लाइंस और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हमारे साथ थे राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सिन्हा। स्टूडियो में आने के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए मुझे
3: धन्यवाद
1: शर्मा को। नमस्कार।
3: नमस्कार।
6: आकाशवाणी है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
7: माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी,
8: क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 226, डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
9: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 2400 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है, और ग इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा

0: देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गारू
2: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इंडियाज पावर सेक्टर हैज अंडरगॉन हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन विद ए स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एंश्योरिंग अफोर्डेबल रिलायबल एंड सस्टेन इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी ईयर एंड ड्यू टू मोदी जी गवर्नमेंट्स पॉलिसीज स्टेट्स लाइक तेलंगाना हैज विटनेस रैपिड ग्रोथ इन इंडस्ट्रीज डेटा सेंटर्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड सर विच हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी इंक्लूडिंग डिसेंट्रलाइज्ड एंड एग्रीकल्चरल सोलराइजेशन सर थ्रू यू आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू एक्सप्लेन हाउ द प्रपोज्ड रिफॉर्म्स विल एनकरेज ग्रेटर अडॉप्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी बैटरी एनर्जी स्टोरेज एंड स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन स्टेट्स लाइक तेलंगाना while ensuring the financial sustainability of discoms. Thank you, sir.
0: श्री मनोहर लाल, विद्युत मंत्री।
3: सभापति महोदय, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 इसको तैयार करने में डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस इसमें भी सेल्फ सेल करने का प्रावधान रखा गया है। को लोकेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हो अथवा पंप स्टोरेज के हो, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है, अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको सुधारने के लिए पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज सिस्टम, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी, बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस्ड प्रोत्साहन को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है, ये फाइनलाइज करने के राह पर है और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट इसके बारे में पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है, डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है चाहे डाटा सेंटर्स हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है, इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग।

0: इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया जा सके। माननीय डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी एक कंसर्न है। सभी डिस्कॉम्स ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम्स का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम्स घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर उसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के संरक्षण को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना या पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई हैं। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम इसके ऊपर डाला जाएगा, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी, इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। तो माननीय, ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है, और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली ये भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको लागू किया है तो वो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है, कोई आएगा तो अच्छा है। स्टेट्स इसके लिए इंसेंटिव की स्कीम बना रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना का जहां तक विषय है, तेलंगाना पीएम कुसुम के टोटल 1797 मेगावाट में से 84 मेगावाट अभी उन्होंने कंपोनेंट ए में उपयोग किया है। तो ये तेलंगाना के नाते से इस प्रश्न का जैसे मैंने उत्तर दिया, इसको स्टेक होल्डर इनपुट पर ध्यान करके ड्यू कंसल्टेशन के बाद फाइनल पॉलिसी नोटिफाई की जाएगी।
1: नाउ द सेकेंड सप्लीमेंट्री सतरम सिंह सांडू जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र साहब। मैं आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9,600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा, और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद
0: सभापति महोदय। ये विषय जो कि पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती है प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रखकर के ध्यान में रखकर के बनाती हैं।

0: फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है। तो पंजाब के डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता REC से PFC से थी, लेकिन REC PFC एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम्स या पंजाब की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है। आगे न बढ़ने के कारण से, स्टेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्वक सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा प्रयोग करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिक्विटी पाई गई, उस एम्बिक्विटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 18 अगस्त को एक डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा, इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए, इसमें दिक्कत नहीं।
1: श्रीमान विजय चंदाकालिया जी, श्रीमान विजय चंदाकालिया जी,
2: धन्यवाद चेयरमैन जी। सर, पूर्णिमा का ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, सर दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन आई एम विटनेसिंग दिस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन आवर ओन डिस्ट्रिक्ट। सर, द प्रोजेक्ट एनविसेजेस एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 1.85 लाख करोड़, including 20 gigawatt of renewable energy capacity, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. Sir, my question here is, I want to ask the Honorable Minister if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the Central Transmission Utility, and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity or future expansion, sir.
1: Honorable Minister.
0: Sabhapati Mahoday, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो ने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूं बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन्स की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम ROW का जो फैक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की हैं। और नई गाइडलाइन, मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइन जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहां की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दे देंगे।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रोफेसर मनोज कुमार झा। सो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
3: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है, या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज

0: बात रखने का मौका मिला है, सादर प्रणाम।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है, और आज भी हमारी तैयारी है कि 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है। अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष भी 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहें ना कहें, लेकिन पावर सफिशिएंट हम अपने देश के अंदर हैं। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर काज ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है, और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है, कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो ये स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो उसका हम जवाब देंगे।
3: हाउस विल मीट अगेन एट 2 PM।
4: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए आप सुनिए कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज आप सुनेंगे राजलक्ष्मी आहूजा की आवाज़ में गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसके अंतर्गत आज आपने राजलक्ष्मी आहूजा की कुछ गजलें सुनी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम राग रंजन। इसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज सुनेंगे डॉक्टर भूपेंद्र मल्होत्रा का राग मालकौंस में गायन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग रंजन, जिसके अंतर्गत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज आपने सुना डॉक्टर भूपेंद्र मल्होत्रा का राग मालकॉन्स में गायन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही देर में आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्य

0: देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
2: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities. She said, the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
5: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI एंड सर्विस

0: Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee BAC meeting held at Parliament House. He said, "The people's issues cannot be left waiting in the corridors and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this House." Speaking to reporters at the Parliament premises after the BAC meeting, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready for a detailed discussion in Parliament regarding the recent student protests and related issues. Mr. Rijiju appealed to the opposition to allow the House to function so that Union Home Minister Amit Shah can make a statement about the students' protest and address all concerns raised by the opposition members. In Jharkhand, protests have intensified over alleged irregularities in recruitment examinations after clashes between students and police during assembly march in Ranchi. Thousands of aspirants led by the JPSC-JSSC reforms march marched towards the Vidhan Sabha and attempted to cross several barricades, following which police used water cannons and tear gas. The protesters are demanding an independent CBI probe into the JSSC-CGL examination and comprehensive reforms in the JPSC-JSSC examination system. The 80th Independence Day celebrations this year will highlight Yuva Shakti and the contribution of young India towards building a Viksit Bharat by 2047, along with the commemoration of 150 years of the national song Vande Mataram. Briefing media in New Delhi today, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh said the celebrations will be led by Prime Minister Narendra Modi from the historic Red Fort. The Prime Minister will unfurl the national flag and address the nation. For the first time, the national song will be sung from the ramparts of the Red Fort during the Independence Day ceremony. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country, inspiring citizens from all walks of life to come together in a collective celebration of India's national pride and a spirit of unity. The movement, which will continue till 17th of this month, coincides with the 150th anniversary of national song Vande Mataram this year, making the occasion even more heart-stirring for every patriot. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. 47 people were killed and dozens of buildings collapsed in cities across western Colombia today after a powerful 7.4 magnitude earthquake struck. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं और इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत। हाजिर हैं आपके दो दोस्त, आज मैं हूं आपके साथ सविता और मेरे साथ हैं
2: मैं हूं आपकी दोस्त वंदना।
1: और वंदना, जैसे कि अगर देखा जाए तो माहौल बड़ा ही खुशनुमा सा है, बड़ा ही खूबसूरत सा है। जहाँ बारिश हो रही है वहाँ, जहाँ मुसीबतें नहीं हैं खासकर, वहाँ बारिश अच्छी भी लग रही है। लेकिन कई कई जगहों पर बारिश जो है वो कई सारी मुसीबतें भी लेकर आई है। लेकिन फिर भी इंसान की एक फितरत रही है कि वो हर तरह की परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है
2: और खुश भी हो जाता है सोचकर कि चलिए धरती की भी प्यास बुझ रही है और प्रकृति को भी जो है हरा भरा देखने का उसे मौका मिल रहा है।
1: और कभी कभार वो शायद इस वजह से भी खुश हो जाता है क्योंकि ईश्वर ने इंसान को इस तरह से बनाया है कि जैसी भी परिस्थिति हो उसके मन में एक बार ये जरूर आता है कि ये समय भी गुजर जाएगा।
2: बहुत बढ़िया।
1: और इसी वजह से कई बार हम कोशिश करते हैं कि कहीं जाना है या कोई काम करना है, उस काम को कर लें। लेकिन जब कभी लगता है कि कहीं पर हम अटक रहे हैं, कहीं रुक गए हैं, कहीं धीमी गति हो गई है, तो लगता है कि ये समय निकल जाएगा और तब एक बार फिर से हमारा जो काम है या हमें जहाँ पहुँचना है वहाँ तो हम गति पकड़ लेंगे।
2: बिल्कुल ठीक कहा। और गति तो हम भी पकड़ेंगे तुम्हारे साथ सविता, और म्यूजिकल गति हो जाए तो वही बात ही क्या।
1: बिल्कुल। और म्यूजिकल गति में चलिए, इससे जो इस ये जो हमारा कारवा है इसको गतिमान करते हैं बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर।

0: बिल्कुल सही कहा, आपका रास्ता हम देख रहे हैं और वंदना कहीं ना कहीं हमारे जो साथी जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी हमारा रास्ता देख रहे हैं, और शायद एक ऐसी बात टोह रहे थे हमारे रेगुलर लिसनर हैं ये चंडीगढ़ सिटी से, विमला अनेजा और सतीश अनेजा जी। ऐसा लगा जैसे ही हमने प्रोग्राम को शुरू किया है और तभी की तभी इनका मैसेज आ गया है।
1: बहुत खूब, और वाकई यही कहते हैं ना सविता, कि जो हमारे चिर परिचित लिसनर्स जिन्हें हम कहते हैं कि भाई देखो बस उन्हें एक इशारा भर दो और वो साथ आ जाते हैं।
0: हाँ, गांव परासे हिसार से भी हमें संदेशा मिला है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का, और कह रहे हैं कि किसी भी गीत में हमारे को शामिल कर लीजिएगा बस से। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत से ये आसिफ अली खान और मुस्कान आसिफ का भी हमें संदेशा मिला है। संदेशा मिला है नरिन नेताम और कुसुम नेताम का, जो कि हमें पथरिया छत्तीसगढ़ से संदेशा भेज रहे हैं। ये जलालाबाद वेस्ट से संदेशा आया है सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी, निमित अहूजा का। संदेशे के साथ जुड़े हुए हमारे साथ बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी साधना और सुमित कुमार दामोदर। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से संदेशा मिला है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का। तो वहीं कालका जी से हैं शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। ये संदेशा हमारे पास आया है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर से। जी हाँ, वंदना बिल्कुल हमारे साथ ही बैठी हुई है, और इन्हीं के नगर से संदेशा आया है इंदौर मध्य प्रदेश से। नारायण खर्चे, ललिता, कार्तिक, संजना और पूरा खर्चे परिवार हमारे कार्यक्रम को सुन रहा है। स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू चौधरी और देविका चौधरी, और कह रहे कि हमें भी किसी भी फिल्म के गीत में शामिल कर लीजिएगा। तो चलिए, अगला जो गीत हम लेकर आए हैं वो आप सभी के लिए रहेगा, और आप सभी ने जो संदेश भेजे हैं वो हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं, और हमें अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताज मोहम्मद

0: अधिकारी गुलाम साबिर रही और महराज जहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। भाई अगर बात आई है उत्तराखंड और हरिद्वार की, तो इस समय तो हरिद्वार में बड़ा ही जो है जोशो खरीश से काम चल रहा है, क्योंकि कल जो है वो शिवरात्रि है और शिवरात्रि पर इस धाम का एक विशेष महत्व बन जाता है।
1: और गंगा जी भी जो है इस समय खुश हैं, चाहे कहो कि शिव जी की जटा से निकली और वो बहुत ही उग्र रूप से बहती हुई भी देखी जा रही है वहाँ।
0: लेकिन श्रद्धालु जैसे जिस भक्ति भाव से वहाँ पहुँच रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से शांति और प्रेम के साथ, उत्साह और उमंग के साथ अपने त्योहारों को मनाते चलिए और हमारे कार्यक्रम के साथ यूं ही जुड़े रहिए। फिलहाल अगला गीत लेकर आ रहे हैं कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है, बहुत समय पहले शायद आपने सुना होगा, और गीत है फिल्म सैनिक से।

0: जी हाँ, कभी कभार जो दिल की ख्वाहिशें होती हैं वो शब्दों के जरिए जब बयां कर दी जाती हैं तो वो ख्वाहिश कुछ अलग ही महत्व रख लेती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कह नहीं पाते हैं, और जब वो शब्द दोहराती हैं तो वाकई उस बात का अपना अलग ही प्रभाव रहता है।
1: बिल्कुल सही कहा सविता तुमने। और कुछ हसरतें और कुछ बातें ऐसी जो दिल तो कहना चाहता था लेकिन शायद माकूल समय नहीं आया। तो जब भी लगे कि वो वक्त आ गया है तो मुझे लगता है कि बिना किसी देरी के ना और इंतज़ार किए आपको वो बात सामने वाले के पास जो है पहुंचा देनी चाहिए, रख देनी चाहिए, क्योंकि वक्त का कुछ भरोसा नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा, और इसी बात पर हम अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं।

0: मिथुन की आवाज़ में ये सनमरी फिल्म का टाइटल ट्रैक और बहुत ही खूबसूरत, जब किसी का इंतज़ार कर रहे हो और इतनी खूबसूरती से उसे अल्फाजों में बयां किया जा रहा हो तो भाई क्या बात है। मन करता है कि ऐसा इंतज़ार हमारे लिए भी कोई करे और हम भी किसी का कर ले। फिलहाल तो इंतज़ार बंदरा हमारे ये दोस्त कर रहे हैं जो कि संदेशों के साथ हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। संदेशा हम ले रहे हैं, जो संदेशा हम तक पहुंचा है ये पहुंचा है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया और गीता रानी जाजूरिया का, गगनदीप जाजूरिया, ये पूरा परिवार हमारे कार्यक्रम को सुन रहा है। दिलावर खान का संदेशा हमें दिल्ली से मिला है, तो मोहम्मद कमर का संदेशा ये हमें हरियाणा से मिला है। किशन सपकाल जो कि शास्त्री नगर बीड शहर से संदेशा भेज रहे हैं, तो अनिल मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और बड़े दिनों के बाद इनसे मिलना हुआ है। ये पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से संदेशा भेज रहे हैं, अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का संदेशा। गुरमीत सिंह जी का हमारे पास संदेश आया है, इस वक्त साउथ अफ्रीका में ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ। भाई क्या बात है, मतलब इतनी दूर से भी आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, ये बहुत अच्छा लगा है। गुरमीत सिंह मीता केप टाउन साउथ अफ्रीका से हमें संदेशा भेज रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा भी वंदना हौसला अफजाई हो जाता है जब
1: बिल्कुल
0: हमारे ये दोस्त
1: बिल्कुल,
0: हमारे साथ जुड़
1: सात
0: जाते हैं।
1: समंदर पार से जब कोई संदेशा आता है तो यकीन मानिए हमें बहुत खुशी होती है।
0: संदेशे के साथ ये हैं हमारे नवी हसन साहब जी जो कि अपने परिवार के साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं हाजी मजहर और संजय साहू पोटिया कला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ ही पूरा परिवार है। तो साथ हैं ये मल्होत्रा, टी डी मल्होत्रा जो हमारे साथ जुड़े हैं, इनका संदेशा हमने पहले भी कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। तो सोमदत्त जी

जो कि पटियाला पंजाब से संदेशा भेज रहे हैं। इनके साथ हैं कैरव ज्योति रानी, गुरमीत कौर, और ये कहने कि किसी भी गीत में बस हमारा नाम शामिल कर लीजिए। शामिल कर लिया है आपके नाम को। और कुछ और नाम हमारे पास आए हैं, ये है नारायण खर्चे जी का, इनका संदेशा हमने पहले ही कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। प्रकाश वर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये श्रीकांत जोशी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, जो कि महाराष्ट्र से हमें संदेशा भेज रहे हैं। संदेश के साथ रेणु तंवर जुड़ी हुई हैं और कह रहे हैं कि गाना आप कोई भी सुनवा दीजिए कि हमें पसंद आ रहा है, लिखकर भेजा है ये अयाना ने, जो कि हमें संदेशा भेज रही है दिल्ली से। बोधराज खोरवाल जी का भी संदेशा हम तक पहुंचा है, ये परिवार के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं। बसंत कुमार सिन्हा, इसके अलावा नासिर शेख भी हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। फिलहाल जैसा कि कहा हमने कि गीत हम आपके लिए एक से एक चुनकर लेकर आए हैं, तो वंदना बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की आवाज़ों में गाए फिल्म ताल के इस गीत के साथ ही अब कार्यक्रम फिल्म संगीत को भी संपन्न करने का वक्त हो चला है। तो अब इस कार्यक्रम से यानी मुझे सविता को लेनी होगी विदा, लेकिन आपको कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय मध्यरात्रि के 12 बजने को हैं। अब इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, शुभरात्रि। लेकिन AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण अब भी जारी हैं। रात्रि के 12 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
3: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके।

0: और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने 11 अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को अधिसूचित किया है। इससे ई वीजा धारक विदेशी नागरिक भारत में प्रवेश कर सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं, जिनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि नए बंदरगाहों को शामिल किए जाने से इलेक्ट्रॉनिक वीजा की उपयोगिता में वृद्धि होगी। मंत्रालय ने बताया कि भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से कम समय में स्वीकृति दे दी जाती है। नए बंदरगाहों को शामिल किए जाने के साथ भारत में ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों को प्रवेश की सुविधा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की कुल संख्या बढ़कर 88 हो गई है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्ण लाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों, पुलिस अधिकारियों के साथ साथ नागरिकों ने भाग लिया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था, जिसे बड़ी संख्या में उत्साहित विद्यार्थियों ने पकड़ रखा था। रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2019-20 सीरीज 9 और 2020-21 सीरीज 5 को समय से पहले भुनाए जाने के मूल्य की घोषणा कर दी है। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
2: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
1: The Parliament also passed the Banker's Book Evidence Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the House and participate in the discussion on key bills. Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee BAC meeting held at Parliament House yesterday. He said the people's issues cannot be left waiting in the corridors and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this house. Speaking to reporters at the parliament premises after the BSE meeting, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready for a detailed discussion in parliament regarding the recent student protests and related issues. Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi has informed that no decision has been taken by the government to increase ethanol blending with petrol

जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल, और ये वक्त है कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का, और मैं संजय सावर्ण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, हालांकि अब तक तो मैंने बताया नहीं कि आज हम किस कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इस गीत को सुनने के बाद आप सबों ने कुछ न कुछ अंदाजा तो जरूर लगा लिया होगा। जी हाँ, आज हम जिस महान कलाकार के बारे में बात करने वाले हैं, उनका नाम है येसुदास। जी हाँ, सही सुना आपने। क्या आपको पता है कि येसुदास का पूरा नाम क्या था? शायद आप सबको मालूम ना हो सकता है कुछ लोगों को मालूम भी हो, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं होगा उनको मैं बता दूं कि येसुदास का पूरा नाम था डॉक्टर कट्टासेरी जोसेफ येसुदास। जी हाँ, ये नाम थोड़ा सा लंबा है ना, इसलिए इसको याद रखना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन येसुदास कितना प्यारा सा नाम है। और सिर्फ इनका नाम ही प्यारा नहीं था, इनकी आवाज़ भी उतनी ही खूबसूरत थी नहीं है हम कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने अमर गीतों के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। तो चलिए, येसुदास के बारे में और भी कई बातों को जानेंगे, उनके जीवन को टटोलेंगे, किस तरह से उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया, उन्होंने अपने करियर के दौरान कितने गीत गाए, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, और आज बात हो रही है येसुदास की, जो भारतीय संगीत जगत के उन अनमोल रत्नों में से हैं जिनकी आवाज को गाना गंधर्व की उपाधि दी गई। गाना गंधर्व यानी दिव्य गायक। येसुदास का जो फिल्मी करियर था वो 6 दशकों से भी ज्यादा लंबा रहा, और उन्होंने भारतीय भाषाओं में यानी हिंदी समेत अन्य भाषाओं में भी 50,000 से भी ज्यादा गीत गाए।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शुरू का सफ़रनामा। वक्त हो चला है 12:26 और 2 सेकेंड। बातें हो रही है येसुदास की, जिनका जन्म 10 जनवरी 1940 को कोच्चि केरल के एक लैटिन कैथोलिक ईसाई परिवार में हुआ था। उनके पिता ऑगस्टिन जोसेफ खुद एक प्रसिद्ध मलयालम रंगमंच कलाकार और संगीतकार थे, और संगीत उन्हें विरासत में ही मिली थी, यानी संगीत उनके खून में था, और इसने किस कदर जादू बिखेरा ये हम सब आज जानते हैं, और ये बात हम सबके सामने है।

जी हाँ दोस्तों, येसुदास की बात हो रही है। कार्यक्रम चल रहा है सुरों का सफरनामा और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संजय सावण। हमने बात की कि उनके पिता जो थे वो भी रंगमंच के कलाकार थे और जो कला की बात होती है वो उनके खून में था। उन्होंने पिता से संगीत की शुरुआती पाठ सीखने के बाद तिरुनाथमपुरम में KLV म्यूजिक अकादमी से संगीत की औपचारिक शिक्षा हासिल की। इसके बाद उन्होंने तिरुवनंतपुरम के प्रसिद्ध स्वाति तिरुनल म्यूजिक कॉलेज में दाखिला लिया और महान संगीतकार चिम्बई बैद्यनाथ भगावतार के सानिध्य में कर्नाटक संगीत की बारीकियां सीखी। यानी पिता से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद उन्होंने संगीत अकादमी में एडमिशन लिया और फिर वहां खुद को अच्छी तरह से पॉलिश किया और उसके बाद उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। लेकिन किस तरह से उन्होंने अपने संगीत में सफर की शुरुआत की ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए ये बेहद खूबसूरत गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और बातें हो रही है येसु दास की। येसु दास ने अपने पेशेवर गायन करियर की शुरुआत 19 नवंबर 2061 को मलयालम फिल्म काल पादुकल से की थी। मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा में उन्होंने हजारों सदाबहार गीत गाए। संगीत निर्देशक M.S. विश्वनाथ, इलैया राजा और A.R. रहमान के साथ उनकी जुगलबंदी सबसे ज्यादा सफल रही। ये तो बात रही कि साउथ में उन्होंने किस तरह से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन हिंदी सिनेमा जगत में उन्होंने कब से गाना शुरू किया और वो कौन से संगीतकार थे जो उनको सबसे पहले हिंदी सिनेमा जगत में लेकर आए और उन्हें गाने का मौका दिया, और इसके बाद येसुदास ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं येसुदास की आवाज में ये बेहद खूबसूरत गीत।

येसुदास ने 1961 में साउथ की फिल्मों में अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें हिंदी फिल्म जगत में आने में पूरे 9 साल लग गए। उसके बाद जी हां 1970 में उनकी मखमली आवाज से प्रभावित होकर संगीतकार रविंद्र जैन उन्हें हिंदी सिनेमा में लेकर आए। येसुदास की साफ और मधुर आवाज ने उत्तर भारत के लोगों का भी दिल बखूबी से जीता और उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहद खूबसूरत गीत गाए, जिसमें गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, जब दीप जले आना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके, सुरमई अखियों में, का करू सजनी, आए न बालम, और ये ऐसे गीत हैं जो आज भी कालजयी हैं। आप इन गीतों को जब भी सुने ये पुरसुकून देते हैं, मन को सुकून पहुंचाते हैं, और येसुदास की मखमली आवाज के क्या कहने।

श्रोताओं, येसुदास ने हिंदी फिल्मों में एक से बढ़कर एक गीत गाए जो आज भी बेहद कर्णप्रिय हैं, लेकिन उनके नाम एक बहुत ही गजब का रिकॉर्ड है जो आज तक किसी भी कलाकार यानी सिंगर नहीं बना पाए। जी हां, उन्होंने एक दिन में 16 गाने वो भी विभिन्न भाषाओं में गाए, और एक दिन में 16 विभिन्न भाषाओं में गाना गाने वाले वो दुनिया के पहले कलाकार हैं, और ये एक तरह से कहें रिकॉर्ड उनके नाम पर दर्ज है। यानी ये जाहिर करता है कि वो कितने कमाल के फनकार थे, कलाकार थे, जो सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी उतनी ही बखूबी और शिद्दत से गाना गाते थे जिस तरह से हिंदी फिल्मों के उन्होंने गीत गाए।

आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। बातें हो रही है येसुदास की और अब ये कार्यक्रम अपने आखिरी पड़ाव पर है। जी हां, येसुदास ने एक से बढ़कर एक गीत कई भाषाओं में गाए। जी हां, उन्होंने 50,000 से भी ज्यादा गीत कई भाषाओं में मिलाकर गाए और जहां तक पुरस्कार का सवाल है तो 8 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का नेशनल अवार्ड मिला, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड को आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। इसके अलावा 1975 में उन्हें पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2017 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। और जहां तक राज्य पुरस्कार का सवाल है तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उन्हें 25 से अधिक राज्य फिल्म पुरस्कार भी हासिल हुए। कहते हैं कि किसी भी कलाकार के लिए उसकी उपलब्धि उसके गानों से जाहिर होती है, लेकिन ये उपलब्धियां भी अपने आप में कम नहीं है, जो जाहिर करती है कि वो कितने सफल कलाकार थे। क्योंकि यूं ही किसी को कोई भी पुरस्कार या यूं ही किसी को कोई पद्म पुरस्कार नहीं दे दिया जाता। येसुदास ने ये सभी हासिल किया अपनी आवाज के दम पर, अपनी आवाज के बदौलत, और आज भी अपनी आवाज के दम पर वो हम सबके दिलों में राज कर रहे हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त संध्या सावंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। रात्रि के 1 बजने को है, आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में UPI उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को UPI पर MDR शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
2: The bill, among various other things that it wants to do,
3: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
1: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
4: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके।

सके। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि शिक्षा अनुसंधान और व्यवहारिक प्रशिक्षण को मजबूत करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की कृषि रणनीति के तीन प्रमुख लक्ष्य खाद्य सुरक्षा, पोषण और किसानों की आजीविका हैं। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के छात्रों की छात्रवृत्ति और फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि छात्रवृत्ति सीधे और समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। भारतीय और अमरीकी नौसेना विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कल कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। यह अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण टीमों के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना तथा व्यावसायिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
2: The bill, among various other things that it wants to do.
3: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था, जिसे बड़ी संख्या में उत्साहित विद्यार्थियों ने पकड़ रखा था। रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स 2019-20 सीरीज 9 और 2020-21 सीरीज 5 को समय से पहले भुनाए जाने के मूल्य की घोषणा कर दी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेल्स एसोसिएशन लिमिटेड के पिछले 3 कारोबारी दिनों में सोने के औसत मूल्य के आधार पर भुनाए जाने की कीमत 14,957 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है। दक्षिण अमरीकी देश कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप में 47 लोगों की मौत होने और दर्जनों इमारतें ढहने की खबर है। मलबे में दबने से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के कारण लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, यहां तक कि राजधानी बोगोटा में भी लोग घरों से बाहर निकल आए। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण और कोलंबिया की संबंधित एजेंसी ने कहा कि भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 250 मील पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होजे डेल पालमार में था, जहां लगभग 4,800 लोग रहते हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। ये प्रतियोगिता 15-30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies, procuring data services from specified data centers in India, and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users. The parliament also passed the Bankers Books Evidence Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the House and participate in the discussion on the key bills. Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee meeting held at Parliament House yesterday. He said the people's issues cannot be left waiting in the corridors and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this House. Speaking to reporters at the Parliament premises after the BAC meeting, Union Parliamentary Minister Kiran Rijiju said the government is ready for a detailed discussion in Parliament regarding the recent student protests and related issues. Indian Council of Medical Research is organizing a two-day second edition of SHINE, which is Science, Health and Innovation for Next Gen Explorers, a nationwide school outreach initiative from today. The two-day program will be hosted across 83 locations nationwide, providing school students with an opportunity to engage with students, explore scientific research and experience the world of health and innovation firsthand. The Director General of ICMR, Dr. Rajiv Behl, encouraged them to make the most of the opportunity to interact with scientists, explore research laboratories, and experience the world of health and innovation firsthand. The Health and Family Welfare Ministry informed that the initiative invites students of grades 9 to 12 to apply scientific thinking to real-world public health challenges. The initiative aims to encourage scientific curiosity for public health solutions among young learners. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that Government E-Marketplace, GEM, reflects the procurement of the right product of the right quality, at the right price, at the right time. The minister said this while speaking at the celebration of 10 years of GEM in New Delhi. Mr. Goyal recalled that prior to the introduction of GEM, public money was being misused, procurement was non-transparent and lacked good governance. He underlined that today procurement is being carried out through a public procurement e-commerce platform where transparency, competitiveness and strong standards are being maintained before registration. Mr. Goyal said that cumulatively GEM has helped in the procurement of over 20 lakh crore rupees worth of goods and services through the port.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 2:10 और 7 सेकेंड और ये वक्त है कार्यक्रम गीत बहार का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधेयक संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच ये विधेयक प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं से अपील की है कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा ना करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्फोटक आयुष निष्क्रियकरण अभ्यास 2026 कल कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। ये अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और विस्फोटक आयुध निष्क्रियकरण टीमों के बीच अंतर संचालन क्षमता बढ़ाना तथा व्यावसायिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली

का आयोजन किया। रैली का मुख्य आकर्षण 1600 मीटर लंबा विशाल तिरंगा था। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है रात्रि के 3:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गजलों और गीतों का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले ये गजल पंकज उधास साहब की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, ये प्यारी सी गज़ल अभी आपने सुनी पंकज उधास साहब की आवाज़ में। आई सुनते हैं अगली गज़ल पंकज उधास साहब की ही आवाज़ में।

श्रोताओं, गज़लों की दुनिया में जगजीत सिंह की पत्नी चित्रा सिंह का भी एक अलग ही नाम है। आइए सुनते हैं ये गज़ल चित्रा सिंह की मधुर आवाज़ में।

0: श्रोताओं, गजलों और गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: भूपेन दा का परिचय कराना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस एक शख्सियत में, इस एक पर्सनैलिटी में बहुत सी शख्सियतें हैं। वो संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं और शायर भी हैं। ये सारे गीत जिनका मैं हिंदी में परिचय कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ओरिजिनली उन्होंने असमिया भाषा में लिखे थे। इनके बंगला अनुवाद भी वो गा चुके हैं और अब ये हिंदी अनुवाद में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। श्रोताओं, सुबह के 4 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अभी आप पारसाला बी पूर्णमल द्वारा प्रस्तुत श्री गुरुवायूर पुरैशा सुप्रभातम सुन रहे थे। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं AIR।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त सन 2026। सुबह के 4:53 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप अंग्रेजी में समाचार सुन सकते हैं। सुबह 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन। 5:20 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर समय होगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर आप सुन सकते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन और 6:45 पर समय होगा रामचरितमानस का। रामचरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 14। 6:55 पर आप सुन सकते हैं संस्कृत में समाचार। सुबह 7 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 7:05 पर अंग्रेजी समाचारों का। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका। 7:30 का समय होगा कार्यक्रम गीतों भरी का और 8 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़ अंग्रेजी में समाचार और 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। नौ बजकर 15 मिनट पर समय होगा कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका का और 9:30 पर आप सुन सकते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी समाचार। सुबह 10:10 का समय होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं सुबह के 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक पेश किया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया है कि सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्री गोपी ने कहा कि संबंध में कोई भी निर्णय विस्तृत वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययनों तथा ऑटोमोबाइल निर्माताओं और तेल विपणन कंपनियों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श के बाद ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंजन की मजबूती, उत्सर्जन और ईंधन दक्षता जैसे मापदंडों को कवर करने वाले व्यापक प्रयोगशाला अध्ययनों और फील्ड परीक्षणों ने पुष्टि की है कि E20 निर्धारित मानकों के तहत उपयोग के लिए सुरक्षित है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए तेज पानी की बौछारें की, आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों के भारत में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए 11 अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को अधिसूचित किया है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं, जिनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के बंदरगाह शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से कम समय में स्वीकृति दे दी जाती है। पश्चिमी कोलंबिया में कल 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप से 111 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एविलार्डो डेला एस्प्रियला ने बताया कि भूकंप में 87 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए आपातकाल की घोषणा की। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोकू क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDP ने विशाखापत्तनम की एक निजी चिकित्सा उपकरण कंपनी के साथ स्वदेशी AI संचालित सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग तकनीक के व्यवसायीकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता कैंसर से पहले के घाव का शीघ्र पता लगाने के लिए AI सहायता प्राप्त क्षमताओं से लैस देश में ही विकसित पोर्टेबल डिजिटल कोल्पोस्कोप ग्रीवाजिन के निर्माण और व्यावसायीकरण में सहायता करेगा। ग्रीवाजिन में एक हाई डेफिनेशन कैमरा, एक अंतर्निर्मित डिस्प्ले और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है जो स्त्री रोग विशेषज्ञों को नियमित नैदानिक जांच के दौरान पूर्व कैंसर संबंधी असामान्यताओं की पहचान करने में सहायक करता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आज से अगली पीढ़ी के खोजकर्ताओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य और नवाचार पहल का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। 2 दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम देश भर के 83 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें स्कूली छात्रों को वैज्ञानिकों से बातचीत करने, वैज्ञानिक शोध को जानने और स्वास्थ्य तथा नवाचार की दुनिया का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। कपड़ा मंत्रालय आज नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन IIHT सूत्र 2026 का आयोजन करेगा। ये सम्मेलन हथकरघा शिक्षा में सहयोग, ज्ञान साझा करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाएगा। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pamar. The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 with Rajya Sabha, returning it to Lok Sabha after discussion yesterday. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025 and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities. She said the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies, procuring data services from specified data centers in India, and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users. The Parliament also passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. Indian Council of Medical Research is organizing a 2-day second edition of SHINE, Science, Health and Innovation for Next Gen Explorers, a nationwide school outreach initiative from today. The 2-day program will be hosted across 83 locations nationwide, providing school students with an opportunity to engage with scientists, explore scientific research, and experience the world of health and innovation firsthand. The Director General of ICMR, Dr. Rajiv Behl, encouraged them to make the most of the opportunity to interact with scientists, explore research laboratories, and experience the world of health and innovation firsthand. The Health and Family Welfare Ministry informed that the initiative invites students of grades 9 to 12 to apply scientific thinking to real-world public health challenges. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that government e-marketplace GEM reflects the procurement of the right product of the right quality at the right price at the right time. The minister said this while speaking at the celebration of 10 years of GEM in New Delhi. Mr. Goyal recalled that prior to the introduction of GEM, public money was being misused, procurement was non-transparent and lacked good governance. Mr. Goyal said that cumulatively, GEM has helped in the procurement of over 20 lakh crore rupees worth of goods and services through the portal through over 3 crore orders. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Professor Bimal Patel yesterday and congratulated him on his recent election as a judge of the International Tribunal of the Law of the Sea. In a social media post, Dr. S. Jaishankar wished him the best for a successful tenure. A powerful 7.4 magnitude earthquake struck Western Colombia, the South American nation, yesterday, killing at least 111 people, damaging hundreds of buildings and leaving many trapped under debris, while their loved ones and rescue workers searched through rubble. The epicenter was in San Jose del Palma, about 400 kilometers west of Bogota, the U.S. Geological Survey said. The government has notified 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. The Home Ministry said that it includes 9 land ports and 2 airports. This includes airports at Bhopal and Tirupati and land ports at Atari and Agartala. The India Meteorological Department has issued an orange alert for very heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन।

योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखंद। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमर दर्द की समस्या बहुत ही आम होती जा रही है। युवावस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक कमर के दर्द की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसके लिए आज हम एक आसन करेंगे, उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर को टिकाए रखें और शरीर को शिथिल करें, यानी रिलैक्स कर दें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, हाथों को खींचकर आगे की ओर लेकर जाएं और माथा यानी फोरहेड आपके आसन पर टिकाए रखें। अब हाथों को धीरे धीरे वक्षस्थल यानी चेस्ट रीजन के पास लेकर आएं और ध्यान रहे कि आपकी दोनों कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई, यानी आसमान की ओर उठी हुई हों। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाने का प्रयास करें। दोनों कोहनियों को समांतर रखें और इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और

10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। इस अभ्यास को भुजंगासन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और अपने माथे को जमीन पर टिकाएं और मकरासन की स्थिति में कुछ क्षण विश्राम करें। ध्यान रखें दोस्तों, जब आप यह आसन करें तब पैरों को उतना ही तान कर रखें कि कमर पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव पैदा ना हो। भुजंग आसन का अभ्यास एक सेशन में कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। यदि आपको कोई हर्निया की प्रॉब्लम है और पेट की कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तो यह आसन अवॉइड करें। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और कुछ हद तक तनाव को भी दूर भगाता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 5:20। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 5:30। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।